0: पुरातन काल में जितने भी योद्धा हुआ करते थे या जितने भी महाराजा हुआ करते थे, वो लोग मालिश का बहुत इस्तेमाल किया करते थे। तेल मालिश करना पुरातन काल से ही प्रचलित है और ये आयुर्वेद का एक पार्ट है। तो तेल मालिश करने के भी तरीके हैं। रात के समय में हल्का गुनगुना ऑयल लेके सर में और पैर के तलवों में मालिश करने से नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, जिससे आपकी बेचैनी दूर होती है। चौथा, अगर हम बात करें तो व्यायाम इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। व्यायाम की अगर हम करते हैं, जैसे देखा गया है कि अगर मजदूर जो है, मजदूर बहुत बेहतर तरीके से अपनी नींद को पूरा कर पाता है, क्योंकि उसको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। जैसा उसका आज सुबह हुई है, दिन भर मेहनत किया, उसको मजदूरी मिल गई, रात में जाके सो गया, उसको पता है कि कल भी यही चीज़ होनी है, इसीलिए उसकी नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर है और व्यायाम अपने शरीर को बहुत ज़्यादा देता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर हम इन सब चीज़ों को सही करें तो हमारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती, नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जिस परेशानी का शिकार लोग हो रहे हैं, मोबाइल मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल ज़्यादा देर तक करना, रात में ज़्यादा देर तक जागना, उनके जो इंफ्रा रेजेज हैं हमारी आंखों को एक तो नुकसान करते हैं, उसके साथ साथ में हमारे ब्रेन की जो प्रक्रिया है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हमें ना तो नींद आती है और ना तो चैन और सुकून मिलता है। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे नुस्खे बनाए गए हैं जिससे अपनी नींद को बेहतर किया जा सकता है। जैसे सौंफ लेना है आपको 100 ग्राम, बादाम लेना है 80 ग्राम, खसखस लेना है 60 ग्राम, मिश्री लेना है धागे वाली 40 ग्राम, इलायची लेना है 20 ग्राम, काली मिर्च लेना है 10 ग्राम और जायफल लेना है 5 ग्राम। इन सारी औषधियों को अच्छे से भून के पाउडर बना लें। जब ये पाउडर बन जाए, रेडी हो जाए, तो इसको सुबह और शाम पानी के साथ में सेवन करें, आपकी नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। अनिद्रा की जो चीज़ें हैं, हमें किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, हमारे खान पान को स्वस्थ रखना चाहिए, लाइफस्टाइल को बेहतर रखना चाहिए, जो लाइफस्टाइल पुरातन काल से चली आ रही है उसकी तरफ हमें थोड़ा सा लौटने की ज़रूरत है। तो लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, मेंटल स्ट्रेस को कम देना है। मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए आप व्यायाम का प्रयोग कर सकते हैं। व्यायाम लोम विलोम तरीके से आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। डाइट और स्लीपिंग टाइम, इसको भी मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ में सर हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
1: अनिद्रा और बेचैनी का उपचार, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शेख मोहम्मद सहजाद से। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

अब से कुछ देर बाद 7 बजे सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 पर, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर और 12:15 पर रात्रि 10:30 पर विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन सुनिएगा। 8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज। नौ बजकर 50 पर और रात 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा। 10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम होगा और 10:30 पर लोकगीत का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। एक ही कलाकार के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 11 बजे। 12:30 पर श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में सुनिए शशि जैन के गाए लोकगीत के साथ कविता श्रीवास्तव की वार्ता, गांव की बुजुर्ग महिलाओं के अनुभव।

दोपहर 2:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा। शाम 5 धरती के गीत कार्यक्रम में छेदीलाल और साथी के गाय लोकगीत सुनवाए जाएंगे। 5:15 पर युवजन सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम युवाड़ी। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में बाबूलाल दिवाकर के गाय लोकगीत के साथ सुनिए श्यामाचरण पांडे का रामायण पाठ। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम होगा। रात 8 सबरस कार्यक्रम सुनेगा। गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनेगा कहकशा 9:30 पर। खेल दर्पण कार्यक्रम सुनेगा रात 10 ये कार्यक्रम हम लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं

माया, मोह, ईर्ष्या आदि के लक्षण बताते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी। जिस प्रकार लकड़ी में घुन लग ही जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में संतान, संपत्ति और सम्मान पाने की लालसा पैदा होती है। माया की सेना संपूर्ण जगत में व्याप्त है। माया से मुक्ति राम कृपा के बिना नहीं मिल सकती।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए गए भजन। सबसे पहली ये रचना है जुबिन नौटियाल के स्वर में।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए ये भक्ति रचना विवाह फिल्म से पामेला जैन की आवाज़, बोल और संगीत रविंद्र जैन का

इसी के साथ फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जाँच के लिए गठित विशेष जाँच दल SIT पहुँची अयोध्या, जाँच शुरू। अब समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें कल से शुरू हो गईं। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा। उन्होंने बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी।
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा और खासतौर पे यहाँ एयरोट्रॉपलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
0: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई पहली उड़ान से हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसान स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ कल लखनऊ पहुंचे और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। इस अवसर पर सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 trillion की इकोनॉमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़ते हुए एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के

0: लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। आयुष मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस साल योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल से अपनी जांच शुरू कर दी। SIT की अध्यक्षता लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन इसमें सदस्य हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि SIT के सभी सदस्य कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने आयुक्त और अयोध्या के DM के साथ मंदिर परिसर का दौरा किया। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल वहां मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
4: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
2: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के तहत उत्तर प्रदेश नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीते 14 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया। गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्र ने बताया कि इस योजना के तहत 7 श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रकार की रेसिपी उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT पहुंची अयोध्या, जांच शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन राग भैरवी में ठुमरी। तबले पर संगत कर रहे हैं पंकज कुमार श्रीवास्तव, हारमोनियम पर श्री अनिल कुमार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन, राग भैरवी में ठुमरी। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंकज कुमार श्रीवास्तव, हारमोनियम पर श्री अनिल कुमार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में ये देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में ये देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
4: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
3: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से

0: बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यार्स का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हुरमुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते

0: सौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान

0: हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian

0: मोदी दो मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में दो रोजा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की आमद पर फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों उनका बाजाब्ता इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू नई शराकत दारियों का क्याम और बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़र नौ तश्कील है। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीस आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वजीर आजम मोदी की कनेडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, बरतानिया के वजीर आजम कियर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी मुतवक्की हैं। इसके बाद वजीर आजम फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की दावत पर फ्रांस के उस शहर का दौरा कर रहे हैं, जिसे एक नहायत अहम, नतीजा खेज और हमाजहत दौरा करार दिया जा रहा है। काबिले जिक्र बात यह है कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में ये भारत की 13वीं शिरकत होगी, जबकि वजीर आजम मोदी मुसलसल 7वीं मरतबा इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंसों में भारत की मुसलसल शिरकत आलमी उमूर में मुल्क के बढ़ते हुए रोल और अहमियत की अक्कासी करती है। यह आलमी सतह पर अमन, सलामती, तरक्की और माहौलियाती पायदारी से मुतालिक चैलेंजों से निमटने में भारत के रोल और खिदमात के एतराफ़ की अक्कासी भी करती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: G7 मुल्कों के लिए भारत की स्ट्रेटजिक अहमियत अब ठोस इक्तसादी और तकनीकी शराकत दारियों की सूरत में मजीद नुमाया हो रही है। इसका सबूत हाल ही में तय पाने वाला भारत यूरोपीय यूनियन तजारती मुआहदा है, जबकि नीस में मुनक़िदा भारत इनोवेट प्रोग्राम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत का सरकारी AI पार्टनर मुल्क के तौर पर इंतखाब भी इसी सिलसिले की अहम मिसालें हैं। ये पेशरफ जाहिर करती है कि G7 ममालिक भारत को सिर्फ एक बड़ी मंडी के तौर पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इख्तरा, मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत सप्लाई चेन्स के शोबों में एक काबिले एतमाद शराकत दार के तौर पर भी देख रहे हैं। अहम बात यह है कि फ्रांस की G7 सदारत की जानिब से तय की गई मुतअद्दिद तरजीहात, जिनमें आलमी अदम तवाजुन को कम करना, बैन अल-अक़वामी शराकत दारियों का फरोग और मसनूई ज़हानत AI शामिल हैं, भारत की सलाहियतों और मफादात से करीबी मुताबिकत रखती हैं। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फ़ीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले साल 6 और 7 मई की दरमियानी रात शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, अलबत्ता वो दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने एक नई सुर्ख लकीर खींच दी कि अगर दहशतगर्दी को हुकूमत की पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका बराह रास्त और सख्त जवाब दिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। 9 और 10 मई को भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने एक ही ऑपरेशन में एटमी सलाहियत रखने वाले मुल्क के 11 फजाई अड्डों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान फजाइया के तकरीबन 20% बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए गए। इस ऑपरेशन के बाद आलमी सतह पर भारत को वसी हिमायत हासिल हुई और मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने भारत के मौकिफ की तायीद की। ये भारत की बढ़ती हुई आलमी साख और बैन अल-अक़वामी बयाने पर उसकी मजबूत गिरफ्त की अक्कासी करता है। आकाशवाणी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, जो जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी की भरपूर तारीफ की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश

0: होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर साबित कदम है और इस पर पूरी संजीदगी और अज़्म के साथ अमल पैरा है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: हुकूमत ने अपने ताज़ा तरीन 15 रोज़ा जायजे में डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल की बरामद पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आज से नाफिजुलअमल डीजल बरामदी ड्यूटी 13.05 रुपये फी लीटर से 14 रुपये फी लीटर कर दी गई है, जबकि एटीएफ की बरामद पर महसूल 9.05 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर बरामदी ड्यूटी 1.05 रुपये फी लीटर पर बरकरार है। घरेलू खपत के लिए क्लियर किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटियों की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रकीक कुदरती गैस एलएनजी लाने वाला जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। एलएनजी बरदार ये जहाज 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इस जहाज का इंतजाम शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की क्यादत में कायम एक कंसोर्शियम कर रहा है। ये इन अव्वलीन तजारती जहाजों में शामिल है जहां अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई जंगबंदी माहदे के ऐलान के बाद आबनाए हुरमुज को पार किया है। जनूबी कैलिफोर्निया के सहराए मोहावी में अमरीकी फिजाइया के फौजी अड्डे से परवाज होने के फौरन बाद एक B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार सभी 8 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौज ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतला दी कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:20 पर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर तैयारा गिरने के बाद हंगामी टीमें जाए वकूह पर पहुंची। फिजाई फुटेज में बेस के रनवे के करीब सेहरा से काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। इसके बाद एयरफील्ड को बंद कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे में स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 साल गोलकीपर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इससे पहले ग्रुप जी के इफ्तिताही मैच में बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी तरह आज सुबह अमेरिका के मियामी स्टेडियम में ग्रुप एच के मुकाबले में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच भी 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
3: शुक्रिया फैजल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के स्लोवाकिया दौरे की खबर को अवलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और स्लोवाकिया में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, नरेंद्र मोदी और रॉबर्ट फिको की मुलाकात, दिफा मसनूई जहानत, तजारत और सकाफती रवाबित को नई समत देने का ऐलान। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर को शाया करते हुए पहली सुर्खी बनाई है, ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन माहदा स्विट्ज़रलैंड में 19 जून को बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। अमेरिका ईरान मुफाहमत नामे का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खैर मकदम किया। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, जेवर एयरपोर्ट का इफ्तिताह, किसानों को पहली परवाज़ का तोहफा, मुल्क भर के 45 शहरों के लिए यहां से परवाज़ें दस्तयाब होंगी।
2: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। स्लोवाकिया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अता किया है। वज़ीर आज़म मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में मुनाक़िदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो कनाडा और बरतानिया के वज़ीर आज़म और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत ने डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर बरामदी महसूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी लाने वाला भारतीय जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में वाकई अमरीकी फिजाइया के अड्डे पर B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम

0: माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करे, ट्रेन को जाने दे और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करे, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करे। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। इस कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त नीलम सिंह। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे इन दो विषयों पर, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस और विश्व समुद्री कछुआ दिवस पर। जी हां, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस की, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में आधिकारिक मान्यता दी। दुनिया भर में 20 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर जो अपने परिवार को पैसे भेजते हैं, ये उनके योगदान को सम्मान देना है। ये पैसा रेमिटेंस कहलाता है। हर साल करीब 800 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम रेमिटेंस के जरिए विकासशील देशों में जाता है। ये पैसा करोड़ों परिवार की पढ़ाई, इलाज, खाने और घर चलाने में मदद करता है। यूं कहें श्रोताओं कि ये दिन उन लोगों के लिए है जो घर से दूर रहकर अपने परिवार का सहारा बनते हैं, इसलिए ये दिन दुनिया भर के प्रवासी कामगारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।

कार्यक्रम में आगे बढ़ें और अगले विषय पर हम बात करें इससे पहले पढ़ लेते हैं आपके विचार जो आपने हमें फेसबुक के माध्यम से भेजा है। ये विचार भेजा है नीरा त्रिपाठी जी ने। ये लिखते हैं कि हैसियत का परिचय तब देना चाहिए जब आत्मसम्मान की बात हो, अन्यथा सादगी ही सबसे बड़ा परिचय होता है। अगला विचार है नज़र से नज़रिया का, स्पर्श से नियत का, भाषा से भाव का, बहस से ज्ञान का और व्यवहार से संस्कार का पता चलता है। बहुत ही सुंदर विचार आपने भेजा है, ऐसे ही विचार हमें लिखते रहिए। अगला विचार है दयानंद कॉलेज भवानी से पेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। ये लिखती हैं रितिका वानी, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ संगीता, आरोही प्रियांशी सोनी। जिंदगी में हमेशा ऐसे इंसान बनो जो किसी के चेहरे पर मुस्कान और दिल में सम्मान छोड़ जाए, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे कर्म ही इंसान की असली पहचान होते हैं। विष्णु मिसनी ने बहुत ही सुंदर विचार लिखा है। अगला विचार लिखते हैं नैनी प्रयागराज से। श्याम जी ने लिखा है, कहा जाता है कि कद्र करना सीख लीजिए, ना जिंदगी वापस आती है ना जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाता है। बहुत ही सुंदर विचार आप सभी ने भेजा है और ऐसे ही सभी श्रोता हमें अपने अपने विचार लिखकर भेजते रहिए और हम आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके विचार पहुंचाते रहेंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले विषय पर, जो कि है विश्व समुद्री कछुआ दिवस, जो हर साल 16 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उनके आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। समुद्री कछुए 10 करोड़ साल से धरती पर हैं। जिस समुद्र में कछुए हैं वह हेल्दी हैं। हेल्दी समुद्र मतलब अच्छी मछली, साफ पानी और तटीय इलाकों की सुरक्षा। ये समुद्री घास खाकर उसे छोटा रखते हैं, जिससे समुद्री घास स्वस्थ रहती है, जो मछलियों की नर्सरी है। हरा, गहरा भूरा या काला, ऊपर से चिकना और चपटा दिखने वाला, आसानी से तैरने वाला ये समुद्री कछुआ, जिसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें ध्यान रखना होगा श्रोताओं कि समुद्र तट पर जब भी जाएं प्लास्टिक की वस्तुएं ना ले जाएं। रात में बीच पर तेज लाइट का इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक प्रदूषण, मछली पकड़ने के जाल और तटीय विकास इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये वजह है 16 जून को हर साल विश्व समुद्री कछुआ दिवस मनाकर इनके संरक्षण में जागरूकता फैलाने की हमारी कोशिश है, आप तक ये सूचना पहुँचाने की।

ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है प्रतिदिन सुबह 8:45 पर, कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
5: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
6: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
7: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर की आवाज़, अमिताभ भट्टाचार्य की बोल, अमिताभ बच्चन का संगीत, फिल्म का नाम 102 नॉट आउट।

0: जुबिन नौटियाल की स्वर में सुनिए राइट टू फिल्म का ये गीत, बोल मनोज मुंतशिर के, संगीत रोचक कोहली का।
1: लग जाए जो एक बारी करवट में सुबह होए वो आँख न फिर सो।

जुबिन नौटियाल के गाए इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए मेरठ और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मेरठ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने छावनी क्षेत्र के माल रोड पर 150 पौधों का रोपण किया। वृक्षारोपण अभियान में छावनी परिषद की संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी हर्षिता चमाड़िया ने छावनी परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण किया और बताया कि छावनी परिषद द्वारा छावनी क्षेत्र में 12,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने 1001 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसके तहत अभी 150 पौधे लगाए गए हैं जबकि 500 पौधे कैंट क्षेत्र में लगाए जाएंगे। इस स्थान को उपवन नाम दिया जाएगा। इसकी देखरेख के लिए एक संस्था को जिम्मेदारी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मेरठ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने छावनी क्षेत्र के माल रोड पर 150 पौधों का रोपण किया। वृक्षारोपण अभियान में छावनी परिषद की संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी हर्षिता चमाड़िया ने छावनी परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण किया और बताया कि छावनी परिषद द्वारा छावनी क्षेत्र में 12,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने 1001 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसके तहत अभी 150 पौधे लगाए गए हैं, जबकि 500 पौधे कैंट क्षेत्र में लगाए जाएंगे। इस स्थान को उपवन नाम दिया जाएगा। इसकी देखरेख के लिए एक संस्था को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा बचे हुए पौधे कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे, जिन्हें वे अपने आसपास घर, मंदिर या पार्क में लगाकर उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि माल रोड उनके बचपन में ठंडी सड़क के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ घने पेड़ हुआ करते थे। समय के साथ सड़क के एक हिस्से से पेड़ कम हो गए, इसलिए कैंटोनमेंट बोर्ड के सहयोग से यहाँ फिर से हरियाली बढ़ाने की पहल की जा रही है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय पहुँचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हॉर्टिकल्चर ब्लॉक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब का निरीक्षण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने भाजपा सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि देश की जनता यह जान चुकी है कि उसका हित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। कृषि क्षेत्र से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है, किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार यूरिया के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी निगरानी लगातार की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने विश्वविद्यालय और कृषि सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान, नई तकनीक और किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा सरकार इसके विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ स्थित अटल सभागार में वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर टॉप 10 में अपना स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, लोकसभा सांसद अरुण गोविल, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल द्वारा जनपद के 19 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र मेडल के साथ 21,000 रुपए की धनराशि का चेक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। हाई स्कूल में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अबीदा, इंटरमीडियम में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा वंशिका उपाध्याय समेत 19 मेधावियों को सम्मानित किया गया। मेरठ में 119 किलोमीटर की सफाई अब आधुनिक मशीनों से होगी। इस योजना का मेरठ के सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत आहलूवालिया, एमएलए अमित अग्रवाल, महानगर और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस योजना के तहत सफाई पर एक महीने में करीब 1,23,00,000 रुपए खर्च होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी को सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में मुख्य मार्गों की सफाई करनी होगी, जिनकी लंबाई 119 किलोमीटर बैठती है। सांसद अरुण गोविल का कहना है कि उनकी कोशिश है मेरठ को इंदौर की तर्ज पर नंबर 1 बनाना, जबकि महापौर हरिकांत अहलूवालिया का कहना है कि इंदौर और सूरत की तर्ज पर मेरठ की सफाई व्यवस्था करने की हर कोशिश की जा रही है और ये उसी का एक बड़ा प्रयास है। मेरठ में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर ने सर्किट हाउस में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं से संवाद कर उन्हें केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विकास भवन सभागार में महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित मामलों की जन सुनवाई की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर ने लाभार्थी महिलाओं से संवाद के माध्यम से योजनाओं की सफलता की कहानी सुनी और महिलाओं को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने बताया,
1: एम्पावर्ड जो महिलाएं हैं जिन्होंने योजनाओं के साथ चलते हुए खुद को बहुत अच्छे तरीके से समर्थ बनाया है, काम करने के बाद के जीवन में क्या बदलाव आया है और ये बदलाव मुझे बहुत पॉजिटिव लगा है। महिलाओं का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, घर में उनकी निर्णय प्रक्रिया में की सहभागिता बढ़ी है, समाज में भी अभी आज उनको सम्मान मिल रहा है, ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है।
2: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
3: शामली जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी और तस्करी रोकने के लिए अब हर गाड़ी पर जीपीएस का पहरा रहेगा। केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के वाहन स्थान ट्रैकिंग सिस्टम वीएलटीएस के तहत बिना सुरक्षित ओटीपी के यूरिया की अनलोडिंग मुमकिन नहीं होगी। शामली में

0: इस हाईटेक व्यवस्था का सफल ट्रायल कर इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत रैक पॉइंट से बफर गोदामों और सहकारी समितियों तक खाद ले जाने वाले सभी व्यवसायिक वाहनों में GPS अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी लाइव मॉनिटरिंग कंपनियों के मुख्यालय समेत जिला कृषि अधिकारी करेंगे। यदि कोई वाहन तय रूट से भटकता है तो तुरंत अलर्ट जनरेट हो जाएगा। हाल ही में KFL कंपनी की 1068 मीट्रिक टन यूरिया इसी तकनीक से सुरक्षित पहुंचाई गई। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया,
1: रैक पॉइंट से जाने वाले सभी ट्रक GPS OTP वेस्ट माध्यम से भेजे जा रहे हैं और जिस स्थान पर पहुंच रहे हैं उस स्थान पर OTP डालने के बाद ही उतरने की व्यवस्था कराई गई है तथा वाहन जो उर्वरक लेकर जा रहे हों उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग कराई जा सके।
0: शामली जिले में मानसून की आहट के साथ ही जिले में खरीफ सीजन 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई है। कृषि विभाग ने इस बार 22,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा है। इसमें अकेले 18,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों को राहत देते हुए प्रमाणित बीजों पर 50% तक का अनुदान और पात्रता के अनुसार निःशुल्क मिनी किट देने की घोषणा की है। इसके लिए विभागीय एग्री दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि सभी विकास खंडों के गोदामों पर धान, उड़द, मूंग और मोटे अनाजों का पर्याप्त स्टॉक पहुंचा दिया गया है। 15 जून से मुख्य बुआई शुरू होने की संभावना को देखते हुए किसान खेतों को तैयार करने और धान की पौध लगाने में जुट गए हैं। विभाग ने किसानों से जल्द बुकिंग कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। शामली जिले में यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग से उपजाऊ मिट्टी बंजर होने के कगार पर है, जिससे कैंसर और ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गिरती सेहत और बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने जून माह में विशेष खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, ताकि किसानों को जहर मुक्त और संतुलित खेती के प्रति जागरूक किया जा सके। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि जिले में खाद की किल्लत नहीं है, बल्कि अति प्रयोग समस्या है, जिसे सुधारने के लिए सरकार जहर मुक्त और जागरूक खेती पर दे रही है। शामली में अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए सरकार 20,000 की आर्थिक सहायता देगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना का लाभ लेने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर लाभ दिया जाएगा। हालांकि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित हुई महिलाओं और दिव्यांग आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक विभागीय वेबसाइट पर जाकर जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र या निजी इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी संबंधित उपजिलाधिकारी या खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। शामली जिले के उपभोक्ताओं और किसानों को जल्द ही लो वोल्टेज अघोषित कटौती से मुक्ति मिलेगी। ऊर्जा निगम ने क्षेत्र के 6 प्रमुख बिजली उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए 12 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत टिटोली, बनत, जलालाबाद, थाना भवन टाउन, कमालपुर और देवी मंदिर कैराना विद्युत उपकेंद्रों का क्षमता विस्तार कर नवीन पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। मुख्य अभियंता विनोद कुमार ने बताया, टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही धरातल पर काम शुरू होगा, जिससे गर्मियों में और लोड और ट्रिपिंग से राहत मिलेगी। शामली जिले को वेस्ट यूपी का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कांधला में मिनी उद्योग क्षेत्र की स्थापना के तहत 11 भूखंडों और 1 सेट के आवंटन की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उद्योग निदेशालय की इस बड़ी पहल से जिले में भारी निवेश आएगा और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। कांधला बुढ़ाना मार्ग पर स्थित इस उद्योग क्षेत्र में भूखंडों को 99 वर्ष की लीज पर विनिर्माण इकाइयों को आवंटित किया जा रहा है। कांधला और कैराना के बीच बन रहा PSC कैंप उद्यमियों को मजबूत सुरक्षा कवच देगा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। पारदर्शी ई ऑक्शन से होने वाला यह विकास जिले के राजस्व और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम।
1: सामीन, आपका खैर मकदम है आज के उर्दू प्रोग्राम में। रामपुर रेडियो मरकज से आयशा राहत का आदाब। सामीन बज़्म, ये इस्लामी साल जो अब हमसे रुखसत होने वाला है और नए साल का आगाज है, यानी सबको पता है कि मुहर्रमुल हराम से ये नया साल शुरू होता है। ये साल नौ का वो मुतबर्रिक माह है जो अपने दामन में गम और रंजो अलम की दास्तान समोए।

0: हुए है, जो जुल्म सितम का बयान है, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसलिए कि ये माह हमें याद दिलाता है उस अजीम कुर्बानी की जो नवासे रसूल और जिगरगोशा अली बतूल सैयदना हुसैन इब्ने अली और शोदाए करबला ने दी। ये जुर्रात, शुजात और तस्लीम और रजा और बातिल के सामने सीना सुपर होने का वो पयाम है जिसकी अहमियत कभी कम ना होगी, बल्कि रहती दुनिया तक ये याद किया जाए। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया दीन हक के लिए और जाम शहादत नोश फरमाया। समीन, इस खास मौजू को ही आज हमने प्रोग्राम में शामिल किया है, हज़रत इमाम हुसैन और पैगाम इंसानियत। ये गुफ्तगू लेकर आज हम हाजिर हैं। इस गुफ्तगू में हमने मधु किया है अपने मुअज्जिज़ मेहमानान को, जिनके अस्माए ग्रामी इस तरह हैं: जनाब मौलाना मोबीन हसन, जनाब सरबत हुसैन जैदी और मोहतरमा उम्मे अबीहा। आइए समाअत फरमाएं ये गुफ्तगू।
1: तारीख मिसाल ऐसी कोई ढूंढ के लाए, सर तन से जुदा भी हो मगर मौत ना आए। सोचूं जो मैं जरा सब्र रजा के कोई मानी, एक नाम हुसैन इब्ने अली जहन में आए। इमाम हुसैन एक ऐसा नाम है जिसके लिए किसी कौम, किसी मजहब, किसी इंसान या किसी कबीले की बंदिश नहीं है। दुनिया में हजार हा जंगें हुई, होती रहेंगी और आगे भी रहेंगी, लेकिन इमाम हुसैन का नाम आज तक लोग याद करते हैं। उसकी बिना यही है कि इमाम हुसैन ने हक और इंसानियत के लिए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जहां वो चाहते तो यजीद की बैत करके अपने घर के लिए बेहतरीन और अच्छी जिंदगी जीते रहते, लेकिन उन्होंने उससे बढ़कर हजार हा तकलीफ सहकर, हद है कि 6 महीने के बच्चे से लेके और 70-72 साल के बुजुर्गों तक की कुर्बानी को देकर, करबला में भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके वो पैगाम इंसानियत दिया है जिसकी मिसाल इस दुनिया में अभी तक कोई न पाई गई है और न आने वाले वक्त में पाई गई। इसके लिए अगर 4 लाइनें कहूँ तो यही है कि जुल्मत की शब को जिसने सवेरा बना दिया, सरवर ने जमीन को क्या क्या बना दिया, उस खाक को जो असर से पहले थी सिर्फ खाक, सजदा किया तो अर्श मौला बना दिया। इमाम हुसैन चाहते तो यजीद की बैत से अपने आप को इस तरह बचा कर ले जाते कि दुनिया में बड़े आराम से उनकी जिंदगी बेहतरीन आसाइश के साथ चलती रहती, लेकिन उन्होंने 1400 साल तक अपने नाम को इस कुर्बानी से इस तरह जिंदा रखा है और आज भी हम ही नहीं, गैर कौम, हिंदू धर्म, यहाँ तक के अंग्रेजों तक ने उनकी इसके लिए तारीफ की है। हक के लिए जान देने की जो रस्म चली है, अगर उस रस्म का किसी को बानी माना जाए तो वो हुसैन इब्ने अली है। यहाँ मैं अपने साथी जनाब मौलाना मुबीन साहब से पूछना चाहूंगी इसके बारे में कि वो अपने कुछ, मतलब अपने बयान है वो कुछ बताएं इस टॉपिक के बारे में और रोशनी डालें।
2: हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और पैगाम इंसानियत। यकीनन हजरत इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को वो इंसानियत, शराफत, अखलाक व किरदार का पैगाम दिया है कि ना अभी तक कोई वो पैगाम दे सकता है और ना किसी ने इतनी जुर्रत है। इसलिए कि आप अपने नाना रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती तस्वीर थे।
1: बेशक
2: जिस तरह आपने अपने अखलाक के, अपने किरदार के जरिए से इस्लाम पर आमादा किया लोगों को, और आपका जब पैगाम सुना तो आपके अखलाक की बुनियाद पर लोग आपके किरदार को अपनाने के लिए मजबूर हो गए। आपकी राहों में कांटे बिछाए जाते थे, आपको जुल्म और सितम का सामना करना पड़ता था।
1: बिल्कुल,
2: हत्ता के एक औरत का मशहूर वाकया है कि आप पर वो कूड़ा डाला करती थी
1: जी,
2: और एक रोज जब नहीं आई तो आपने मालूम किया कि वो कहाँ है। बताया गया कि वो आज बीमार है, अलील है। कहा अच्छा, तो आप उसके दरवाजे पर गए और कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तू बीमार है, इसलिए मैं तेरी अयादत करने के लिए आया हूं। और वो समझ रही थी कि आप मुझसे इंतकाम लेने आए हैं। आपने कहा कि नहीं, मेरे मजहब में है कि अगर कोई बीमार हो, अलील हो, तो उसकी अयादत कर

0: ये उन्होंने
1: सुभान अल्लाह।
0: पैगाम दिया है, और इसके अलावा बहुत से उन्होंने पैगाम दिए जो कि हमें सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत ही उसकी इनकी ज़रूरत है। उन्होंने पैगाम दिया है कि हर बच्चे को इन की तरफ तवज्जो दी जाए। जब इल्म आ जाएगा किसी मजहब के मिल्लत के हो, तो उस पर हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, देखेंगे कि इमाम हुसैन सलाम ने क्या पैगाम दिया है, हमें क्या हमसे उम्मीदें रखी हैं उन्होंने, और दीन मोहम्मद को उन्होंने किस तरह से कायम किया है। अल्लाह सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। और
1: जी
0: उन्होंने नमाज ही पढ़ के दिखाई लोगों को, जो हमारी एक बुनियादी हिस्सा है। इस जंग के मैदान में ऐसे माहौल में जो उनके साथी लोग थे, उन्होंने नमाज का अदा करी। हजरत इमाम हुसैन सलाम ने तमाम मोमिन मोमिनात के लिए दिल से दुआएं करी हैं, और आखिर उन्होंने जिस वक्त वो शहीद हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा, हल मिन नासिर यंसुर, अब मैं कोई भी मेरा साथी नहीं है और मेरी मदद को आए। लोग आमादा हुए उनकी मदद के लिए, और उनके साथियों ने कुर्बानी पेश करी, और उस कुर्बानी का नतीजा ये हुआ कि आज तक हम उस कुर्बानी को याद करते हैं। हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मजहब मिल्लत के लोग उनको अकीदत के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से उनके प्रोग्राम
1: सुभान
0: होते
1: अल्लाह,
0: हैं, बड़े बड़े उसमें वो अपने शानदारी जलवे पैदा
1: शिरकत
0: करते
1: का।
0: हैं। और उन्होंने हमको ये भी सबक दिया है, इखलाक दिया है, और तालीम कुरान भी उन्होंने कहा है जो बहुत ज़रूरी है। दीन मोहम्मदी को कायम रखने के लिए हमें कुरान पढ़ना ज़रूरी है। ये कुरान एक हमारी जैसे हिंदुस्तान के कानून की किताब है, ऐसी कानून की किताब है। इसमें पढ़िए, और इसमें सब बातें लिखी हैं। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं है कुरान शरीफ में जो कि इमाम हुसैन सलाम ने नहीं बताया है, और जो इसमें सर ने लिया है वो इमाम हुसैन सलाम ने अपनी शहादत दे के बताया है कि हक और बातिल क्या है।
1: बेशक
0: यही
1: बेशक
0: चीज उन्होंने ये बताई है कि हक बातिल क्या है, और अगर कोई जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ भी कैसे, और जो जुल्म सह रहा है उसके लिए बारे में बताया कि इमाम हुसैन सलाम ने के ऊपर इतने इतने जुल्म पड़े हैं कि अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ी जाए और इसको बयान किया जाए तो वो कोई ऐसा है शख्स नहीं है जो जिसके दिल पे असर ना हो और आंसू ना निकलने लगे। बस मैं इमाम हुसैन सलाम के और भी बहुत से वाकयात हैं जिन्होंने एक नन्हे से मुजाहिद को अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया, सिर्फ नाना के दीन को बचाने के लिए कुर्बानी दी। वैसे वो यजीद के साथ भी रह सकते थे, उसका भी कहना मान लेते तो बैत कर लेते, लेकिन इमाम हुसैन साहब ने इनकार करा, और उन्होंने यही कहा कि नाना के दीन को बचाना है। इसीलिए कहा एक बार कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो हुसैन मुझसे तो समझ आ रहा था। हमारे जितने भी लोग बताते हैं इमाम हुसैन सलाम मुझसे है, लेकिन ये कि मैं हुसैन मुझसे है, ये जरा समझ में नहीं आ रही थी बात। लेकिन करबला के वाकयात के बाद ये यकीन से यह कह रहा हूं मैं कि ये तय हो गया कि इमाम हुसैन सलाम के दीन के जरिए रसूलुल्लाह का दीन बचा है। अगर इमाम हुसैन नहीं होते तो रसूलुल्लाह का दीन आज तक हम पर नहीं आता, और हम लोग ना जाने किस तरह होते, अपने अपने रंग में होते। ये हुसैन की बड़ी कुर्बानी का असर है हमारे ऊपर कि
1: बिल्कुल
0: हमने उसको इस तरीके से, उन्होंने हम कुर्बानी दी और उसमें हमें चलने की तौफीक अता फरमाई।
1: जी,
0: अब
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: सलाम उन
0: बेशक
1: पे तहे तेग भी जिन्होंने कहा, जो तेरा हुक्म, जो तेरी रजा, जो तू चाहे। इमाम
0: बेशक
1: हुसैन का जो वाकया था 1400 साल पहले, वो हमारे पास कोई कैमरा नहीं था उस वक्त, खुदा बेहतर जानता है कि जुल्म की क्या इंतहा थी जिसमें उन्होंने सब्र और इंसानियत को कायम करके अपना नाम आज तक के लिए कायम और जिंदा रखा। यहाँ पर मुझे एक जनाब इमाम हुसैन के बचपन का भी वाकया याद आता है कि रसूल अल्लाह से, उनसे 6 साल तक रसूल के जेर साया वो पले बढ़े। तो एक बार जब वो कह रहे थे किसी को देख के कि वजू गलत है, तो वजू ये नहीं उन्होंने कहा कि वजू गलत है, बल्कि बैठ के उनको अपनी वजू करके दिखाई ताकि वो खुद ब खुद समझ जाए। मतलब ये कि डायरेक्ट किसी को नहीं कहो कि क्या गलत है क्या सही, इतनी बारीक सी बात के ऊपर उन्होंने इतना जोर दिया, और कि इनडायरेक्ट वे में समझा दो और बात चली जाए, किसी का दिल ना दुखाओ। इसका मकसद यह है कि किसी का दिल ना दुखाओ, जिस इंसान को किसी के दिल ना दुखाने का

0: भी इतना फिक्र हो, वो आप सोचिए कि उसका इंसानियत का मैार किस दर्जा बुलंद होगा। और इमाम हुसैन ने ही नहीं बल्कि बाद में जनाब जैनब को ये ताकीद की उन्होंने कि आप जो है वो बददुआ ना करना, कितने भी जुल्म व सितम हो गए लेकिन आप बददुआ ना करना। जुल्म व सितम की हद ये हुई कि 2 साल तक जो है वो कैद रहे, दर बदर दर कूफा और शाम में वो घूमे फिरे, इतना कि जंजीरें जो थी वो गोश्त में पेवस्त हो गई, लेकिन सिवाय सब्र और शुक्र के उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन का ही दिल था जो इस दर्जा बुलंदी को फायज होता है। और आगे की बात के लिए मैं मौलाना से चाहूंगी कि वो अपने इजहार ख्याल करें।
1: जी, जैसा कि ये सिलसिला चल रहा है इमाम हुसैन के सिलसिले में, इमाम हुसैन और पैगाम इंसानियत, ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं कि शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। सरदार नदार दस्त दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। के हुसैन शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं और दीन को पनाह देने वाले भी हैं। यकीनन जो इस्लाम पैगंबर इस्लाम लेकर आए थे उसको बचाने वाले हजरत इमाम हुसैन हैं। अगर इमाम हुसैन ना होते तो दीन मिट गया होता, यजीद ने बिल्कुल इसके नामो निशान को मिटा दिया होता, मगर इमाम हुसैन ने कहा कि हम खुद मिट जाएंगे, अपने खानदान को कुर्बान कर देंगे लेकिन इस्लाम को बचा कर रहेंगे और कयामत तक इस्लाम बचा रहेगा। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। बस इसी पर हम अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हैं। अल्लाह हम सबको हजरत इमाम हुसैन के रास्ते पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
2: कभी हर्फ तड़पता है, कभी लफ्ज दहकता है, कभी अश्क बहते हैं, कभी दिल धड़कता है, कभी सच्चाई लहू मांगती है और कभी हक परचम लहराता है। आज हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र कर रहे थे, समिन वो रोशनी नहीं रहनुमाई हैं, वो कोई शोला नहीं शऊर हैं, बल्कि दीन की बका का रोशन आफ्ताब हैं। वो चिराग हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों, जो न सिर्फ नवासे रसूल हैं बल्कि दीन हक के इमाम हैं, सब्र के सुल्तान हैं और कुर्बानी के उनवान हैं। सलाम उन पे तह तैक भी जिन्होंने कहा, सलाम उन पे तह तैक भी जिन्होंने कहा, जो तेरा हुक्म, जो तेरी रजा, जो तू चाहे। हजरत इमाम हुसैन और पैगाम इंसानियत। अभी आपने समात की ये गुफ्तगू जिसमें शिरकत फरमा रहे थे जनाब मौलाना मोबीन हसन, जनाब सरबत हुसैन जैदी और मोहतरमा उम्मे अबीहा। इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम अब रामपुर रेडियो मरकज से इख्तिताम करने की अपनी मेज़बान आयशा राहत को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आदाब।
3: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम।
4: मीडियम वेव 290.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
5: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
6: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करे, ट्रेन को जाने दे और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करे, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करे। याद रखे, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
7: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए ज्योति आनंद के स्वर में ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ज्योति आनंद को। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति

0: इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन टर्बाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया के निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि बिना विचार किए गए जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोर विपत्तियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक निर्णय में विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोक माधुरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं बाबूलाल दिवाकर और वर्षा तिवारी। सबसे पहले सुनिए बाबूलाल दिवाकर के स्वर में ये देवी गीत।

0: वर्षा तिवारी के गए इस पूर्वी गीत के साथ लोकमाधुरी का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं पंचम लाल यादव और साथी प्रतिमा मिश्रा, विष्णु राजा। सबसे पहले सुनिए पंचम लाल यादव और साथी के स्वर में ये देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंचमलाल यादव और साथी के स्वर में ये देवी गीत। लीजिए सुनिए प्रतिभा मिश्रा के स्वर में दादरा।

संगीता राय के गाए इस पूर्वी गीत के साथ ही लोकगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार बस कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर। प्रस्तुति दीपक राय की है। कविता कृष्णमूर्ति एक जाना पहचाना नाम। आपका जन्म 25 जनवरी 1958 को नई दिल्ली में हुआ था। कविता जब 8 साल की थी तो उन्होंने एक गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। तभी से वह बड़ी होकर एक मशहूर गायिका बनने का सपना देखने लगी। 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कविता को 4 फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड से सम्मानित

किया जा चुका है। तो कहना ना होगा कि एक गायिका के रूप में उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें घर में मिली। उन्होंने बाद में बलरामपुरी से शास्त्रीय संगीत सीखा। 9 साल की उम्र में कविता को स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ बांग्ला भाषा में गीत गाने का मौका मिला। यहीं से उन्होंने पार्श्व गायन के क्षेत्र में आने का फैसला किया। आपकी शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में हुई। यहां से स्नातक करने के दौरान कविता हर प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। यही वक्त था जब एक कार्यक्रम में मशहूर गायक मन्ना डे ने उनका गाना सुना और उन्हें विज्ञापनों में गाने का मौका मिला। साल 1980 में कविता ने अपना पहला पार्श्व गीत काहे को ब्याही, जो मांग भरो सजना फिल्म के लिए था, ये गाना बाद में फिल्म से हटा दिया गया। साल 1958 में फिल्म प्यार झुकता नहीं के गानों ने उन्हें पार्श्व गायिका के रूप में पहचान दिलाई। प्यार झुकता नहीं, तो क्यों ना हम आपको सुनवाएं उसी फिल्म से एक गीत।

90 के दशक में कविता कृष्णमूर्ति हिंदी सिनेमा की अग्रगणी पार्श्व गायिका बनकर उभरी। फिल्म 1942 और लव स्टोरी में गाए उनके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में आनंद मिलिंद, उदित नारायण, एआर रहमान, अनु मलिक जैसे गायकों व संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है। कविता ने एक बार एक साक्षात्कार में बताया था कि बचपन में उनको अभिनेता दिलीप कुमार बहुत पसंद थे। वो जब बड़ी हो रही थी तब अभिनेताओं में संजीव कुमार को पसंद करती थी। उन्हें अमिताभ बच्चन और आमिर खान भी पसंद है। अभिनेत्रियों में श्रीदेवी, रानी मुखर्जी, काजोल और प्रीति जिंटा पसंद है। शबाना आजमी को वह बेहतरीन अभिनेत्री मानती हैं। कविता ने शबाना आजमी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला और ऐश्वर्या राय सरीखी शीर्ष की अभिनेत्रियों के लिए गाने गाए हैं। कविता वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम की पत्नी है। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि एक बार उन्हें गायक हरिहरन के साथ मिलकर सुब्रमण्यम के लिए गाना था। तब उनकी शादी नहीं हुई थी। अभी हमने बात की 1942 और लव स्टोरी। इस फिल्म के गीत तो आज भी पसंद किए जाते हैं। तो कार्यक्रम का अगला गीत हमने इसी फिल्म से लिया है, आइए सुनते हैं।

आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति। कविता के खाते में जो फिल्म फेयर पुरस्कार आए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। 1942 लव स्टोरी, याराना, खामोशी, देवदास, एक कार्यक्रम, एक गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं याराना फिल्म से, जिसको उन्होंने विनोद राठौर के साथ गाया है।

1997 में एक फिल्म आई थी खामोशी, जिसमें इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, जतिन ललित के निर्देशन में, और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। वो गीत हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं।

और कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत। इस गीत में काफ़ी कुछ है, संदेश है, जिंदगी है, और वो संदेश क्या है आप सुनेंगे खुद ही।

आज आपने इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं प्यार झुकता नहीं, 1942 और लव स्टोरी, याराना, खामोशी और सबसे अंत में मिस्टर इंडिया। अब आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान को इजाज़त दीजिए।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं इश्क फिल्म से जय श्री शिवराम की आवाज़ में। रचना जावेद अख्तर की है और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का।

आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत पहचान फिल्म से मुकेश की आवाज़ में रचना नीरज की है और सुरों से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत तीसरी कसम फिल्म से मुकेश की आवाज़ में, रचना शैलेंद्र की है और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

अब आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में मेरा नाम जोकर फिल्म से एक गीत जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

आइए सुनते हैं थ्री इडियट्स फिल्म का गीत सोनू निगम और शान की मिलजुली आवाज़ में। रचना स्वानंद किरकिरे की है और संगीत निर्देशन शांतनु मोइत्रा का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। रचना इंदिवर की है और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, बने रहें हमारे साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारी में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने

0: अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सिटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit on the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of the United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said that despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. He said democracy has remained an integral part of the country's work culture and thought process. The Lok Sabha speaker said active and inclusive participation in democracy is essential for shaping the nation's future and achieving the goal of a developed India. Ahead of the re-examination of the National Entrance Cum Eligibility Test NEET UG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency NTA has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NEET UG 2026 re-examination

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। श्रोताओं, अब आपको अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दें। खेल दर्पण आप अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात 10:30 पर और अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर। रात में आप सुनेंगे विदुषी मुनीरा खातून बेगम से राग मिश्र खमाज में ठुमरी और दादरा। और अब से थोड़ी

बाद यानी 12:15 पर राग पीलू में ठुमरी सबरस प्रसारित होगा रात 8:30 पर। अर्चना दास के गीत और भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर। संस्कृत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर, इसमें प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी की वार्ता प्रसारित होगी नव्य न्याय भाषाया वैशिष्ट्यम। पंचायत घर शाम 6:30 पर, जल संरक्षण पर चर्चा के अलावा बाबूलाल दिवाकर के लोकगीत सुनिएगा इसी कार्यक्रम में। युववाणी रोज की तरह शाम 5:15 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 2:30 पर, ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम पनघट दोपहर 1:15 पर, घरेलू कार्यों में बच्चों की भागीदारी पर चर्चा के अलावा प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव की वार्ता सुनिएगा, गांव की बुजुर्ग महिलाओं के अनुभव और सीख कितनी कारीगर, शशि जैन के गाय लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश 12:30 पर प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। चित्र पर संगीत रात 8 बजे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आई सुनते हैं विदुषी मुनीरा खातून बेगम का राग पीलू में ठुमरी।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी मुनीर खातून बेगम से राग पीलू में ठुमरी, आपके साथ तबले पर संगत की श्रीकांत पांडे ने, और हारमोनियम पर थे अनिल कुमार। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं की फ़ोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की है, आइए सुनते हैं।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट आइडिया थाना आइडिया गांव मुगराम जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छे हैं मैम
0: जी। प्रेमचंद जी, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है मस्ती और गाने के बोल।

0: सनम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं महेंद्र यादव मुन्ना बरो ठंडिया प्रयागराज से हैं।
0: जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बागी फिल्म का गाना एक चंचल सोख हसीना।
0: जी जी, ये सलमान खान और नगमा की फिल्म थी।
1: हाँ जी जी।
0: तो चलिए आपकी इस पसंद को पूरा करते हैं। आपने किसी के नाम तो नहीं लेने हैं?
1: जी जी, अपने बीवी और बच्चों का नाम लेना
0: जी
1: है।
0: जी जी बोलिए।
1: हमारी मिसेज जो है रेखा यादव जी, आयुष अनन्या बरौठंडिया प्रयागराज से।
0: तो आपको सुनवाते हैं बागी फिल्म का ये गाना।

0: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, और पहले अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सखी मथुरा से आदरणीय मधु दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ शारदा प्रसाद प्रजापति जी, हमारे नियमित श्रोता हैं, और इनका कॉल हमारे अन्य श्रोता भी हर कार्यक्रम में सुनते होंगे। बहुत ही जागरूक श्रोता हैं और काफी ध्यान से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं।
1: जी धन्यवाद दीदी। आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ,
0: जी
1: फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है,
0: जी जी
1: इसका शीर्षक गीत है होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में
0: देश में
1: गंगा
0: गंगा बहती
1: बहती
0: है।
1: है।
0: जी, तो चलिए आपकी इस फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: मैम मैं प्रयागराज के मीरापुर से शिवानी यादव बोल रही हूँ।
0: जी। शिवानी जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैम मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आज?
1: मैम मुझे मोहब्बतें फिल्म का चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है, ये गाना सुनना है।
0: ज़रूर सुनवाएंगे। शिवानी जी कुछ कहना चाहती हैं, कुछ विचार हैं अगर आपके कार्यक्रमों के बारे में तो आप बताइए।
1: कार्यक्रम तो सब अच्छे लगते हैं, बस एक ही दो लाइन कहना चाहेंगे हम।
0: जी
1: जिंदगी अगर मिली है तो उसको हंस के जियो, जिंदगी अगर मिली है तो उसे हंस कर जियो, कल क्या हो कुछ किसी ने नहीं देखा है, जो है वो आज है कल कुछ भी नहीं है, इसलिए जिंदगी है तो मतलब ऐसे जियो कि खुल के कल से कोई चीज डिपेंड मत करो, जो है आज है और कल का कुछ भी नहीं है। यस मैम
0: सही बात है, पल में हर चीज़ बदल जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं, कल हम बात नहीं कर रहे हैं, आज हम हैं कल हम नहीं हैं, इस तरह के
1: यस
0: तो
1: मैम
0: होता ही रहता है।
1: सबसे
0: ज़िंदगी इसी का नाम है, पल पल
1: बड़ी
0: बदलने का
1: बात
0: नाम।
1: मैम ये है ना कि हम लोग जो ये दुनियादारी रिश्ता निभाने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं,
0: जी
1: वो ये होना चाहिए कि अपने मतलब अपने वर्ष से हो सके तो जी जितना भी हो सके अपना पुण्य करो, या तो हो सके भगवान में लीन रहो और मतलब की दुनियादारी से कोई भरोसा
0: मतलब
1: मत
0: ना
1: करो,
0: रखो। सही बात है,
1: मत
0: तो
1: मत
0: सही कहा
1: रखो
0: शिवानी
1: मैम।
0: जी। हम आपकी पसंद का मोहब्बतें फिल्म का ये गाना सुनवाने जा रही
1: मैम नाम
0: हैं।
1: ले सकते
0: हाँ, नाम
1: हैं
0: ले लीजिए
1: मैम, मेरी मम्मी आपका कार्यक्रम तो सुनती हैं,
0: जी।
1: संध्या यादव, मेरे पापा राजू यादव और मेरी बुआ रेनू यादव, वो भी आपका कार्यक्रम बहुत सुनती हैं,
0: जी जी
1: और हमारे बाबा श्री बद्री नारायण जी।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहब्बतें फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की थी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: ज़िंदगी एक बार मिली है, आपको तय करना है कि आपको बनना क्या है। कांटों की तरह चुभना है या फूलों की तरह महकना है। फूल को मसलते हैं तब भी खुशबू बिखेरता है। वैसा ही स्वभाव बनाइए, समाज को कुछ दे जाइए। अगर आपको मसला भी जाए तो खुशबू लुटाइए। कांटों की चुभन बनकर जीना भी कोई ज़िंदगी है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। मध्याह्न के एक बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे, उसके बाद इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी लखनऊ केंद्र से। बने रहें हमारे साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।

परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कल नई दिल्ली में 12वें बैन अल-अक़वामी योगा डे की शानदार तकरीब के लिए रस्मी तकरीबात का आगाज़ किया। आयुष के वज़ीर प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में नामानिगारों को बताया कि इस साल योगा डे की अहम तकरीब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कोलकाता के रेड रोड पर मुनक़िद होगी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर 45 मिनट का योगा प्रोटोकॉल मुनक़िद किया जाएगा। दरियां असना बैन अल-अक़वामी योगा डे के मौके पर 21 जून तक चलने वाले योगा हफ्ते के तहत रियासत के तमाम अज़ला में प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। योगा हफ्ता रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हलके वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्ज़ापुर और बिजनौर समेत मुख्तलिफ अज़ला में शुरू हुआ, जिसमें अवामी नुमाइंदों, इंतज़ामी और पुलिस अफसरान, मुलाजमीन और समाजी कारकुन प्रोटोकॉल के मुताबिक योगा कर रहे हैं। वाराणसी में इस मौके पर खिताब करते हुए आयुष के वज़ीर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़्यादत में रियासत में योगा, आयुष और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2023 के तहत नई सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। 14 जून को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इसका आगाज़ किया। गोरखपुर के ज़िला प्रोग्राम अफसर अभिनव मिश्रा ने बताया कि इस स्कीम के तहत 7 किस्म के मुस्तफिदीन को 10 किस्म की रेसिपी दस्तियाब कराई जाएंगी। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में अतियात और कीमती अशिया के गबन के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए तशकील दी गई खसूसी तफ्तीशी टीम SIT ने कल अपनी तहकीकात शुरू कर दी। SIT की क़्यादत लखनऊ के डिवीज़नल कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस और महकमा ख़जाना के खसूसी सेक्रेटरी नील रतन इसके मेम्बर हैं। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी कि SIT ने तमाम मेंबरान कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने कमिश्नर और अयोध्या के ज़िला मजिस्ट्रेट के साथ मंदिर अहाते का दौरा किया। SIT को 7 दिन के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 1:15 हुए हैं और ये समय है ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम पनघट का, तो आइए सुनते हैं।

0: गंगा। अरे ओ गंगा बहनी, देखा था ये कि तू बहुत परेशान है। का हुआ? खूब धूप है लगती है बहनी। हम कहे राम राम।
1: अरे राम राम बहनी, पनघट सुनने वाली सब बहनी हरिन के राम राम।
0: राम राम।
1: परेशान कहा था वो, इतना घाम रहा पनघटे पे आवत
0: हाँ
1: रहे
0: बहनी,
1: है, इतना घाम रहा कि हमार तो हो गया हालत खराब।
0: वो तो है बहनी,
1: लेकिन देखा ये जो
0: देखा।
1: पेड़ रुख हैं, यही सब सहारा है मनेगी
0: बिल्कुल
1: यही समय में।
0: हाँ।
1: तो पनघटे पे आया, देखा कितना छाव बा, कितने निक लागत बा बैठ के, और यही में अपने सखी सहेलिन से बतियाए के मिलत है। कितना निक निक बात गीत गौ नहीं होत है। तो तनकी मन सही ना आए तो आवत आवत तो लागत रहा कि पनघटे पे हम पहुंचू पाई कि ना पहुंच पाई।
0: अरे
1: इतना
0: गंगा बहनी,
1: घाम बा।
0: घाम तो है मुला, तू खाए पी के आए हो कि नहीं, पानी उनी लाए हो कि नहीं साथे,
1: हाँ हाँ बहनी देखा
0: तो
1: इतना
0: ठीक
1: घाम
0: बाटे
1: बा,
0: तब
1: तो
0: तो।
1: एक ठो बोतल हम अपने साथे लेके
0: बिल्कुल
1: चली
0: सही।
1: थे, और सूती कपड़ा
0: हाँ
1: उसे मुंह ढक के चला।
0: बिल्कुल सही
1: जौने
0: कहो।
1: तरीके के गर्म हवा चलत बा, ई मनई के तुरंते नुकसान करत है।
0: अजाना तुम्हें नहीं, तू इतनी नीक बात कहो, सूती कपड़ा पहना। काहे कि जो ये तेज की धूप है, एक ही
1: हाँ
0: जो ताप है, वो
1: हाँ
0: शरीर के तमाम इफेक्ट देता है, नुकसान
1: बिल्कुल
0: पहुंचाता है।
1: बिल्कुल।
0: लाल लाल जो है दाने और मुहासे कई तरह के जो है
1: अरे बहुत
0: निकलते हैं,
1: तरीके के
0: तो
1: देखा,
0: एक ही
1: गर्मी में
0: बदे।
1: मनई के पेट खराब हो जात बा, अपच हो जात बा। तो यही
0: हाँ
1: नाते देखा बूढ़ पुरानियन के तो खास करके ख्याल रखें।
0: बिल्कुल।
1: और गुंजा बहनी हम आवत रहे हैं तो देखे कमला काकी बैठी रहीन हैं, और कुल काम करत रहीन, करत करत उनके हालत खराब हो गई रही। अब बुढ़ापे में इतना काम करब तो

0: दिक्कत वाली बात बा, मूल उनका जवान बेटवा वहीं बैठ के देखत बा, महतारी कुल काम करत बा। तो हमें लगा कि बतावा देखा महतारी किस तरीके के बीमार हैं और कुल कामो करत है ना, बेटवा बैठ के मुँह ताकत बा।
1: तो देखा ये सब होत काहे है, ये सब होत है हमार सब के जो बड़े बुजुर्ग है, अगर वो अपने लड़कन के अच्छे संस्कार सिखावत है तो कुल तुहार मदद भी करिए, तुहार सम्मान भी करिए।
0: तो हमें ही लागत है बहनी कि गदेलन के शुरू से घरे के कामे में थोड़ बहुत हाथ बटावे सिखावे के चाहिए।
1: अच्छा, तो हम बहनी सोचे, हाँ।

0: अगर ये हमार गदेलन सीखा थे तो उनके जो जो निर्णय ले के क्षमता है वो तो एक गठित हो ही जाते, साथ ही साथ वो अच्छे बुरे के समझ जाते और उनके जो आगे आवे वाला कार्य है वो में एक निष्ठावान होके कार्य करते
1: ना। देखा जिम्मेदारी के भावना विकसित होते, जब देखा गदेलन अपन बैग स्कूले वाला बस्ता खुद रखा थे, अपन बिस्तर खुद ठीक करा थे, अपन खिलौना समेट के रखा थे, तो वो सीखा थे कि हमार जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल।
1: और जिम्मेदारी देखा अचानक ना ही हो कि बड़ा हो गया तो अब तू जिम्मेदार बना।
0: और जानते हो एक और होता है जिसे तू बताओ कि एक अनुशासित बच्चा कैसे बताए, हाँ,
1: हाँ।
0: लेकिन मुला कुछ कुछ गदेला ऐसा होती है एकदम लापरवाह, क्या कर रहे थे स्कूल से ही अपने कुले थैला बैग जो है फेंक दीन, जूता मुझे उधर किधर किधर पड़ा है बनी, तो कुल अव्यवस्थित इतना बना रहा था।
1: तो हमें देखा गदेलन की ना ही गलती है, उमें गलती महतारी बाप के बाकी वो शुरू, हाँ, जब वो छोटवार हैं उनका तब से बतावे कि स्कूल से आवे तो अपन बस्ता एक जगह रखा, अपन जूता मुझे एक जगह उतारा, है ना।
0: तो देखा होत का है ना कि जो माँ होती बच्चन के वो सोचा थी हमारे गदेला परेशान हुई इतनी दूर से आए तो हम ओके बदे कर देवे कार, लेकिन वो अनुशासित ना हो पावत।
1: बिल्कुल। और देखा आत्मनिर्भरता भी बढ़त है,
0: हाँ,
1: कहे से कि अगर बच्चा हर छोटी चीज के लिए दूसरे पे निर्भर रहे,
0: हाँ।
1: कपड़ा निकाले से लेके के पानी ले तक,
0: हाँ,
1: तो आजकल के महतारी नहीं ना कि हमारे भैया बहुत परेशान हो गए अब तुरंत दौड़ के कुल करे लगा थी, लेकिन नहीं ना ही करे के चाहिए, उनके अंदर के आत्मविश्वास कम होता है।
0: बिल्कुल।
1: देखा जब वो छोटा छोटा काम खुद करे लगा थे ना तो ओकरे अंदर एक भावना आवा थे कि हम कई सकी थे, और यही भावना आगे चल के ओका मजबूत बनावा।
0: और देखा साथे साथ जाना तो क्या होता है, जैसे कि हम गदेला के कहे थे कि बच्चा जा तू ये काम कर ला, हम खाना बनाए थे तो तू पानी ला के दे दा, सब्जी में डाले के सब्जी काटे के बरे हमका टुकड़ी लाए, तो तमाम तरह के काम अगर हम सहयोग लेते तो बालक में क्या होता है एक अपनापन आवत है,
1: सहयोग के भावना आवत है। और देखा आजकल के माता पिता दोनों जने कामकाजी हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो आज के समय में तो देखा जब घर में दोनों जने कामकाजी हैं ना, ऐसे में अगर बच्चन छोटे छोटे काम में मदद करते हैं तो घर के वातावरण भी सहयोगपूर्ण बना था। उदाहरण बदे देखा पानी भर दे लड़कियन, सामान व्यवस्थित कह दे, ये छोटा छोटा काम जो माई बाप के बाहर भी कम कह देते काम के। और देखा मेहनत के सम्मान करब सीखा थे, जैसे घरेलू कार्य जौन होते न बच्चन के सिखावा थे कि कोनो भी काम छोटा या बड़ा ना हो, झाड़ू लगाई सफाई करब बर्तन रखब ये सब काम सम्मानजनक है, जब बच्चा खुद करत है तो वो दूसरे की मेहनत समझत है ना, तो चाहे वो नौकर सहायक या घर के क्यों भी करत बा तो ओकर सम्मान वो करे, यहीं से शुरू होते है वो, मतलब बड़े इनके सम्मान करे भी शुरू
0: कहा थे ना मैंने कि गदेला जो है अपने बड़कन का देख के ही सीखा था।
1: बिल्कुल। और देखा आजकल की जो आधुनिक समस्या होगी कि आज बड़ी समस्या ये कि कई बच्चे के लगभग बच्चन ऐसा है कि मोबाइल टीवी वीडियो गेम में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनका जो वास्तविक जीवन बा उसे जुड़ाव कम हो जाए। देखा घंटन तक वो देखा था मोबाइल और शारीरिक गतिविधि घट जात बा, न खेलत थन, बैठ के एक जगह मोबाइल टीवी देखा थन, आलस बढ़त जात बा, अनुशासन भी कम हो जात
0: बा, जो सीखे वाली चाह है बहनी वो कहीं ना कहीं मोबाइल टीवी की दुनिया में वो
1: खो जाए। तो देखा घरेलू कार्य जोन होते ना वो बच्चन के सक्रिय बनावत है, और जब बच्चा घरे के काम करत है तो खाली काम ना ही करत वो जीवन के सीखत है। तो हम सोचे थे कि छोट छोट लड़के जोन है उन्हें थोड़ी थोड़ी चीज बतावा, जैसे अपन वो खिलौना रख लें, किताब रख लें, पौधन के पानी दे दें, बिस्तर लगा दें, बैग अपन अच्छे से व्यवस्थित कह के रख दें, है ना। तो जून कुछ बातन के और ध्यान दे के चाहिए कि
0: अब जैसे कि गदेला कथो माए बाप कबो कबो अपने रोजगार चले जाते हैं या कबो कहीं अचानक तबियत खराब हो गई तो गदेला इतना सक्षम रहा है कि वो अपने से खाना और पानी लेके पी सके।
1: बिल्कुल। तो देखा सही बात कहो,
0: जिम्मेदार है,
1: हाँ सही बात कहो। और जैसे अगर वो कुछ काम करे के शुरुआत करत बना तो ओकर प्रशंसा करा,
0: हाँ।
1: कि भैया तू तो बहुत ही काम
0: सही किया, हाँ,
1: बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, देखा तू सबकर कितना मदद करा था, तो ये सब चीज ना बच्चन के और प्रेरित करा था कि नहीं अब तो हम और
0: प्रशंसा के नहीं सुनाई मांगत।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हमारा छोटा गदेला है तो अगर तू उनके तनिक प्रशंसा करबो तो तुम्हारे प्रति इतना सम्मान और इतना ज्यादा मेहनत करके दिखाए दिए कि वाकई में सम्मान के लायक रहा थे।
1: बिल्कुल। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात और बहनी कि काम करवावे के चक्कर में दबाव ना डालें।
0: बिल्कुल।
1: मतलब इतना ना दबाव काम के दबाव डाल दें कि उनके पढ़ाई

0: पढ़ाई और
1: बोझ
0: खेल
1: ना रहा है बहनी।
0: हाँ, देखा हर चीज में बहनी संतुलन आवश्यक है।
1: हाँ,
0: बचपन खेले सीखे और बढ़े के समय है।
1: हाँ।
0: इन नाते भागीदारी हो एक चाहिए, शोषण ना हो एक चाहिए, है ना।
1: कहा तो, कि कोनो भी काम अति ना ही हो चाहिए।
0: अति ना हो चाहिए। तो यही नाते देखा घरेलू कार्य में बच्चन के भागीदारी कोनो मजबूरी ना है, बल्कि एक सुंदर शिक्षा है जोन बच्चन के सिखावत है। जिम्मेदारी, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सहयोग और श्रम के सम्मान। छोट छोट हाथ जब घर के काम में जोड़ा थे ना, तो खाली काम पूरा ना होते, व्यक्तित्व के निर्माण होते।
1: बिल्कुल, उनका व्यक्तित्व निखरा था।
0: हाँ, तो यही बदे हम बच्चन की खाली पढ़ाई में ही ना है, जीवन जिए के कला में भी शिक्षित करी।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चा घर संभालब सीखत है जोन बच्चा घर संभालब सीखत है ना, वो भविष्य में जीवन संभालब भी सीख जाते।
1: बिल्कुल सही कहो बहनी। देखा तुहा इतनी नीक नीक जानकारी हमारे बहनी अरे भी सुनी हुई है।
0: बिल्कुल।
1: तो चला अब एक ठीक खूब बढ़िया से गौनाई सुन ली जाए शशि जैन बहनी से।
0: नेकी और पूछ पूछ चला
1: बहनी अरे भी सुने।
0: बिल्कुल।

0: कितनी बढ़िया गौनाई रही गुंजा बहनी।
1: हाँ गंगा
0: है
1: बहनी बहुत नीक रही, दिखा ये गीत गौनाई ये झूमक मन करे थे।
0: बिल्कुल। तो देखा अब आगे बढ़ते हुए हम सभी बात करी थी कि अपने पनघटी पे एक ठो वार्ता बा, हाँ, गांव की बुजुर्ग महिलाओं के अनुभव और सीख कितना कारगर है ना। प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव बहनी से चला सुना जाए।
2: बुजुर्ग शब्द सुनते ही मन में सम्मान का भाव जाग जाता है। बुजुर्ग कोई भी हो, महिला या पुरुष, कहीं का भी हो, गांव का, शहर का, देश का, विदेश का, उनके पास खजाना होता है अनुभवों का, जो उनके पास उम्र के साथ इकट्ठा होता है। ये अनुभव उन्हें मिलते हैं जिंदगी के तमाम वर्षों में आए उतार चढ़ाव से, जिंदगी की राह में मिले सुखों से, दुखों से, अलग अलग परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, इन सब से उन्हें जो अनुभव मिलते हैं, जो कुछ वे सीखते हैं, वे सब उनके पास ज्ञान के भंडार के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे उनके पास होती है बहुत सी सीखें आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए। जिन जगहों पर, जिन परिस्थितियों में ये बुजुर्ग रहते हैं, उसी के अनुसार उनके अनुभव अलग अलग होते हैं। यहां तक कि महिलाओं के और पुरुषों के अनुभव और उनके अनुसार उनके पास का ज्ञान अलग अलग होते हैं। गांव की बुजुर्ग महिलाओं के अनुभव और उनकी सीख बहुत अलग होते हैं। गांव के लोग प्रकृति के बहुत पास होते हैं। यह सच है कि आधुनिक जीवन गांव में भी पहुंच चुका है, सुख सुविधा के साधन वहां पहुंच चुके हैं, फिर भी गांव के लोग शहर के लोगों की तुलना में प्रकृति के बहुत पास होते हैं। बुजुर्ग महिलाओं के समय में जीवन एकदम अलग था। इन महिलाओं ने तमाम बदलाव देखे हैं। उन्होंने हल बैल से खेती होते देखा है, तो अब ट्रैक्टर भी देख रही हैं। हल बैल से की जाने वाली खेती में होने वाली मेहनत उन्होंने देखी है, की है,

लालटेन और ढिबरी की रोशनी में काम किया है, तो अब बल्ब और ट्यूबलाइट की रोशनी में भी देख रही हैं। हाथ से पंखे बनाए हैं और झले हैं हवा के लिए, तो अब बिजली के पंखे की हवा में भी रह रही हैं। इक्का तांगा बैलगाड़ी में चली हैं, तो अब मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों को भी देख रही हैं। स्वाभाविक है कि इन परिवर्तनों को देखते हुए उनकी लंबी उम्र के साथ ही उनके अनुभवों का भंडार बहुत बड़ा ही नहीं है, बल्कि इसमें तरह तरह के अनुभव शामिल हैं। आइए गांव की एक आम बुजुर्ग महिला के जीवन पर एक नजर डालते हैं। उनका बचपन घर के आंगन, उसारे, बाहर खेतों में, कुओं के आसपास, आम की बगिया में घूमते खेलते बीता। खूब उछल कूद की, गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाया, नीम के पेड़ पर झूले झूले, आम की बगिया में ढेला मारकर आम तोड़े, जामुन के पेड़ से गिरे कच्चे पक्के जामुन खाए। कम उम्र में ही उनका बचपन बीत गया, वे सयानी हो गईं। दादी, माँ, चाची आदि के कामों में हाथ बटाना सीखने लगी, घर को बुहारना, चूल्हे में लकड़ी जलाना, चूल्हे पर खाना बनाना, कुएं से पानी भर लाना, खेतों में काम में हाथ बटाना, पैदा हुए अनाज के रख रखाव को देखना, समझना, सब उम्र के अनुसार सीखती गईं। लड़कियों की शिक्षा को उनके समय में बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। कुछ दिन गांव के स्कूल में गईं, थोड़ा लिखना पढ़ना सीखा, कुछ सिलाई बुनाई सीखी और छोटी उम्र में ही उनका ब्याह कर दिया गया। एक गांव से दूसरे गांव आ गईं, लंबा घूंघट डालकर, धोती के ऊपर चादर डालकर, घर की चारदीवारी में बहुत सी जिम्मेदारियां आ गईं सिर पर। बड़ा परिवार हुआ करता था, बड़ों का अदब लिहाज किया, छोटों को प्यार दुलार दिया, हम उम्रों के साथ मस्ती भी की, घर की हर तरह की जिम्मेदारियां संभालना निभाना सीखती गईं। बच्चे हुए तो बड़ों की हिदायतों सलाहों के साथ उनका लालन पालन किया, हर कदम पर अनुभव इकट्ठे होते गए। बच्चे के पेट में दर्द हुआ तो पानी में हींग गर्म कर नाभि पे लगाया तो आराम हो गया, किसी को फुड़िया फुंसी हो रही है तो उस पर नीम की छाल घिस कर लगाई, ठीक हो गई, कहीं चोट लग गई, मोच आ गई, हल्दी प्याज का लेप लगा, पट्टी बांध दी, खून निकल रहा है तो फिटकरी रखने से रुक गया, दांत में दर्द हो रहा है, अमरूद की पत्ती उबाल कर पानी छान कर उसमें थोड़ा नमक डालकर कुल्ली करने से आराम मिल गया। उस वक्त हर चीज की दवा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, इस तरह के इलाज करते समझने लगी जड़ी बूटियों के बारे में। ये सब अनुभव उन्होंने जरूरत के अनुसार काम करके पाए। मौसम का क्या, कभी अधिक वर्षा तो कभी सूखा, ऐसे समय के लिए अनाज बचाना सीखा। काफी उम्र तक तो घर के बाहर के कामों में निर्णय दूसरे करते रहे, वे अमल करती रहीं, देखती रहीं, समझती रहीं, सीखती रहीं, और उम्रदार होने पर वे निर्णय भी लेने लगीं, राय देने लगीं अपनी, लोग उनकी बातों पर ध्यान देने लगे। कुछ कुछ बुजुर्ग महिलाओं का तो घर परिवार पर ही नहीं बाहर भी दबदबा रहता है। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा धरती माँ का, प्रकृति का सम्मान किया है, क्योंकि इस प्रकृति से ही तो उनकी रोजी रोटी रही है, खेती से खाने को अनाज मिला है और अनाज को बेचकर धन भी इकट्ठा हुआ है। प्रकृति को, प्रकृति के मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझती हैं बुजुर्ग महिलाएं। बरसात में सब्जियों की किल्लत होगी सो अचार बड़ी बनाकर उस कमी को पूरा करती हैं वे, इस तरह अनजाने ही संरक्षण सीख गई वे। गायों की, बैलों की, बकरियों की देखभाल की है उन्होंने, उनके दूध से दही छाछ बनाया है,

हल बैल से खेती होते देखा है। यह सब देखते करते वे इन पशुओं से प्यार करने लगी। पशु प्रेम सीख गई वे, उन्हें प्यार करना, इज्जत देना सीख गई वे। आज जब आपसे बातें कर रही हूं तो मुझे याद आ रहा है अपना गांव। गांव छूटे तो बहुत समय हो गया है, पर बहुत सी यादें आज भी एकदम ताजा हैं। बाबा दादी गांव में रहते थे तो गर्मी की छुट्टियों में वहां जाना होता ही था। हमारे घर के सामने महुआ का एक विशाल वृक्ष था, जिसे मेरी दादी की सासू माँ यानी मेरी परदादी ने लगाया था। उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पेड़ लगाना बड़ी बात होती है, पर उसकी रक्षा करते हुए उसे बड़ा करना उससे भी कठिन काम होता है। महुआ का पेड़ इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता है। पूरा विकसित पेड़ 15 से 20 साल में ही तैयार होता है। मैंने तो पूरी तरह से विकसित परिपक्व पेड़ देखा। यह वृक्ष छाया देता था, इसका फल और फूल दोनों उपयोग किए जाते हैं, पत्तियों से पत्तल वगैरह बनते हैं, महुआ का तेल भी उपयोगी होता है। तो आज सोचती हूँ कि जब आज हम विकास के नाम पर पेड़ काटते जा रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला ने अपनी कम उम्र में ही एक अत्यंत उपयोगी पेड़ का बीजारोपण किया। उनके दिमाग में पर्यावरण संरक्षण जैसा कोई शब्द तो नहीं ही रहा होगा, पर उनका वह कदम इस दिशा में ही तो था। बात छोटी लग सकती है, पर कितना बड़ा संदेश, कितनी बड़ी सीख देती है पर्यावरण को बचाने की, उसकी रक्षा करने की। मैंने एक बुजुर्ग महिला के जीवन की बात की है, उसी को ध्यान से देखते हैं। बचपन में वे धरती माँ की गोद में, प्रकृति की गोद में खेलती कूदती रहीं। तो यह तो है प्रकृति से प्रेम करने का, उसके करीब रहने का संदेश। भले ही जीवन शैली बदल गई है, परिस्थितियां बदल गई हैं, पर आज भी हम बच्चों को प्रकृति के पास ले जा सकते हैं। आज बच्चे कमरे की चार दीवारी में मोबाइल की दुनिया में खोए हैं। बुजुर्ग महिला अपने बचपन से संदेश दे रही हैं बच्चों को, बड़ों को, सभी को पार्कों में प्रकृति के बीच जाने के लिए। विवाह के बाद वह बच्ची, मेरा मतलब बुजुर्ग महिला से ही है, एक बड़े परिवार के बीच आई तो उन्होंने धीरे धीरे घर के कामकाज सीखे, पाक कला सीखी। आज भी तो इन सब की जरूरत है। लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या महिला, जब वह घर के खाने का स्वाद का आनंद पाएगा तो अपने आप आज की एक बहुत बड़ी समस्या फास्ट फूड से दूर हो जाएगा। फिर एक संयुक्त परिवार में रहना, सामंजस्य बनाना, उन महिला ने सीखा और जाना इनका महत्व अपने अनुभव से। माना कि आज संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, पर आस पड़ोस, नाते रिश्तेदारों के साथ हम स्वस्थ मधुर संबंध तो बना ही सकते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ हो सकते हैं ना। तो हर कोई जो अकेलेपन का रोना रोता रहता है वह नहीं होगा। मिलजुल कर रहने का संदेश ही तो दे रहा है बुजुर्ग महिलाओं का जीवन। उनके समय में साधन सीमित थे, वे उसमें ही अपना काम चलाती थी। आज साधनों की कमी नहीं है, हर रोज कुछ नया सामने होता है, तो जीवन सरल ना होकर जटिल हो गया है। कम साधनों में ही जीवन को अच्छा, सरल बनाने की सीख मिलती है हमें गांव की बुजुर्ग महिलाओं से। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने अनुभव से ही जाना है छोटी मोटी बीमारियों का घरेलू इलाज। उनकी सीख को आधुनिकता के नाम पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। इन महिलाओं ने घर और बाहर बहुत मेहनत की है। दाल बनाने के लिए घर में चक्की चलाई है, यहाँ तक कि अनाज पीसकर उसे आटा भी बनाया है। बाहर खेतों में भी काम किया है, तो उनके जीवन से हमें मेहनत करने की सीख मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने उम्र के साथ जो अनुभव प्राप्त किए, उनसे जो सीख वे हमें देती हैं, उनमें प्रमुख हैं मिलजुल कर रहना, रिश्तों का सम्मान करना, मेहनत करना, कठिन परिस्थिति में भी धीरज रखना।

0: साधनों में जीवन जीना, सरल जीवन जीना, विपरीत समय के लिए चीज़ों को बचा के रखना और प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा करना, छोटी मोटी बीमारियों का घरेलू इलाज करना, और ये जो सीखे हैं हर समय में, हर परिस्थिति में काम आती हैं, हमें इन्हें जानना समझना चाहिए और इन्हें अपने रोज के जीवन में इस्तेमाल कर इनका लाभ उठाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, कारगर हैं।
1: गुंजा बहनी।
2: हाँ बहनी।
1: देखा कविता श्रीवास्तव बहनी कितना फरियाए के बताएं कि गांव की बुजुर्ग महिलाओं के अनुभव और सीख कितना कारगर हो सकत हैं जिंदगी में। तो ये चाहिए कि हम में सबका बहनी हरेन के अपने जीवन में बस होकर लागू करे के चाहिए, है ना
2: बहनी। देखा नया तकनीकी संस्कृति आवे से पुराना नहीं भूल जात।
1: बिल्कुल, तो का याद रखे के चाहिए और वही रास्ता पे जरूर चले के चाहिए, कहे से कि उसे हमें सबका फायदा ही मिले। तो अब देखा फायदे के साथ साथ एक और बढ़िया से चला गौनई सुना जाए शशि जैन बहनी से।
2: चला सुन लीजिए।

0: गुंजाबेनी।
1: हाँ गंगा बेनी।
0: कितनी नीक गवनई रही ना।
1: हाँ
0: तो देखा हम तो का इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी, इतनी बढ़िया बढ़िया गवनई सुनवा थी। तो बताओ कि आज अपने पनघटे के रसोईया में कमन चीज बतावा था तो बहनी हरन के।
1: देखा बहनी, रसोईया घर से तो कभो पकवान के स्वादिष्ट रोटी सामग्री सब कुछ बताई थी व्यंजन के बारे में, लेकिन मुला आज हम सोच रहे थे कि जो ने गर्मी के मौसम चलाता है
0: हाँ
1: तो उमेन हम सभी के जो घड़े के पानी के उपयोग किया जाते हैं कितना
0: हाँ
1: लाभकारी होते, उके गुण बतावे की
0: ई तो
1: चाहे
0: बहुत
1: थी।
0: बहुत बढ़िया की हु काम। कहे से कि देखा आज के आधुनिक युग में मनई हर घरे में फ्रिज रखे बा,
1: हाँ बहनी।
0: और फ्रिज के ठंडा पानी हर घरे में बा।
1: हाँ
0: लेकिन देखा कि फ्रिज के पानी गर्मियन में पिए से नुकसान भी होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन पहले के जमाने में देखा मिट्टी के घड़ा मनई घरे में रखत रहा है ना। तो ये देखा बर्तन रखे के ये खाली अब तक खाली पानी पिए भर के ना, बल्कि हमार भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक चिकित्सा के भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। कहें से कि देखा मिट्टी में एक अद्भुत प्राकृतिक शक्ति होत है। जब पानी घड़े में देखा रखा जाता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होते है, और देखा वो जो ठंडक रहा था वो प्राकृतिक होते, न ज्यादा ठंडा रहा था न ज्यादा गर्म
1: काहे कि
0: नुकसानदायक।
1: जो ने मशीनीकरण होते है वो तुरंत ही ठंडा करते है, तो
0: हाँ
1: जो जब हम सब

0: पिए थे भैया बनियारिन, तू जाए के शरीर के कितना नुकसान दे थे वो।
1: नुकसान दे थे। और बहनी देखा, अगर पनिये हम तो पी पियत रहे, ओकर मिठासे अलग होता है,
0: हाँ,
1: है ना, वो पानी में स्वाद आवत
0: और
1: है।
0: जाना तुम्हें ने, एक घड़े पानी में कुल जो ने हमारे पाचो तत्व के जो ने वो गुण
1: हाँ
0: रहा है।
1: बिल्कुल, देखा कई चीज के लिए फायदेमंद होते हैं। पाचन तंत्र पहली बात तो सही करत है ना। और घड़े के पानी जोन बस संतुलित तापमान पे होते हैं, जैसे जोन भोजन बहु आसानी से पच जाते हैं। और गले के लिए सही होते हैं। आजकल देखा मने बहरे से आए, तुरंत फ्रिज खोले, बोतल निकाले, पानी पी ले।
0: अब भाई वो पानी के ताप कितना ठंडक रहा था,
1: ठंडा रहा था, अब वो गला पकड़ लिए तो ज्यादा ठंडा ना रहा। और अगर घड़े में से पानी निकाला तो वो जितना ठंडा हो के चाहिए उतना ठंडा रहा था। पहली बात तो प्यास बुझ गई, दूसरी बात गला बच गया।
0: बिल्कुल। और जाना तो भाई, अगर जैसे कि हम ठंडा पानी कुल फ्रिज के आए, तुरंत घामे से कहीं से पी लिए, तू जाके तो देखा संताप बिगाड़ देते पहले तो शरीर के।
1: बिल्कुल।
0: दूसर बात का होते कि जैसे हमार पेट की जठराग्नि होती, वो जो अपना काम कर रहे थे पेट के खाना पचावे के, तू बहनी वो जठराग्नि के शांत कर देते।
1: शांत करते बिल्कुल। और देखा लू लगे के भी संभावना कम
0: बिल्कुल
1: होते, कहे
0: बिल्कुल।
1: से कि वो ठंडक धीरे धीरे जाते, बहुत ठंडा अचानक से ना पेटे में जाते,
0: बिल्कुल
1: है ना, जितना जरूरी होते उतना ही
0: उतने
1: ठंडा
0: हो चाहिए।
1: जाते।
0: बिल्कुल। आ कहते ना कि जैसे कि शरीर के सब कुछ क्रिया जैसे चले के चाहिए, वो प्राकृतिक तौर पे हो जाए तो बढ़िया रहा था।
1: बढ़िया रहा थे। और देखा मैं प्राकृतिक जोन मिनरल्स होते हैं वो होते हैं कि
0: हाँ
1: जोन पानी के गुणवत्ता के बेहतर बनावत हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो घड़े में रखा पानी देखा ताज जिसे लगा था कि हरदम ताजा बा, अभी अभी
0: हाँ
1: नल से
0: बिल्कुल
1: निकला बा, है ना,
0: बिल्कुल।
1: जोन शरीर के प्राकृतिक ऊर्जा देते हैं। और एक चीज पर्यावरण के लिए भी लाभकारी बा, घड़ा खाली शरीर के बदे ना प्रकृति के लिए भी अच्छा बा। फ्रिज देखा बिजली खात है,
0: हाँ बहनी।
1: प्लास्टिक के बोतल के प्रदूषण बढ़त है उसे बिजली, ओ में देखा घड़े में ना बिजली चाहिए, ना प्लास्टिक चाहिए, ना पर्यावरण के नुकसान हुए, यानी स्वास्थ्य भी, बचत भी और पर्यावरण संरक्षण भी।
0: अब देखो बहनी कितना बढ़िया है, अगर हम घड़े के कुल अगर खूब रोज रोज के पानी बदल दी,
1: हाँ
0: साफ
1: हाँ
0: सुथरा पानी धरी,
1: हाँ
0: और ओके साथे साथे अगर हमार घड़ा लंबा समय तक चले, तो बहनी ओके नीचे हम जो कहते नहीं कि कपड़े के गराड़ी बनाए दी थी,
1: हाँ
0: तो
1: जो
0: उसे
1: टिका
0: हमार
1: रहा
0: सभी घड़े लुड़कत पुड़कत नहीं। अब देखो बहनी, नहीं तो रोज दूसरे तीसरे दिन फिर चला
1: बिल्कुल।
0: बाजारे खरीद के ला, या फिर खुद होकर बनावा।
1: हाँ फूटे के डर रहा
0: हाँ
1: थे। तो
0: तो
1: हम तो सब कुल बहनी हरन से यही कहा कि अगर घरे में घड़ा ना आए
0: हाँ
1: तो एक बार फिर से होकर अपने घरे में ले आवा, छोटा सा बदलाव आपके स्वास्थ्य में बड़ा अंतर ले आए।
0: बिल्कुल
1: तो अपनी परंपरा के खाली याद न करें बल्कि अपने जीवन में होकर
0: लगावें।
1: अपनावें
0: बिल्कुल
1: और घड़े के पानी पिए, स्वस्थ रहें।
0: स्वस्थ रहें।
1: अब देखा इतनी अच्छी अच्छी बात पर, है ना, इतनी
0: हाँ
1: अच्छी
0: बेटी देखा,
1: जानकारी
0: अब तू
1: वाली।
0: इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी, अब चला हमका एक बढ़िया से कोई गौनी
1: अब तो
0: सुनाई
1: का
0: जाए।
1: बढ़िया से हम फिल्मी गीत सुनाई, तीसरी कसम फिल्म से मन्ना डे जी की आवाज में, चला सुना जाए।

0: बैठी पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या,
0: रामा उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले।

0: गुंजा बहनी कैसे लगा तो का गीत?
1: देखा बहनी इतनी बढ़िया गुनाई रही है, और देखा पुराना लोक गीत तो कितना मन लुभावन होते।
0: हाँ लेकिन हम तो का फिल्मी गीत सुनाए इतना बढ़िया कि हम जोने तो एकदम झूम जाए। देखा पहले के गाने के बात ही अलग रही है ना, पहले के बूढ़ पुरानियन के बात अलग रही कि कितना बढ़िया बढ़िया बात बतावत रहन हमें सबका, कितनी बढ़िया बढ़िया सीख देत रहने। हमें लागत है आधुनिकता के चक्कर में पारंपरिक चीज में नहीं भूलत जाता है ना,
1: सही को
0: लेकिन हमें लागत है कि कुछ चीजें कुछ में बदलाव जरूरी है।
1: हाँ।
0: लेकिन कुछ चीजें लय के चले के चाहिए जो ने हमारे सबके जो आवे वाली पीढ़ी बा उहू के पता हुए कि देखा हमारे गांव देश में कैसन रहा, हमार बूढ़ पुरानिया कैसन रहन,
1: हमारी संस्कृति कैसे रही,
0: संस्कृति कैसे रही, तो बहुत जरूरी है ये सब बच्चन के जानब। अब एकरे साथे चला एक ईमेल संदेश सुना जाए और बहनी हरण भी सुने।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी हैं।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: pangatprogram@gmail.com, स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com, pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
0: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
5: बेसब्री से इंतजार रही।
0: देखा पनघटे पे आए के बाद जाए के तो मन बिल्कुल ना था, लेकिन समय अब होएगी बात चले के, तो बहनी हरन से किया जाए राम राम
1: राम राम बहनी हरे।

ग्रामीण बहन अपना कार्यक्रम पनघट सुन रही थी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दो बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ।

0: one in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश है जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: बिल्कुल जागृति।

0: ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और यूपीआई जैसे जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें एआई को जोड़ देती हैं, तो भारत का डीपीआई बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो एआई मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुप्रे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा

0: आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
2: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की

0: सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए, आइए सुनते हैं कार्यक्रम NCERT का प्रायोजित उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जाने में फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है।

0: बताओ, आपको बता दें कि लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओ, लोकतक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओ मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकतक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकतक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकतक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकतक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकतक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यह लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओ, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकतक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओ, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकतक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकतक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकतक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकतक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकतक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBRS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं।

0: एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ।
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40,
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11, ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9, ओह उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जो अब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, now it's 6, 5, 4, ओह
2: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
5: Only four.

0: तरफ देखो।
1: सू, ओनली फोर। ओह, अब सिर्फ तीन बचे हैं।
0: क्या तीन बचे हैं? What's three, dear?
1: तीन पत्तियां।
0: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
0: हाँ, हाँ।
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
0: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब तीन पत्तियां बची हैं और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉनसी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
1: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओह जॉनसी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: टू, ओह, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जोंसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान

0: बारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल सरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी। आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था। चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ,
2: हाँ,
3: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
3: ये लो, कॉफी पियो।
2: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
3: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
2: ओह गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
3: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
3: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
3: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके

0: दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ,
1: मास्टरपीस।
0: हाँ।
1: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

रक्तदान कीजिए, दूसरों का प्राण बचाइए। क्या आप जानते हैं हमारा शरीर निकाले गए रक्त की क्षतिपूर्ति तत्काल कर लेता है, बदले में हमें नया रक्त मिलता है, तो है न फायदे का सौदा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। संपन्न होती है हमारी ये सभा। शाम की सभा धरती के गीत कार्यक्रम से 5 बजे शुरू होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। इस बीच हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती के गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं छेदीलाल और साथियों के गाए लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती के गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं छेदीलाल और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लाचारी स्वर छेदीलाल और साथियों का।

धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में

0: युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
5: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
6: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मेरा नाम है पूजा यादव और मेरे साथ
1: मैं सुष्मिता श्रीवास्तव। दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर आपका अपना कार्यक्रम युवाणी। पूजा, तुम नहीं लगता कि हम हर बार अपने कार्यक्रम में कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिनकी वाकई हम युवा को जानने की ज़रूरत है जिस बारे में? और अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम बात करें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे जरिया हैं जो हमें अपनाने चाहिए शायद, जिसकी वजह से हम ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी कहलाएंगे और एज यूथ ऑफ द नेशन हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो दोस्तों, ऊर्जा संकट 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ बढ़ती आबादी, दूसरी तरफ खत्म होते कोयला, डीजल के भंडार। प्रकृति ने हमें बहुत सारे ऐसे स्रोत दिए जैसे कि सूर्य दिया, और सूर्य से बनती है सूर्य ऊर्जा।
0: सौर्य ऊर्जा न केवल बिजली बनाती है बल्कि कोयला, पानी और पर्यावरण तीनों को सुरक्षित भी करती है। अगर बात ऊर्जा संरक्षण में सौर ऊर्जा की करें तो जैसे कि बिजली की बचत, सोलर पैनल दिन में सूरज की रोशनी से बनता है, सौर ऊर्जा से बिजली की बचत होती है।
1: और अगर देखें दोस्तों, तो अभी हम ये ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि हीट भी इतनी ज़्यादा है कि जो पीक टाइम होता है 12 से 4, ये इस समय जो सूर्य ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो हीट इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इस समय जो लोड है, यानी कि जो बिजली की जो खपत है, वो भी इस वक्त सबसे ज़्यादा होती है। तो यही पीक टाइम सोलर की बिजली को ग्रिड में उस अगर हम स्टोर कर सके तो जो बोझ है वो कम हो सकेगा।
0: बिल्कुल, और सबसे ज़रूरी जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है पानी की बचत। वो कैसे, आप इस तरह से समझिए कि थर्मल पावर प्लांट एक यूनिट बिजली बनाने में 3 लीटर पानी कंज्यूम कर लेता है। सोलर में पानी लगेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि पानी को हम सुरक्षित कर सकते हैं।
1: वाकई आप देख सकते हैं कि कोई एक चीज़ अगर हमने सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया तो कितनी तरीके से हम एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हैं और इन रिटर्न अपने आप को हेल्प कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अगर आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल टारगेट सेट किया है, जिसमें से 280 गीगावाट सिर्फ सोलर से ही आएगा। और अगर ऐसा हम देखें तो जो हमारा 45 करोड़ टन CO2 ऐसा करने से बचत होगी, यानी कि एनवायरनमेंट पे जो हम कहते हैं ना CO2 राइज कर रहा है, पोल्यूशन है, तो इस तरीके से एक कितनी अच्छी साइकिल है कि हम जहाँ हम लोड की भी बचत कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की भी बचत कर रहे हैं,
0: बच रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों और तरीकों से, जैसे कि तुमने कहा, हम काफ़ी सारी चीज़ों को सुरक्षित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूरज से फ्री बिजली बनाकर कोयला, डीजल और पानी तीनों बचाती है, इसलिए ये ऊर्जा संरक्षण का सबसे बड़ा हथियार है।
1: बाकी और कुछ हमारे जैसे सोलर हीटर हो गए, सोलर वाटर हीटर है, सोलर कुकर है, सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे कुछ बदलाव अपना कर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भारी मात्रा से जो पारंपरिक बिजली है उसकी बचत कर सकते हैं।

0: सौर ऊर्जा न केवल ऊर्जा बचाने में मदद करती है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक सुरक्षित और सहज विकल्प भी है। सौर ऊर्जा केवल वैकल्पिक ईंधन नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी कंजर्वेशन का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा सुरक्षित तरीका है। ये हमें ऊर्जा की खपत को कम किए बिना ऊर्जा के नुकसान और पर्यावरण के विनाश को रोकने की शक्ति देता है।
1: बिल्कुल। तो पूजा, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमेशा ही बात करते रहते हैं, दोस्तों को कुछ सीखने को भी मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: और इसी के साथ, लेकिन क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं लाते हैं, एंटरटेनमेंट भी

0: ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमेशा ही बात करते रहते हैं, दोस्तों को कुछ सीखने को भी मिलता है.
1: बिल्कुल.
0: और इसी के साथ, लेकिन क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं लाते हैं, एंटरटेनमेंट भी लाते हैं, तो आइए एक एंटरटेनमेंट का तड़का लेते हैं एक गीत के साथ.

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने शो में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट लेकर आते हैं ताकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और आप जागरूक भी रहें। तो आज हम शामिल कर रहे हैं बातचीत जिसका विषय है युवाओं के करियर ग्रोथ में किस प्रकार सहायक राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रोफेसर धनंजय यादव से भूपेंद्र कुमार मिश्रा की बातचीत, तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
6: नमस्कार, आज हम युवाड़ी के एक खास सेगमेंट में आपके साथ उपस्थित हैं। मैं भूपेंद्र कुमार मिश्र आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, शिक्षा किसी भी समाज के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसा कि जीवन के लिए आवश्यक अन्य चीज़ें। शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ता है और भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को इंट्रोड्यूस करके शिक्षा जगत में जो शिक्षा का परिवर्तन किया है, आमूलचूल परिवर्तन आप कह सकते हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और आगे दक्षता आधारित जो शिक्षा है वो देखने को मिलेगी और लोगों को स्किल डेवलपमेंट में भी सहायता मिलेगी। आज हम जानेंगे कि हमारे जो युवा छात्र हैं, यह नवीन जो प्रणाली है शिक्षा की, उसके माध्यम से वो अपना करियर कैसे आगे बढ़ा सकते, इन्हीं सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज उपस्थित हैं स्टूडियो में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष और वर्तमान में प्रोफेसर धनंजय यादव सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: थैंक यू
6: सर। हम जानना चाहेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है जो कि 2020 में लाई गई है, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें यह नई शिक्षा नीति लानी पड़ी? पुरानी शिक्षा नीति क्यों अप्रासंगिक हो जा रही थी? इन सब विषयों पर थोड़ा सा प्रकाश करें तो अच्छा रहेगा।
7: बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोग अक्सर उच्चारित करते हैं नई शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति नहीं है, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो प्रादुर्भाव हुआ उसके पीछे का अगर इतिहास जानना चाहेंगे आप, तो इसका मसौदा 2019 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और उसमें भारतवर्ष के तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे इस के ड्राफ्ट के बारे में व्यू पॉइंट्स मांगा था, कि उनके सजेशंस मांगे थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें परिवर्तित की जा सकती हैं, क्योंकि बेसिक एजेंडा था कि 2047 तक भारत को कैसे समर्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। क्योंकि आप ये भी देखिए कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ युवा जनसंख्या सबसे अधिक है और युवाओं को अगर सही दिशा न मिल पाए
6: जी
7: तो पूरा देश दिग्भ्रमित हो जाता है। तो देश को नई दिशा देने में युवाओं की भूमिका होती है
6: जी, जी।
7: क्योंकि दे आर द मोस्ट पोटेंशियल पर्सन्स, तो उसको सही दिशा मिल पाए, उनके पोटेंशियल की सही जांच हो सके, वो अपने आप को सही ढंग से समझ सकें। बेसिक बात यहाँ पे आती है कि आप देखें कि अपनी टोटल एजुकेशन जर्नी में हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, हु आई एम, व्हाट फॉर आई एम एंड व्हाट वी कैन डू इन आवर फ्यूचर। तो इन सब बारे में जब कहते हैं समर्थ भारत और सशक्त भारत
6: जी,
7: तो बेसिक मोटिव इसमें ये था कि छात्र को कैसे समर्थ बनाया जाए, छात्र को कैसे सशक्त बनाया जाए, छात्र को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। और कब बनेगा? जब उसको अपनी शक्तियों का ज्ञान होगा, जब उसको अपने पर्यावरण का ज्ञान होगा, जब उसको शिक्षा की आवश्यकताओं का ज्ञान होगा, जब उसको भारत की आर्थिक आवश्यकताओं का ज्ञान होगा, जिससे कि हर युवा को राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जा सके और वो कैसे एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूटर बन सके राष्ट्र के विकास में। तो राष्ट्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए युवा शक्ति को सही दिशा दी जाए।

0: सके और उसको जोड़ा जा सके मुख्य धारा में,
1: जी
0: इसको ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया। और पुरानी शिक्षा नीतियों में इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि पुरानी शिक्षा नीतियाँ थी ऊपर से बन के आती थी चली जाती थी, यहाँ पर यह है जमीन से उसका इनपुट लिया गया है। और चूंकि भारत बारे में देखिएगा कि जितनी विषमता हिंदुस्तान के अंदर है उतनी शायद किसी दूसरे राष्ट्र के अंदर नहीं है
1: जी,
0: यहाँ पर भौगोलिक विषमता है, यहाँ पर भाषाई विभिन्नता है, यहाँ पर सांस्कृतिक विभिन्नता है, जितनी तरह की विभिन्नताएं देख सकते हैं कई राष्ट्रों का यहाँ पे आपको समन्वय मिल पाएगा
1: जी।
0: इसलिए अगर छात्रों की वेरीड डेवलपमेंटल नीड्स उसको अगर सिस्टम कैटर नहीं करेगा तो आप हर छात्र के लिए उसकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध नहीं करा सकते
1: जी।
0: तो एक टर्म आगे सुना होगा आप लोगों जिसे कहते हैं ऑटोनोमी, स्वायत्तता। तो इस शिक्षा नीति ने छात्रों की स्वायत्तता पर विशेष ध्यान दिया है। और यहाँ पे क्या है कि चूंकि हम एक हिट्रोजनस सोसाइटी में रहते हैं और उस हिट्रोजनस सोसाइटी में आपके पास फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, सेकेंड जनरेशन लर्नर हैं, थर्ड जनरेशन लर्नर हैं, टेक्नोलॉजिकली वेल इक्विप्ड बच्चे भी हैं और टेक्नोलॉजिकली डिप्राइव्ड लोग भी हैं
1: जी,
0: अधिक पैसे वाले भी हैं, कम पैसे वाले भी हैं, खुद अर्न करके पढ़ाई करने वाले भी हैं और दूसरों को पढ़ाई में सपोर्ट करने वाले भी हैं। तो इस हिट्रोजिनस एनवायरनमेंट में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 ये एक ऐसा रोडमैप है जो कि मदद करेगा अगर सही अर्थों में इसको लागू कर दिया गया। अभी आप देखेंगे कि एज ए ड्राफ्ट इट इज वेरी गुड डॉक्यूमेंट, एक रोडमैप तैयार करता है जो कि आपको 2047 के भारत के निर्माण में मदद करेगा प्रोवाइडेड ऑल द स्टेक होल्डर्स कम फॉरवर्ड आगे आएं और वो आगे आकर के अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से समझें। इसमें राजनेताओं का दायित्व है, इसमें समाज सेवियों का दायित्व है, इसमें गार्जियंस का दायित्व है, शिक्षकों का दायित्व है, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का दायित्व है, मीडिया का दायित्व है, हूएवर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सभी राष्ट्र के एक अंग हैं तो सब मिलकर काम करेंगे इसमें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। और जो कहा गया कि भविष्य
1: जी,
0: आज जब इंटरनेशनल थ्रेट्स आपके सामने हैं, स्टैंडर्ड के सामने भी आगे देखते हैं तो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंपेयर किया जाता है विदेशी संस्थाओं से
1: जी जी,
0: ठीक है, हमारी जो आउटपुट होती है चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिक्स क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिक्स क्षेत्र में, इन वॉट एवर स्फीयर वी कैन सी, वो सब हिंदुस्तान में तो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ ज़्यादा विदेशों में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी जनशक्ति को सही दिशा दे पाएं, उनकी सामर्थ्य के अनुकूल आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध करा पाए तो शायद ये बहुत बड़ा प्रयास होगा राष्ट्र का, राष्ट्र के निर्माण में। और उस राष्ट्र के निर्माण में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक बात और इसमें अक्सर कही गई है, आपको ध्यान होगा कि कल्चरली रूटेड सांस्कृतिक रूप से हमारी जो विरासत है वो प्राचीन भारतीय परंपराएं, प्राचीन ज्ञान परंपराएं और प्राचीन जो हमारे आदर्श थे, मूल्य थे, उनके संरक्षण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि उन्हीं मूल्यों के संरक्षण से ही हम आगे चलेंगे तो क्या होगा, हम एक भारतीयता के इनपुट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अक्सर बात कही जाती है, आप देखते हैं कि नए आर्मामेंट्स बन रहे हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं, तो उसमें देखा रहता है कि उसमें भारतीयता का वोट कहाँ है, टोटली इंडिजिनस सिस्टम हम कैसे इवॉल्व कर सके, क्योंकि रिसोर्सेज के बारे में चाहे फिजिकल रिसोर्स देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिक रिसोर्स देख लीजिए, चाहे सोशल रिसोर्स देख लीजिए, तो मोस्ट रिसोर्सफुल कंट्री इंडिया है और उन रिसोर्सेज का सही ढंग से उपयोग हो सके छात्रों के निर्माण में, क्योंकि एक छात्र अकेले नहीं होता, एक छात्र अगर पढ़ाई में आगे जाता है तो उसके पीछे उसका परिवार होता है, पूरा समाज होता है, और अगर उसको सही दिशा आपकी शिक्षा प्रणाली दे पाती है तो क्या होता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उस शिक्षा व्यवस्था के बारे में सकारात्मक विचारधारा विकसित होती है, सकारात्मक एटीट्यूड विकसित होता है, तो यहाँ जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है सबको साथ मिलकर के आगे चलना है। और ये जो सिस्टम देखिएगा, कहा गया कि 47 भारत समर्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, तो इसको लाने के लिए एजुकेशन सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी सशक्त बनाना, उनको भी आत्मनिर्भर बनाना, उनको भी जवाबदेह बनाना, एक अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है
1: जी,
0: कि व्हाट फॉर यू आर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस किसी है किसके लिए। तो ये भी बात है कि आपका जो मुख्य कर्तव्य क्या है, मुख्य दायित्व क्या है, जो युवा शक्ति आपके सामने है उसको आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना। NEP में बहुत अच्छी बात ये कही गई है, क्योंकि आपके पास सांस्कृतिक विरासत है
1: जी,
0: है ना, और सांस्कृतिक विषमता भी है, आपके पास ट्राइबल्स भी हैं, आपके पास मेट्रोपॉलिटन कल्चर के लोग भी हैं, और इसी के तहत आपका एक भाषा जानने वाला भी बच्चा है और 15 भाषा

0: भाषाएं जानने वाले भी बच्चे हैं, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टीकल्चरल कंट्री है और डिफरेंट सोशल स्टेटा के लोग हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी के तौर से देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत सशक्त बच्चे भी हैं और डिप्राइव्ड बच्चे भी हैं। तो ये जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, सबको एक साथ चलने का अवसर उपलब्ध कराती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसीलिए ये इंक्लूसिविटी बल देती है, समावेशी।
1: जी जी।
0: और समावेशन में ये कई तरह के समावेशन की बात करते हैं, जो शैक्षिक समावेशन, उसके बाद जो है पेडागोजिकल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, कल्चरल इंक्लूजन, जिससे कि बच्चा कभी भी सिस्टम में आने के बाद अपने आप को डिप्राइव्ड न महसूस करें। तो पूरा जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम हमारा है, वो अगर उसको सपोर्ट करेगा तो ये NEP 2020 जो है आपके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेगी। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि हमारा जो लर्नर है कई तरीके के हैं, फास्ट लर्नर भी है, स्लो लर्नर भी है, ऐसे भी अधिगम करता है जो कि एक चीज़ एक बार बता दी समझ लेंगे, और कोई ऐसे भी हैं जो कि बार बार बताई फिर भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी मेंटल कैपेसिटी कमज़ोर है या उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो उसको ग्रेस्प नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी यहाँ पे स्लो लर्नर के लिए भी आपके रास्ते बने हुए हैं, फास्ट लर्नर के लिए भी रास्ते बने हुए हैं। आपने बीच में भी एक बात कही कि ये जो है कैसे आत्मनिर्भर बनाएगी, और आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कौशल। कौशल आधारित शिक्षा देने के लिए यहाँ ये भी कहा गया कि बच्चा केवल बौद्धिक ज्ञान प्राप्त नहीं करे,
1: जी
0: बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ कौशल का ज्ञान भी प्राप्त करे। और कौशल के लिए जैसे गांधी जी कहा करते थे 3H, हेड, हैंड एंड हार्ट, तीनों का जो है समन्वित विकास होगा तब जाके संपूर्ण मानव का विकास हो पाएगा। तो संपूर्ण मानव के विकास के लिए केवल ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान के अलावा उसकी जो सामाजिक उपयोगिता, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका संरक्षण भी शिक्षा का उद्देश्य है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, जिसमें कि आज का जो नागरिक है पढ़ के निकल रहा है, जब वो निकलेगा बाहर तो मार्केट किस तरह की होगी, हैविंग फ्यूचरिस्टिक विजन कि 2026 में इस समय है तो 26 में सेकेंडरी एजुकेशन जो ले रहा है, 4 साल बाद 30 में निकलेगा, फिर हायर एजुकेशन लेगा, हायर एजुकेशन लेने के बाद जो है वो 35 में करीब वर्कफोर्स में आएगा, तो उस समय की वर्कफोर्स की क्या डिमांड होगी, क्योंकि तब तक जाते जाते AI डोमिनेटेड सोसाइटी हो जाएगी, ICT का उपयोग और ज़्यादा होने लगेगा, तो वो स्किल जो आज के लिए उपयोगी है शायद तब के लिए रिडंडेंट हो जाए। तो ऐसी अवस्था में फ्यूचर्स जो स्किल्स हैं एक नागरिक को अपने सफल जीवन यापन के लिए, क्योंकि देखिएगा मार्केट बदल रही है, बैंकिंग सेक्टर बदल रहा है, आपका जॉब रिक्वायरमेंट बदल रही है, जॉब के लिए स्किल्स बदल रही हैं, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा गया बच्चों को सॉफ्ट स्किल की भी जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को तमाम और हुनर्स की जानकारी होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमारे जो लोकल रिसोर्सेज क्या हैं और उन लोकल रिसोर्सेज को हम कैसे बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 6 से 12 साल की जो 6 to 12 क्लास का जो एज हो, सेकेंडरी की जो स्टेज होती है, वहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी निकलने के बाद 50% बच्चा ऐसा होता है जो कि एकेडमिक्स में हट करके प्रोफेशनल स्ट्रीम की ओर जाना चाहता है। तो उस प्रोफेशनल स्ट्रीम में जाने के लिए तमाम ऐसे वोकेशनल कोर्सेज है जिनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करिकुलम के अंदर खुद दी गई है कि एकेडमिक्स जानकारी होगी आपको, वोकेशनल कोर्सेज की भी जानकारी दी जाएगी। इसमें जैसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर कि वाटर लॉगिंग रहती है, तो वहाँ पर वो व्यवसाय शायद नहीं काम करेंगे जो कि रेगिस्तान में काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो पठारी इलाके में जो टेरेन है वहाँ अलग किस्म की है, वहाँ रिसोर्सेज अलग हैं, तो लोकल रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकें, क्योंकि बच्चे को तुरंत यहाँ से निकाल के आप अगर मेट्रोपोलिटन में जाएंगे तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। ज़्यादातर गार्जियन ऐसा भी चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ ले, पढ़ने के बाद हमारे व्यवसाय को आगे ले चले, तो ऐसी अवस्था में बच्चे को पढ़ाई के बाद उसकी कल्चर से बिल्कुल अलग कर देना भी इस शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो NEP की विशेषता ये है कि NEP ने बच्चों को उनकी सामर्थ्य, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी कल्चर, उनके रिसोर्सेज सबको साथ जोड़ते हुए, तो कल्चरली रूटेड सिस्टम जिसका कि प्रोग्रेसिव विजन हो, इस तरह की प्रणाली लेकर के आगे बढ़ने की बात कही गई है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी है कि हर बच्चे की प्रोग्रेस अलग अलग होती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या होता है कि पढ़ाई किया बाद में छोड़ दिया, इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है
1: जी,
0: कि अगर आपके पढ़ने में इच्छा नहीं लग रही है, मन नहीं लग रहा है, तो यू कैन लीव, और जब लीव करेंगे तो उस समय आपके पास कुछ न कुछ ऐसे कौशल जरूर होंगे जिससे कि आप अपने जीवन का यापन स्वतः कर सकें, मतलब कि कोई भी डिग्री लेने

0: के बाद, कोई भी सर्टिफिकेट लेने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटी भी की गई, इसीलिए इसमें रोजगार के सृजन के भी अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
1: प्रोफेसर धनंजय जी, आपने तो सारी चीज़ों इन्वॉल्व कर लिया अपने डिस्कशन में। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसा भी आपने बताया कि समावेशी विकास की बात की जा रही है, एक पूरे का पूरा विकास हो एक छात्र का, उसकी बात की जा रही है, आपने जो समाज के जो विभिन्न पहलू थे जैसे सांस्कृतिक, सारी चीज़ों को बातें आपने की। बस मेरा एक प्रश्न छोटा सा ये है कि जैसे आपने भी बात की कि मल्टीपली एंट्री और एग्जिट की बात की, जैसे कोई स्टूडेंट मान लिया कि उसने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और किसी कारणवश वो निकल गया बाहर, तो क्या वो कभी भी सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो नई शिक्षा नीति है या आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा कि आपने अभी बताया, उस संदर्भ में एक बड़े मैन पावर की जरूरत होगी कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे एजुकेटर्स हैं, उनको भी एक बिल्कुल एक ट्रेनिंग की जरूरत होगी इसको अडॉप्ट करने के लिए। तो क्या क्या चुनौतियां होंगी, इस पर थोड़ी सी बात करें आप।
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पहली बात तो ये है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट
1: जी
0: की जो ऑप्शन रखा गया है, ये उन लोगों के लिए रखा गया है जो कि गलती से किसी स्ट्रीम में एडमिट हो गए और होने पर उनको लगा कि नहीं, हम सस्टेन नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं, या हमारी फैमिली सपोर्ट ऐसे नहीं है कि हम अपनी एजुकेशन को फर्दर कर सकें, तो उसमें ये कहा गया कि फर्स्ट ईयर होने के बाद उसको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा
1: जी,
0: ठीक है। और सर्टिफिकेट के दौरान भी उनको दो स्किल के कोर्सेज जरूर करा दिए जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में दो स्किल कोर्सेज। स्किल कोर्सेज ऐसे हैं जैसे कि सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज हैं, या डेटा साइंस के कोर्सेज हैं, AI रिलेटेड कोर्सेज हैं, और डेटा मैनेजमेंट एंड ऑफिस मैनेजमेंट के संबंधित कोर्सेज हैं। मतलब कि इंटर के बाद एक साल पढ़ाई लेने के बाद भी अगर आप बाहर जाते हैं तो यू विल नॉट बी अनएम्प्लॉयड। अगर एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो यू कैन गेन एम्प्लॉयमेंट। फिर आपको लगा कि आप फिर आना चाहते हैं, कि आप फर्दर करना चाहते हैं, तो उसमें आने की कोई मनाही नहीं है, ही कैन री एंटर ओवर हियर। जो फ्लेक्सिबल मोड है, आप इंटर कर सकते हैं। और इंटर करने के बाद एक चीज और जान लीजिए कि अब बच्चा जब कभी भी अपनी एजुकेशन जर्नी में आता है
1: जी,
0: तो उसको एक ABCID मिलता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का उसको कोड मिलता है। और उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जो भी वो क्रेडिट अर्न करेगा, आपके ट्रेडिशनल बोर्ड में अर्न किया या इसके अलावा उसके सामने ओपन खुला हुआ है, वो MOOCs के जरिए भी, स्वयं के जरिए भी अगर अपने क्रेडिट में अर्न करना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है, तो उसको भी ले सकता है, वो आपकी क्रेडिट में जुड़ जाएगा। एक चीज और कि कन्वेंशनल मोड में अगर लड़का पहले पढ़ता था, कन्वेंशन माने कि वो जो है फेस टू फेस मोड में एडमिशन लिया
1: जी,
0: तो उसके बाइंडिंग ये रहती थी कि वो उसी में आगे चलेगा। यहाँ ऐसी बाइंडिंग नहीं है। आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो NAD है संस्था, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, वो सारे ABC में जितने भी क्रेडिट अर्न होते हैं उनको ऐड कर दी जाती है। तो आप अगर डिस्टेंस मोड का कोई कोर्स करना चाहते हैं, यू कैन एनरोल टू दैट वन। वो एनरोल करेंगे तो उसमें जो क्रेडिट आप अर्न करेंगे वो भी आपके ABCID में जुड़ जाएगी। मतलब कि यू आर फ्री टू अर्न क्रेडिट्स फ्रॉम रेगुलर मोड एज वेल एज फ्रॉम डिस्टेंस मोड। आपको पहले बताया कि ये जो सिस्टम ऐसा है वो ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर को मेन टारगेट करता है, कि आप यहाँ पे रह करके अगर JNU को कोई कोर्स करना चाहते हैं तो करने की खुली छूट आपको है, ठीक है। टीचर्स को भी ये खुली छूट है कि वो अपनी स्वेच्छा से अपनी फील्ड के नए कोर्सेज को जनरेट करेगा, जनरेट करके लॉन्च करेगा। आज आप देखिए, अगर सर्च करिएगा तो एक ही कोर्स आपके पास 300 प्रकार के डिफरेंट टीचर्स उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओपन कॉम्पिटिशन भी है, टीचर्स की भी स्किल डेवलप हो रही है, टीचर्स की भी ऑटोनॉमी है, पहले ऐसी ऑटोनॉमी नहीं थी। तो ये NEP के तहत आपको इतनी स्वायत्तता मिली हुई है कि आप ओपन कॉम्पिटिशन में अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं, और उन कोर्सेज करने के लिए केवल हिंदुस्तान का बच्चा ही नहीं बल्कि विदेश में रह रहा बच्चा भी अगर ABCID के तहत वो एनरोल्ड है तो उन कोर्सेज को वो एक्सेस कर सकता है। और उससे अर्न की हुई क्रेडिट, यहाँ देखिए दो चीजें हैं
1: जी।
0: क्या है कि जैसे आप देखते हैं ना कि किसी प्रोग्राम TRP, TRP मैंने लर्नर चॉइस, कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं,

0: आपने एक उदाहरण सुना होगा
1: जी
0: कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक बच्चा है जिसने 4 ईयर यूजी एनईपी के तहत पढ़ा, ठीक है, यूजी विद रिसर्च,
1: जी जी,
0: और करने के बाद उसने जो है सीयूईटी के इंट्रेंस टेस्ट में टॉप किया है, और वो यूजी करने के बाद डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में हिस्ट्री में मिल रहा है उसको। तो ऐसा कोई पहले नहीं था
1: जी
0: कि आप 4 ईयर करने के बाद सीधे पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए तो वो टेस्ट देगा, लेकिन 4 साल बाद ही। तो ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसमें कि हर किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी सामर्थ्य के अनुकूल आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि हम भारत के समर्थ नागरिक हैं और हमारा दायित्व तो भारत के विकास के लिए है। आप देखे होंगे स्टार्टअप में नए नए बच्चे आ रहे हैं, वो खुद 2 जॉब कर पा ही रहे हैं, लेकिन वो 4 से 10 लोगों को और इम्प्लॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। आज आपका फोकस बिल्कुल बदल गया है। बात वही, आपने एक चीज़ और कही कि जो हमारा वर्कफोर्स है यानी टीचर फोर्स है,
1: जी जी,
0: है ना, क्या वो इस चेंज के लिए तैयार है कि नहीं है, है ना। तो यहाँ पर एक संस्था है यूजीसी की जिसे कहते हैं मालविया मिशन ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर। एनईपी के बारे में सेंसिटाइजेशन करने के लिए यूजीसी ने ये मैंडेट दिया था कि सभी को, जितने वर्कफोर्स है एजुकेशन में, इवन उसमें रिसर्च स्कॉलर्स और जो पैरा टीचर्स, सब के लिए कहा था कि वो एनईपी के बारे में सेंसिटाइज हो जाएं। और हर मालवे मिशन को ये टारगेट दिया गया था कि महीने में 2 बार और साल भर में 24 कोर्सेज ये कराएंगे, जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे, ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट थे। रिसर्च स्कॉलर्स भी करते थे जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, वर्किंग टीचर्स भी करते थे, और सबको करना एक तरह से अनिवार्य हो गया था। आज भी वो लगातार चल रहा है
1: जी।
0: तो एनईपी की जो खूबियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और अध्यापकों को अपने इस बदलते परिवेश में कैसे तैयार करना कि हमारा दायित्व तो केवल एकेडमिक एक्सीलेंस लाना नहीं है, एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी लानी है। और दूसरा, इसके अलावा FIP चलता है, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम चलता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, थीम बेस्ड प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे AI से संबंधित भी डिफरेंट किए जाते हैं, ICT बेस्ड कराए जाते हैं, सोशल अकाउंटेबिलिटी बेस्ड कराए जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पे। तो जो थ्रस्ट एरिया इस समय हिंदुस्तान का है, एम्प्लॉयबिलिटी है आपका, सस्टेनेबिलिटी है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल्चर IKS पे, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: ऐसा नहीं, ये सब NEP के तहत ही है। और ये सारे कंपोनेंट प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो आपका चाहे 4 ईयर BEd प्रोग्राम देख लीजिए, चाहे BEd प्रोग्राम देख लीजिए, चाहे MEd प्रोग्राम देख लीजिए, सब में एक कंपल्सरी कंपोनेंट के रूप में इन चीज़ों को लाया गया है।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, हमारे प्रोफेसर धनंजय यादव साहब ने सारी चीज़ें आपको बताई। उम्मीद है कि जितने भी जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, भ्रम है, वो आपके दूर हो गए होंगे और आपको इस बात की भी जानकारी मिल ही गई होगी कि जो नई शिक्षा नीति यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आपके करियर प्रोग्रेशन में किस तरह सहायक हो सकता है, इसकी भी जानकारी आपको मिल ही गई होगी। तो चलते चलते प्रोफेसर साहब, हम आपसे एक अंतिम संदेश जो हमारे युवा हैं उनके लिए आप क्या देना चाहेंगे?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि युवा जो है परमपिता परमेश्वर की एक अमूल्य निधि है, एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। गलती क्या होती है, सिस्टम या परिवार हमको अपने उस शक्ति को, उस छिपी हुई क्षमता को पहचानने में मदद नहीं कर पाता, या हम अपने आप को सही ढंग से पहचान नहीं पाते। अगर पहचान पाए तो आप देखिए, ब्लाइंड आदमी होता है अच्छा गायक हो सकता है, जो चल नहीं पाता वो भी हाथ से अच्छा कार्य कर सकता है, अच्छा सोच सकता है, अच्छी कृति कर सकता है। तो ये कभी भी नहीं मानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अक्षम है, कि जब कभी भी आप चेत लीजिए, पहचान लीजिए, देर कभी नहीं होती है
1: जी,
0: आपको आगे बढ़ने का, पहचानने का, आगे बढ़ने का और राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनने का
1: जी
0: मौका मिलेगा। और समाज ने बहुत कुछ दिया है, राष्ट्र ने बहुत कुछ दिया है, उसका 10% भी अगर दे पाए तो शायद अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर धनंजय यादव साहब जो कि स्टूडियो में मौजूद थे और हमारे साथ विभिन्न विषयों पर आपने बात किया। उम्मीद है कि ये जो वार्ता है, ये जो बातचीत है, वो आपको पसंद आई होगी। प्रोफेसर धनंजय यादव साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बेशकीमती समय निकाला और हमारे जो युवा छात्र हैं उनको आपने मार्गदर्शन दिया अपनी बातचीत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
2: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारा खास सेगमेंट बातचीत, जिसका विषय था

0: युवाओं के करियर ग्रोथ में किस प्रकार सहायक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रोफेसर धनंजय यादव से भूपेंद्र कुमार मिश्र की बातचीत। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत अत्यंत सार्थक होगी आपके लिए। जितना भी युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें करियर रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ होगा,
1: और साथ ही साथ कई बार पूजा जब हम ऐसी कोई बातचीत सुनते हैं ना तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कई बार करियर में हम कभी कभी कंफ्यूज भी रहते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उस तरीके से भी अगर हम ऐसी बातचीत सुने और समझें चीज़ों को कि कैसे आप करियर में आगे बढ़ सकते
0: और
1: हैं,
0: और सुष्मिता सही वक्त पर सही जानकारी हमें मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है।
1: बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और समय है अब हमारे प्रेरणापुंज सेगमेंट का। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपनी प्रतिभा, वकालत, त्याग और राष्ट्रभक्ति से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। आइए बात करते हैं देशबंधु चित्रंजन दास जी की।
0: बिल्कुल। वे एक सफल वकील, प्रखर राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, कवि और राजनीतिक नेता थे।
1: इनका जन्म हुआ 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में। परिवार का वातावरण शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ था, और यही कारण भी था कि बचपन से ही चित्रंजन दास जी को मन में जो है देश सेवा की भावना विकसित हो गई। और सही भी है पूजा, जब हम इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो
0: प्रभाव पड़ता है पे। और बात करें उनकी प्रारंभिक शिक्षा की, तो कलकत्ता से उन्होंने प्राप्त की, और बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड चले गए और कानून की पढ़ाई की वहाँ पर उन्होंने, और देश के प्रसिद्ध वकील वो बन गए।
1: और वकालत के क्षेत्र में सी आर दास जी को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली अलीमपुर बम केस के, जब उन्होंने इस मुकदमे में क्रांतिकारी नेता अरविंदो घोष का बचाव किया और उनकी प्रभावशाली दलीलों के कारण अरविंदो घोष जी को बरी कर दिया गया था।
0: बिल्कुल। उन्होंने अपनी प्रतिभा और धन का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं किया, वे समझ चुके थे कि देश गुलाम है और उसकी स्वतंत्रता सबसे बड़ा लक्ष्य है।
1: बिल्कुल। और एक समय बाद उनका पूरा जीवन पूरी तरीके से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हो चुका था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। वो विशेष रूप से बंगाल में इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
0: उन्होंने 1910 ढाका षड्यंत्र केस में बचाव पक्ष के वकील के रूप में भी कार्य किया। वो गांधी जी और मोतीलाल नेहरू के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच करने वाले एक समिति का हिस्सा थे।
1: उन्होंने परिषदों के माध्यम से असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यह 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की सह स्थापना की थी।
0: वहीं 1922 में गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया।
1: और उनका जो जीवनी है, उनकी जीवनी वो है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सी आर दास, और पृथ्वी चंद्र द्वारा इसको लिखा गया है। दोस्तों पूजा, अब वो समय आ गया है ना कार्यक्रम में जब हम अपने साथियों से हर बार एक सवाल पूछते हैं और जो एक दिन पहले हम सवाल उनसे पूछ चुके हैं उसका उत्तर भी देते हैं। तो जो कल का सवाल हमने अपने साथियों से पूछा था वो था कि काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो इसका जो आंसर है वो है टर्किश स्ट्रेट्स सिस्टम।
0: इसी के साथ आज का सवाल आपको बता दे, हैनले डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थित है। सवाल, आई रिपीट, हैनले डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थित है। आप अपना सही जवाब हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250। नंबर एक बार फिर से 8004926250।
1: या फिर आप हमें जो जवाब है वो ईमेल आईडी के द्वारा भी भेज सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी है yuvaalde@gmail.com। आई रिपीट, yuvaalde@gmail.com। और चलते चलते आइए एक और प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। खेल दर्पण कार्यक्रम रात 10 बजे होगा, इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम होगा पंचायत घर, इसमें श्रोता सुनेंगे मिथिलेश कुमार त्रिपाठी से काव्य रामायण पाठ। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अर्चना दास के गाए भजन और गीत। गजलों पर आधारित कहकशां कार्यक्रम रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। रात 8 बजे सुनिएगा डॉक्टर नलिनी गुप्ता से अभयकांत त्रिवारी की बातचीत, दांतों में कीड़े लगने की समस्या और आरसीटी उपचार। और रात 10:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे विदुषी मुनीर खातून बेगम की गाई ठुमरी और दातरा। अब लीजिए सुनिए कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6:30 बजे

भारत और नीदरलैंड के मध्य हिडिंगले लीड्स इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर जेम्स सिंह से दिव्य विकास सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी, पशुओं में विषाणु जनित रोग एवं निदान। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर शेख मोहम्मद शाहजाद की वार्ता होगी, गठिया का आयुर्वेदिक उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे प्रियंका मलिक के गाइड ठुमरी और दादरा। सुबह 7:31 पर प्रेम जैन का गिटार वादन आप सुनेंगे दोपहर 12:15। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में करिश्मा के गाए भजन हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:50 पर। वॉइस ऑफ प्रयागराज इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 10:05 पर। शोभा लाल और साथी, प्रियंका चौहान और ब्रिजभान यादव और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 10:30। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में डॉक्टर एस एस सिन्हा से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी, कम उम्र में बढ़ती मायोपिया। एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 2:30। शाम 5:15 युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी, इसमें श्रोता सुनेंगे आंशिक रूबे की वार्ता इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन फेस्टिवल इन आर लाइफ। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर।

अभी आप सुन रहे थे देशगान संवेद स्वरों में। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

रक्तदान तकलीफ देह नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है। वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें। रक्तदान महादान।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

चक्री प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी सेवन शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं द्विदिवसीय यात्रायाम् अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्रिणः इयम् अनवरतं सप्तमी जी सेवन उपस्थिति वर्तते। सहैव अस्मिन् प्रमुखे बहुपक्षीय आयोजने भारतस्य इदं त्रयोदशं सहभागित्वं वर्तते। इयं शिखरवार्ता भारतस्य कृते महत्

0: पंचो राम राम। कहो मोहन भाई, का होत बा खेती किसानी?
1: ए भैया उदो हम कई देखा भाई है समय न भाई, अपन खरीफ के जो प्रमुख फसल धान भा, अब वो एक नर्सरी अपन देखा भाई पड़त ही बाटे जाने।
0: बिल्कुल हो सही
1: हमके भाई 2 दिन पहले देखा नर्सरी डाले रहे जो ना है, तब अगर पानी उनी निथर के बाटे अब धीरे धीरे भैया खुआन भाई है समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल हो सही कह गया भैया। देखा गर्मी बहुत जोरों पड़त बाटे।
1: ए भैया हम कही देखा अब समय खेती बारी के काम तो बा, मुला जे हिसाब से गर्मी पड़त बाटे ओमे भी बड़ा होशियारी बरते पड़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हम कही धान के नर्सरी तो डाई दे है, अगर पानी डाले में चूक हो गए दे में हमा तो भाई जौन अखुआन बाटे वो हम मुरझुराई जाए जौन है।
0: बिल्कुल हो बिल्कुल सही कह गया भैया। देखा एक बात का ध्यान देवे की पड़ी किसान भैया।
1: हाँ हाँ बताओ भैया बताओ।
0: देखा दिन में तो पानी न लगावे नर्सरी में, जब भी पानी लगावे भैया देखा संझा के समय जौन है पानी लगावे।
1: बिल्कुल
0: काहे से कर भैया देखा सवेरे लगा दी है तो दिन भर भैया खौल जाई, और जब खौल जाई तो भैया देखा जौन नर्सरी का पौधा एकदम कोमल होत है
1: हाँ।
0: देखा वो भैया मुरझाई के जौन

0: है उमन ओकर विकास न होए।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम कहीं देखा जब ठंडा खूब हो जाए तो भाई देखा नर्सरी खेत कितना भाई बड़ा रह भाई करा थे। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भाई ओका जितना ठंडा हो सके उहमा ओकर पानी डाली तो निश्चय रूप से भाई भाई उतना भी बदरी बारिश नहीं ने कि भाई दिन में सिंचाई कह सका था जो ना
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये सब के ख्याल रखें। दूसरी बात एक भाई देखा जब सिंचाई पताई के बात आवत है ना तो देखा सबसे महत्वपूर्ण भाई जल बाटे।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: भाई जल तो एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत बाटे भाई जेका भाई जरूरत आदमियों के बाटे भाई पेड़ पौधों के बाटे बा जानवरों के बा। हाँ मानव पूरा जौन प्राकृतिक रूप जौन जनजीवन बा
0: बिल्कुल
1: ओके
0: बिल्कुल
1: लिए भाई दे बहुत ही प्रमुख अवयव बाटे। हाँ
0: बिल्कुल भैया। देखा कही के बने जल ही जीवन है।
1: हाँ कहिए भैया
0: तो
1: कहिए।
0: भैया बिना जल के जौन है कौनो चीज भैया देखा संभव ना बे। चाहे भैया देखा मनई हो चाहे गोरु चौवा हो जौन भी जीव जंतु धरती पर हैं पेड़ पौधा सबके लिए पानी की आवश्यकता पड़त है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: भाई
0: भैया
1: बिल्कुल
0: कहीं न कहीं हमार तोहार जिम्मेदारी बा कि भैया देखा जल का संरक्षण करब बहुत जरूरी बा। अब
1: कही गया
0: देखा
1: भाई। हाँ
0: जैसे अब बरसात का समय भैया देखा
1: हाँ
0: आवत बे न,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: भैया देखा बारिश का पानी जवन इधर उधर बहिया था न, तो किसान भैया देखा ओके का करिए कि अपने खेत के मेड़ देखा पहले से मजबूत कैया था। और जवन भी अपन ताल पोखरा है भैया देखा ओहू पे बंधा बनत है।
1: ये भाई कहे ना कि देखा खेत के मेड़बंदी करे से भाई देखा कऊ फायदा बा।
0: बिल्कुल
1: एक तो
0: बिल्कुल।
1: भाई जौन आपके पानी बा बरस के खेत में जमा हो तो नमी बरकरार रहे और दूसर भाई जौन उपजाऊ मिट्टी बाटे ना
0: बिल्कुल
1: वो भी
0: बिल्कुल।
1: बह के बाहर ना जाई। हाँ और साथे साथे जिसे कहे ना कि भाई तालाब पोखरा बाटे
0: कही गया कही गया।
1: तो बारिश से भाई जेखा अपने गांव गिराव में जौन भी नाली बनी बाटे उनकर संपर्क सीधा जौन है तालाब तक पहुँचावा जाए। तो
0: बिल्कुल
1: जैसे
0: बिल्कुल।
1: जौन पानी बाटे जब तालाब में जाए तो निश्चय रूप से भाई आसपास के जौन भूगर्भ जल बाटे वो तो संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल।
1: साथे साथे आवश्यकता के अनुरूप भाई भाई हम कहीं वो पानी सिंचाई के भी काम आए जौन है और भी तमाम तरह के काम होते। अब भाई जल के संरक्षण देखा एक ऐसा विषय बाटे कि भाई एक सब केहू के सोचे एक बाटे। हाँ
0: बिल्कुल
1: भाई
0: बिल्कुल।
1: सिर्फ सरकारी प्रचार प्रसार लोगों के जागरूकता से काम न चली भाई। सरकारी प्रयास तो भाई सिर्फ एक रास्ता दिखावत है
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन अगर जब जन भागीदारी जब तक न हुई तब तक तो वो काम के देखा पूरत न हो जाना है। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखा ब्लॉक में जो है ना ब्लॉक के माध्यम से भी जो ताल पोखरा भैया खुदा था ना, तो देखा बरसात से पहले वह भैया देखा मेड़बंदी किया जाता है।
1: बिल्कुल
0: भैया गांव गांव में जौन है भैया देखा उसका मेड़ मजबूत किया जाता है
1: हाँ
0: जौने से कि बरसात का पानी भैया देखा ताल पोखरा में जब जमा हुए तो भैया देखा अपन खेत के भी नमी बनी रहत है। और जहाँ पानी के कम उपलब्धता भैया देखा ताल पोखरा से भी सिंचाई किया जाता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और दो भाई देखा एक बात और रहा है हम कहीं देखा जल संरक्षण के सिर्फ भाई मेड़बंदी तालाब इतने तक नहीं सीमित बा। देखा
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: छोटी छोटी बात के भी अगर ध्यान रखा जाए तो भी एक बहुत बचत की जा सकत है। काहे सी भाई देखा अगर हम पानी पिए को ले थे तो जितना हो सकता बा उतना ही पीना है भाई लगा थोड़ा सा बच गया तो का सीधा फेंक दे हैं।
0: बिल्कुल
1: अब भाई
0: बिल्कुल।
1: देखा गाड़ी लोग लोग के धोवता है तो फिर पानी नड़ाए जाता है। हाँ तो ऐसे भी देखा पानी का अपव्यय होत बाटे।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: ये सब चीज़ के अगर हम छोटी छोटी चीज़ें के ध्यान रखी तो जल के जो संरक्षण के बात ही बाटे ना वो कितनी अच्छी ढंग से की जा सकत है। और
0: बिल्कुल
1: एक बात
0: बिल्कुल।
1: यह होगा भाई देखा आप तो पहले रहा कि भाई सिंचाई में भाई ऐरा लगाए द पानी तो खेत में भरत बाटे लेकिन तो वैज्ञानिक विधि से खेती होत बाटे नई नई तकनीक आई बा
0: बिल्कुल
1: किसानन के
0: बिल्कुल।
1: भाई 4 पैसा के आमदनी कराई बा बचत कराई बा। तो निश्चय रूप से भाई ओका स्रोत तलाशा जाए तो
0: बिल्कुल।
1: भाई अब तो छिड़काव विधि से पाइप के माध्यम से तमाम तरह के सिंचाई की विधियाँ हैं जैसे कम पानी में पौधन के पूरा जो है सिंचाई भी हो जात बा साथे साथे समय और पैसा दोनों भाई बचत बाटे।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। वो देखा तरह तरह के सिंचाई के विधि हैं फवारा विधि है स्प्रिंकल्स विधि बा भैया देखा उमन पाइप के माध्यम से जो है खेत तक पानी पहुँचाई जात बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया
0: ट्यूबवेल से जो है भैया कहीं भी पानी के जो है उमन नुकसान ना होते। तो ऐसे भैया देखा एकरे प्रति जागरूक होइक परी जो है और जल के जो है उसका संरक्षण करब
1: जरूरी
0: जरूरी
1: बल
0: बात है भैया।
1: बिल्कुल। तो भाई किसान भाई देखा जौन अपन प्राकृतिक स्रोत बाटे ओका कम से भाई प्रयोग करे, अधिक से अधिक बचावे जौन है, जितना आवश्यकता बा वही कर।

0: रूप लें। तो हम कहीं देखा भाई बात बात कही होत रही, आज तो मंगलवार अटे भाई, आज मिथिलेश कुमार त्रिपाठी के देखा रामायण पाठ भी सुना जाए। हम कही अपने किसान भाई का थोड़ा गीत गौने से स्वागत किन जाए जौना है, तो आज देखा गौना ही के कर बतावा और सुनाओ भैया।
1: देखा भैया, बाबूलाल दिवाकर का जौन है एक विकास गीत बाटे, तो हूँ सुना पंच भैया रे भी सुने
0: सुनवा दे भैया।
1: तो सुना।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in।

0: पर नया भारत नया आकाशवाणी।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: हाँ भैया, देखा हो बाबूलाल दिवाकर के विकास गीत के साथे साथे सनेस भी होई गए। अब देखा जौन बात बत कही होत रही भैया की जल संरक्षण के,
7: बिल्कुल
6: भैया देखा जितने जल के संरक्षित करब महत्वपूर्ण बा, उतने भैया देखा खेती किसानी में अपने माटी के स्वास्थ्य के भी ध्यान देव।
7: ए भैया, हम कहीं ना देखा अगर माटी के स्वास्थ्य बढ़िया रही तो भाई पैदावार तो बढ़िया रहबे करे, साथे साथे भाई देखा कर सब चीज का संतुलन बराबर रहता है तो कोनो भी फसल हो के उत्पादन के लिए वो महत्वपूर्ण तो होबे करत है, नमी भी बरकरार बनी रहत है।
6: बिल्कुल कही गया हो मोहन भाई, देखा ना माटी के जोन अपन स्वास्थ्य बा भैया देखा, अभी जोन ये समय देखा खेत खाली बे तो हम कहा भैया देखा पंच भैया रेंस की कोनो भी फसल लेवे से पहले अपने माटी के जांच जरूर करा लिए।
7: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
6: और ये बहुत बढ़िया समय बाकी उनके खेत भी खाली बे, और आवे वाला खरीफ का सीजन भैया देखा मैं धान लगई है तो पंच भैया हरिन के चाही कि अपने माटी के
7: भैया हम तो कही भाई देखा माटी के जांच जितना जरूरी बा उससे ज्यादा जरूरी बात है कि जांच कैसे हो।
6: बिल्कुल बिल्कुल,
7: तनी अपने किसान भाई के फरियाए के बताओ है के बारे में भैया।
6: देखा हो मोहन भाई, माटी के जांच करावे बदे ने अपने खेत के जोन है चारों तरफ से मेड़ से एक लाठा छोड़ के,
7: अच्छा अच्छा
6: भैया, वहाँ से वी आकार का गड्ढा जोन है,
7: अच्छा अच्छा
6: बनावे
7: तिकोना
6: है भैया देखा 15 सेंटीमीटर तक एक खुरपी से जोन है,
7: कहे का मतलब एक जोन 6 इंच वाली पटरी होता लगभग। हाँ, उतना।
6: और भैया देखा ना ओमन जब खुरपी से भैया माटी निकली है तिरछा वी आकार में तो पहले जवन निकाले माटी ओका तो भैया अलग रख दे,
7: अच्छा अच्छा,
6: ओकरे बाद जवन परत निकले वही मसे जवन है माटी निकालने और एक जगह से बीच से भी मृदा नमूना लेवे के।
7: बिल्कुल बिल्कुल,
6: और हर जगह से भैया 5 जगह से खेत से जो है माटी लेके ओका भैया देखा गुड़े के आकार में जो है ओके काटे और एक तरफ के माटी जो है फेंक दें और दूसरी तरफ का माटी जो है एक तरफ वाली ओके अलग रख लें।
7: अच्छा, ओका भैया फायदा है भैया,
6: उससे फायदा ये है कि भैया उनका जिसे अब माटी जहाँ से 5 जगह से ली है तो भैया कम से कम 5 किलो है ये। तो ओका धीरे धीरे जब गुड़ा के आकार में ओके कटी हैं तो भैया धीरे धीरे माटी जो है अंत में तब जब तक ओके काटे जब तक कम से कम 0.5 किलो ने बचा, 500 ग्राम तक। इतना अगर भैया देखा मृदा नमूना के लिए भेजी हैं लैब में जो है तो उनके मिट्टी के जांच बढ़िया तरीके से हुई। और एक चीज़ के ध्यान और देवे के माटी के नमूना लेवे में कि भैया देखा जहाँ पेड़ पौधा है ओकरे नीचे के माटी के नमूना न लेवे के चाहिए, काहे से कि ओकर पौधा का पेड़ पौधा का जवन पत्ती है भैया देखा गिर के जो है वो सड़ी खाद होता है।
7: अच्छा अच्छा,
6: तो भैया वहाँ खाद का मात्रा बताई तो ये लिए किसान भाई हरन की ध्यान देवे के बहुत जरूरी बात है।
7: बिल्कुल भाई, देखा कितना ये महत्वपूर्ण बात बाटे कि भाई किसान भाई तो ये लागत है कि भाई अपन कोनो भी खेत बाटे वहाँ से मिट्टी के सिर्फ नमूना ही लेगा, लेकिन भाई अगर कहूँ पेड़ रोक बाटे अगल बगल से तो भाई निश्चय रूप से उनका खरपतवार गिरत बाटे,
6: बिल्कुल
7: साथ सड़ जात बा तो खाद भी बन जात बाटे।
6: बिल्कुल,
7: अब तो भाई देखा कहे ना कि जैसे प्रयोगशाला में जब जात है तो वहाँ जांच हो जाए तो भाई उनका कौन सा तत्व की कमी बाटे पूरी अगर जानकारी हो जात है, हम तो देखा सरकार तो भाई एक लिए कितनी अच्छी व्यवस्था करेबा भाई जांचों मुफ्त में बांटे।
6: बिल्कुल भैया, अब तो ब्लॉक में जो उन्हें देखा गांव का चयन भी होत बा, उम्मा भैया देखा जो अपन कृषि विभाग के कर्मचारी हैं भैया देखा गांव में जाई के जो उन्हें मृदा नमूना लेते हैं।
7: अच्छा अच्छा,
6: अब तो भैया और आसान हुई कि घरे से भी जाई के नमूना खेत से लिया।

0: जात बा।
1: अच्छा
0: और भैया ओका लैब तक पहुँचावत हैं और उनका माटी के जांच कराई के भैया देखा उनका कार्ड देत हैं। तो वहाँ जौन है हर तरह के जौन भी उनके माटी में जौन उपलब्ध बाटे, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, और भैया देखा जौन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको मात्रा भैया कितना उनके माटी में बा, ये सब भैया देखा हुआ है कार्ड में लिखा।
1: बिल्कुल भाई, हम तक भाई पिछले कुछ सालन से जे हिसाब से भाई अंधाधुंध यूरिया के खाद, रसायन खाद के इस्तेमाल हुआ,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसे भाई देखा अनाज के उत्पादन तो भाई बढ़ा बा, लेकिन आज हम लोग भाई अनाज उत्पादन में भी आगे है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन जौन अपने जौन माटी के जौन संरचना बाटे उसका जौन सेहत बा उस पर भी बहुत फर्क पड़त बा, और उससे ज़्यादा भाई फर्क पड़त बाटे आदमी के सेहत पे जौन है।
0: बिल्कुल भैया देखा वह अनाज भैया चाहे मनई हो हैं और चाहे भैया देखा जानवर हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भैया सब वह खाते हैं तो सबके कहीं ना कहीं भैया देखा नुकसान होता है। और साथे साथे अब देखे में और देखा नई नई तरह तरह का बीमारी भी पैदा होती है, तो ये लिए भैया कहीं ना कहीं अपने माटी के सुधार करे के पड़े जौन है। और वहाँ देखा हरी खाद है, ढैंचा बोवाओ भैया देखा, और बर्मी कंपोस्ट वाली खाद जौन है डालें, नेडम कंपोस्ट बनाई के खाद डालें, तो ऐसे जौन है अपने माटी के संरचना में सुधार होई और साथे साथे जवन भी उपज होई भैया दुखा वो स्वस्थ होई हो।
1: अच्छा एक बात यह बहुत महत्वपूर्ण बा भाई, जान अपन उपज बढ़ावे के खातिर भाई खेत कहा था कि खरपतवार हमका दा अनाज अपना ला,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब भाई बे समय जवन भी किसान भाई उर्द मूंग के खेती करे हैं, उर्द मूंग के भाई तोड़ाई कह के बिल्कुल पानी भर को हम जोतवा दे,
0: बिल्कुल
1: देखा खाद के काम हो तैयार हो जाते,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये सब जौन अपने पास संसाधन बटे और अपने ही खरपतवार से अगर खाद तैयार हो जात बटे, खेत अच्छा माटी हो जात बटे, तो ऐसे बढ़िया कुछ ना ही न जौन है।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: किसान भाई ये सब बातन के बहुत ही ध्यान दें। अब तो भाई देखा पूरा अभियान ही चलत बटे कि अपन भाई खेत बचाओ अभियान चल रहा, माटी बचाओ अभियान चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मतलब मकसद वही बटे कि हम सभी भाई पास जोत उतना ही है, आबादी ज़्यादा बटे, और यह आबादी के भाई खान पान के साथ साथ उनके सेहत के भी अगर ख्याल रखेगा,
0: बिल्कुल
1: हमका सभी पहले अपने सबसे जो निचले स्तर से जहाँ से अनाज का उत्पादन होता बा पहले ओका बचाओ बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया देखा पहले देखा खेती किसानी जौन पुरानी परंपरा से किया जात रहा ना, हल बैल से जब खेती होत रही है तो भैया देखा जर जानवर भी जो है सबके पास
1: बिल्कुल
0: मात्रा में राहत रहे, तो भैया उसे जौन है घूर गड्ढा वाली खाद पर्याप्त मात्रा में मिलत रही है, और भैया ओका जौन है खेत में डाला जात रहा तो उसे अपने माटी के जौन भुरभुरापन भी बना रहत रहा। अब तो आज देखा कहीं न कहीं ये रासायनिक उर्वरक रासायनिक कीटनाशक से अपने माटी में देखा जौन की कहा जात रहा ना कि केचुआ,
1: केचुआ भाई खत्म होता है,
0: केचुआ खत्म हो जाते हैं, तो भैया केचुआ भी अपने माटी के देखा भुरभुरापन बनावत रहे,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उससे जौन है अब यही कारण है कि अपने माटी के जौन है उमन देखा कड़ापन आई जात,
1: बिल्कुल भाई।
0: तो भैया कहीं कहीं अपन किसान भाई हरन की सोचे की पड़ी कि जैविक खेती किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घूर गड्ढा वाली खाद डाला जाए, ऐसे अपने माटी की संरचना बनी रहे।
1: कही भाई देखा कितना नीत बत कही बताया कि मृदा के अपने स्वास्थ्य के कैसे ख्याल रखे बा, हम कहे भाई यहीं साथे साथे हम कही भाई देखा कि मानसिक स्वास्थ्य के भी ख्याल रखा जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई, जब अध्यात्म और इस तरह के भाई जब बात होते है
0: तो
1: निश्चय रूप से बहुत ही सुकून देता है भाई। खेती बाड़ी से बाहर डगर आवा और भाई रात के भजन कीर्तन जब सुने के मिल जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो भाई निश्चय रूप
0: से
1: मन के शांति होता है। आज देखा रामायण पाठ अपने किसान भाई के लिए मिथिलेश कुमार त्रिपाठी भाई रामायण प्रसंग सुनाओ जी।
0: तो सुना भैया,
2: विद्वानों ने श्री रामचरित मानस के मार्मिक स्थलों में पुष्प वाटिका प्रसंग को विशेष महत्व प्रदान किया है। आज मैं मानस पाठ के क्रम में पुष्प वाटिका प्रसंग के मर्म पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। प्रसंग है मुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण विदेह नगर पहुंचते हैं। वहां एक अद्भुत अमराई में तीनों लोग निवास करते हैं। मुनि विश्वामित्र के आने का समाचार सुनकर श्री जनक जी मुनियों के साथ वहां पहुंचते हैं। वहां श्री राम और लक्ष्मण से उनका परिचय होता है। श्री जनक जी के चले जाने के बाद लक्ष्मण के हृदय की अभिलाषा का सम्मान करने के लिए श्री राम जी गुरुवर से आज्ञा लेकर जनकपुर देखने जाते हैं। वहां से आने

के बाद दोनों भाई गुरुवर के चरण दबाते हैं। पुनः रात्रि विश्राम और शयन होता है। नियत काल पर रात्रि के व्यतीत हो जाने पर श्री लक्ष्मण जी अपने स्थान से उठते हैं तथा श्री राम गुरुदेव के जगने के पहले जग कर नित्य नैमित्तिक कर्मों के संपादन में तत्पर हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, उठे लखन निसि विगत सुनी अरुण सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। अभिप्राय यह है कि जब लक्ष्मण जी के कानों में अरुण शिखा अर्थात मुर्गा की ध्वनि पड़ी तो वे प्रभात हुआ जानकर अपने स्थान से उठ खड़े हुए। संसार के स्वामी भगवान श्री राम ने गुरुवर के जागने के पहले ही जाग कर शैया का परित्याग कर दिया। अरुण शिखा का अर्थ मानस पीयूष में अरुण शिखा वाले ब्रह्मचारी बताया गया है। उनके अनुसार अरुण शिखा धुन का आशय है ब्रह्मचारियों की निःशब्द ध्वनि। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मचारी तपस्वी अपनी प्राण चेतना को ऊर्ध्वगामी करते हैं तो उनका रेतस सुषुम्ना के मार्ग से होता हुआ शिखा तक पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी शिखा लाल हो जाती है, इसलिए उन्हें अरुण शिखा कहते हैं। तत्पश्चात सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि ही सिर नाए, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। इसका अभिप्राय यह है कि समस्त प्रकार की शौच क्रिया को संपन्न करके दोनों भाइयों ने स्नान किया और आकर मुन के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात गुरु की पूजा का समय जानकर वे दोनों भाई पुष्प वाटिका की ओर प्रस्थित हुए। बाग और तड़ाग की शोभा को देखकर दोनों भाई प्रमुदित हो उठे। पुनः जब श्री राम और लक्ष्मण माली जनों की अनुमति से पुष्प और पत्र का चयन कर रहे थे तभी वहां सखियों के साथ श्री सीता जी का आगमन हुआ। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तेही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन न जाई देखि मन मोहा, मज्जन करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन है अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जनक राज की पुत्री सीता बिना किसी पूजन सामग्री के केवल अनुराग द्वारा पूजा कर रही हैं। इसका ध्वन्यार्थ यह है कि पूजा श्रद्धा के साथ की जाती है, पूजन कार्य में पूजन सामग्री की विशेष आवश्यकता नहीं हुआ करती। अनुराग द्वारा पूजा की जाने पर ही इष्ट देव या देव देवी प्रसन्न होते हैं। फिर एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेही दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पह आई, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलनैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछ ही सब मृदु बैन। एक सखी सीता का साथ छोड़कर फुलवारी देखने गई हुई थी, उसकी दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी। उनकी नख से लेकर शिख तक की अनिंद अनिर्वचनीय शोभा को देखकर वह मुग्ध हो गई और प्रेम के वश में होकर के वह सीता के पास दौड़ती हुई आती है और कुछ बोल नहीं पा रही है, उसकी वाणी गदगद है। फिर सखियों ने उसकी इस दशा को देख करके पूछा कि तुम्हारे नेत्रों में जल क्यों भरे हुए हैं, तुम्हारे शरीर रोमांचित क्यों हैं, तुम अपने हर्ष का कारण बताओ। वह फिर कहती है कि देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहौं बखानी,
गिरा अनयन अनयन बिनु बानी, श्याम गौर किमि कहौं बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी।

उसने बताया कि दो राजकुमार बाघ देखने के लिए आए हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन कैसे किया जाए? जो सुंदरता का वर्णन कर सकती है जिह्वा, उसके पास आँख नहीं है, और आँख जो सुंदरता को देख सकती है उसके पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे बताऊं कि वे दोनों बंध कितने सुंदर हैं? सुनिहर सी सब सखी सयानी, सियही अति उत्कंठा जानी। उसकी बाणी को सुनकर के सीता हर्षित हो गई, दर्शन के लिए उत्कंठित हो गई, और चारों ओर चकित होकर के निहारने लगती है सीता जी। इसी बीच एक दूसरी सखी कहती है, एक कहे नृप सुत से आली, सुने जे मुनि संग आए काली। दूसरी सखी कहती है कि हे सखी सीता, मैंने सुना है कि ये वही दोनों राजकुमार हैं जो कल धनुष यज्ञ देखने के लिए नगर में गए हुए थे। जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, किन्हें सो बस नगर नर नारी। जिन्होंने अपने रूप सौंदर्य की मोहिनी को डार कर नगर के सारे स्त्री पुरुष को अपने बस में कर लिया, ये वही दोनों राजकुमार हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागि लोचन ललचाने। उसकी बाणी को सुनकर के सीता को बड़ा सुख मिला, दर्शन के लिए उनके नेत्र ललचने लगे। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ललचना और लुभाना ये दोनों अभिलाषा जन्य हैं। किसी चीज को पाने की अभिलाषा में व्यक्ति ललचता भी है और लुभाता भी है, लेकिन पाने की अभिलाषा जब व्यक्ति अंदर ही अंदर दबा लेता है, प्रकट नहीं होने देता, तो उस स्थिति को लुभाना कहते हैं। और जब वो स्थिति प्रकट हो जाती है, लोग जान जाते हैं कि ये व्यक्ति चीज को पाना चाहता है, तो उस स्थिति को लालच कहते हैं, ललचना कहते हैं। तो सीता के नेत्र श्री राम जी के दर्शनों के लिए ललचने लगे और उनकी इस अभिलाषा को उनकी सखियों ने जान लिया। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। फिर तो उसी सखी को आगे करके सीता जी राजकुमारों के दर्शन के लिए चल पड़ती हैं। उस समय उनके मन में जो पुरातन प्रीति थी उसे कोई जान नहीं पा रहा है। पुरातन प्रीति यह है कि सीता जी पिछले जन्म की लक्ष्मी हैं और श्री राम जी पिछले जन्म के विष्णु हैं। दोनों के शरीर बदले हुए हैं, आत्माएं वही हैं, इसलिए आत्माएं एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रही हैं। इधर सीता जी राजकुमारों को देखने के लिए चली जा रही थी, उधर श्री राम को आभूषणों की समवेत ध्वन सुनाई पड़ी। कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुन्दु भी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। भगवान श्री राम को कंकण किंकिण और नूपुर की समवेत ध्वन सुनाई दी। कंकण हाथ में पहना जाता है, किंकिण उसे करधनी कहते हैं, वह कमर में पहनी जाती है, और नूपुर जिसे बिछुआ कहते हैं वह पैर की उंगली में पहनी जाती है। सीता जी चली जा रही है तो उनके हाथों से कंकण की कोणन ध्वनि हो रही है। जो कंकण से ध्वन निकलती है उस ध्वनि का नाम है कोणन, और किंकिणी से जो ध्वन निकलती है उसका नाम है रणन, और नूपुर से जो ध्वनि निकलती है उसे अनुरणन कहते हैं। तो सीता जी के आभूषणों से जो ध्वनियाँ निकल रही थी वो श्री राम के कानों में पड़ती हैं, तो राम भाव विह्वल हो जाते हैं। उनको लगता है जैसे कि कामदेव ने विश्व को विजय करने की अभिलाषा से डंके पर चोट की है, प्रहार किया है। अस कही पुनिचित यऊ तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। इस ऐसा कहने के बाद भगवान श्री राम ने ध्वन की दिशा में देखा तो उन्हें सीता दिखाई दी। फिर तो सीता के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, अर्थात तो टकटकी लगा करके सीता जी के मुख मंडल को देखने लगे। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित्त जे दृगंचल। चारों नेत्र अचंचल हो गए, पलकों ने गिरना बंद कर दिया, ऐसा प्रतीत हुआ मानो बेटी और दामाद का मिलन देख करके निमि संकोच बस पलकों का परित्याग कर दिया। देखी सी

ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। मने उसे शिवा को हृदय में सराहने लगे, मुख से कोई वाणी राम के नहीं निकल पा रही, वो भी गदगद हो गए हैं। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु भरई। उनको लग रहा है कि ये ऐसा दिव्य सौंदर है जो सुंदरता को भी सुंदर बना रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो छवि के घर में दीपक की शिखा जल रही हो। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु, आपन दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। पूजन गौर सखी लय आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरकत सुभद अंग सुनु भ्राता। इधर भगवान श्री राम की ये दशा है और उधर सीता जी की स्थिति भी बड़ी विषम है। सीता जी चारों ओर देख रही हैं। चितवत चकित चहूं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। उनके मन में चिंता है कि राजा के दोनों कुमार चले कहाँ गए। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरस कमल सित्र सेनी। यह पंक्ति बहुत भाव गर्भित है, मैंने मानस पीयूष में इसका अर्थ जानना चाहा तो वहाँ थोड़ा सा संकेत किया गया था कि विशेष जानकारी के लिए आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़िए। बहुत भाव गर्भित पंक्ति है। लटा ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। फिर लताओं के बीच से सखियों ने सीता जी को श्री राम के दर्शन कराए। दर्शन करते ही अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद ससिहि जनु चितव चकोरी। सीता जी की शरीर देह भोरी हो गई, ऐसा प्रतीत हुआ मानो शरद कालीन चंद्रमा को चकोरी एक टक निहार रही हो। आगे की पंक्तियां बड़ी मार्मिक हैं। लोचन मग राम ही उरयानी, दिन्हे पलक कपाट सयानी। ये पंक्ति बड़ी मार्मिक है। फिर सीता जी ने सोचा कि इस पिता के भौतिक राज्य में इस सुंदर मूर्ति को का स्वागत करना तो संभव है नहीं, क्योंकि पिता प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक उपाय अपने मन में लाया कि लोचन मग राम ही उर आनी। उन्होंने लोचनों के मार्ग से श्री राम को अपने हृदय में लाया। तो फिर तुलसीदास से पूछा गया कि हृदय में तो लाया, फिर स्वागत कैसे किया? तो तुलसीदास जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। कहा, मुझे नहीं मालूम है कैसे स्वागत किया। कहा, क्यों? कहा, दीन है पलक कपाट सयानी, क्योंकि सीता जी ने तब पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिया था। मुझे पता नहीं चला कि राम की सेवा, राम का स्वागत उन्होंने कैसे किया। बहुत ही भावपूर्ण पंक्तियां हैं। सखियों ने जब सीता को प्रेम के वश में हुआ जाना तो वे कुछ कह नहीं पाई, वे मन में सकुचा रही थी। उसी समय दोनों भाई लता कुंज से बाहर आए। गोस्वामी जी ने दोनों भाइयों की कायिक छवि का बड़ा मनोहर वर्णन किया है। उसी समय एक सखी ने धैर्यपूर्वक सीता से कहा, धर धीरज ये कयाल सयानी, सीता सन बोली मृदुबानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। सकुच सीए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। फिर सीता ने अपने नेत्र खोले और साथ में दो भाइयों को देखा। नख शिख निरखि राम कई शोभा, समुझ पितापन मत मनयति क्षोभा। उनके मन में क्षोभ हुआ कि पिता ने इतना कठोर प्रण कर लिया है कि ये इतने कोमल बालक धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे और मैं इनको प्राप्त नहीं हो पाऊंगी। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब करहिं सभीता। जब सखियों ने देखा कि सीता जी परवश हो गई, प्रेम के वश में हो गई हैं, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं और मन में ही कह रहे हैं कि विलंब हो रहा है। पुनि आऊ बे यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी कयाली। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उरयाने, फिरी अपन पउ पितु बस जाने। फिर वो लौट पड़ती हैं, लेकिन
स्थिति क्या है,

0: भैया भाई देखा कितने बढ़िया गौनाई रही। हम अपने किसान भाई से एक बात कहब भाई कि अपन कार्यक्रम कैसे लगा ओके बिना अपन भाई प्रतिक्रिया दे सकत नहीं जौन है। नंबर बा भैया 8004926250। तो भैया यह नंबर पे भाई व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, साथ साथ आकाशवाणी के जो फेसबुक पेज पर भैया वो के माध्यम से आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उनका कार्यक्रम में कहीं तक सुझाव बांटे भाई का सुने चाहते हैं वो दे सके तो का भाई पूरा किन के प्रयास किन जाए।
1: बिल्कुल हो भैया, देखा हो अब जोन है घड़ी भी इशारा करत भाई पंचन से विदा लेवे के जोन है और गर्मी भैया देखा गर्मी जोर पे पड़त बा। किसान भैया अपन खेती किसानी में जोन है सजग हो के काम धाम करिए जोन है, तो पंचो
0: राम राम।

अभी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा, जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया, और MBBS में कुल

0: 14 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते से मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से कई रेल सेवाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए आज बताया कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल की रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगें की थीं, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इन सुविधाओं में दोहरीघाट ओडिहार नई मेमो ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन शामिल है। इसके अलावा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें वंदना सिंह ने प्रदेश में टॉप किया है। परिणाम में कुल 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र

0: उपाध्याय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। पहले दिन एक कार्गो उड़ान होगी। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। कार्गो सेवा शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ उत्तर भारत की आर्थिक को भी गति मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में सातवें बड़े मंगल के अवसर पर भक्त हनुमान जी के मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। अयोध्या में भी भक्त हनुमानगढ़ी सहित कई अन्य मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अयोध्या में आज ज्येष्ठ माह के सातवें बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन पूजन कर अपनी श्रद्धा निवेदित किया, साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। शहर के कई स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। भक्ति, सेवा और श्रद्धा के इस पावन माहौल से अयोध्या पूरी तरह राम और हनुमानमय नजर आ रही है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल 17 जून को होने वाले श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज मैदान पर पहले अफगानिस्तान की टीम ने अभ्यास किया और इस समय भारतीय टीम पसीना बहा रही है। भारतीय टीम अभी श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव की वार्ता कर्मण्ये शुधिकारस्ते।
4: जीवनस्य किम नाम इति जिज्ञासायां सारल्येन वक्तुं शक्यते यत् जीवनं पुरुषार्थ साधनं। पुरुषार्थः केत् इति जिज्ञासायां सहज भावेन उत्तरं दीयते यत् धर्मार्थ काम मोक्षः पुरुषार्थ चतुष्टयम्। भारतवर्षे मानव जीवनम धर्म प्रधानम्। धर्म प्राधान्यमेव मानवम पशुभ्यः पृथक करोति। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। यः पारलौकिकम् ऐहिकम् च उभयविधम् तम् क्षेमम् धारयति स धर्म इति निश्चितम् ऋषिभिः। अशेष मूलम् धर्मोऽयम् मानवीय धारणा परको वर्तते न तु संकुचित संप्रदाय सूचकः। यतो अभ्युदय अर्थात् लौकिकी भौतिकी वा समुन्नतिः समुपलभ्यते निःशेषः मोक्षो वा सुखेन आप्यते स एव धर्मपदस्य वाच्यार्थः। एतदेव मनसि कृत्वा महर्षि कणादेन लिखितम् यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धिः स धर्मः। अर्थः जीवनस्य कृते महदावश्यकः। परं तद्धनं धर्मोपार्जितः भवेत् तर्हि उत्तमम्, अन्यथा कुपथा अर्जितं धनं तु सर्वथा अस्पृश्यम्। यदि अर्थः स धर्मः हस्तगतः तदा कामाः अपि समुचिताः सीमिताः धर्मसम्मताः एवं विधाः कामाः धर्मानुकूलाः मोक्षहेतवः भवन्ति विपर्यये पतनगर्तं निर्दिशन्ति दुर्लभ।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव की वार्ता कर्मण्येवाधिकारस्ते। संस्कृत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अर्चना दास के गाए भजन और गीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए कबीर दास की ये भक्ति रचना।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अर्चना दास के गाए भजन और गीत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए डॉक्टर नलिनी गुप्ता से अभय कांत तिवारी की बातचीत, दांतों में कीड़े लगने की समस्या और आरसीटी उपचार।
1: श्रोताओं नमस्कार। कहते हैं कि हमारी मुस्कान हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है और हमारी मुस्कान का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो हमारे स्वस्थ दांत हैं। अगर हमारे दांतों में कोई समस्या हो तो न सिर्फ हमारी मुस्कान प्रभावित होती है बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी प्रभावित होती है। तो आज हम बात करेंगे दांतों में कीड़े लगने की समस्या और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। आखिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या इससे हमारा दांत पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नलिनी गुप्ता जी। डॉक्टर नलिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारी दांतों में कीड़े या कैविटी आखिर क्यों होती है?
2: दांतों में कीड़े होने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे जो मेन कारण वो होता है कि हम अपने दांतों की रख रखाव ठीक से नहीं करते हैं और आज का जो लाइफस्टाइल है कि सॉफ्ट फूड ज़्यादा लेते हैं। सॉफ्ट फूड लेने से क्या होता है कि हमारे दांतों की जो पिट्स एंड फिशर्स होते हैं, जो मोलर्स हैं या पीछे के दांतों को हम

0: चौगड़ कहते हैं उसमें खाना फंस जाता है, और हमारे मुंह में ऑलरेडी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। वो क्या करता है कि जो स्टिकी फूड, जो चिपका हुआ फूड है, उसको डिकम्पोज करता है, जिससे एसिड फॉर्मेशन होता है। उस एसिड फॉर्मेशन की वजह से हमारा जो इनामिल है वो डीमिनरलाइज होता चला जाता है। तो जब वो धीरे धीरे डीमिनरलाइज कंटिन्यूस होता जाता है, उससे धीरे धीरे करके कैविटी डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कीड़े लगना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि खाना फंसना शुरू होता है, तो पेशेंट्स उस बात पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, खाना फंस रहा है तो उसको टूथपिक से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, वही धीरे धीरे करके जब वो कैविटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद वो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाता है। अगर उससे पहले ही जाएगा तो उसके लिए मतलब फिलिंग से काम चल जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने एक टर्म यूज किया सॉफ्ट फूड, तो सॉफ्ट फूड में आप क्या क्या रखती हैं, कि कौन सा फूड, ये टॉफी, चॉकलेट या कोई मीठा,
0: बिल्कुल,
1: या
0: जैसे
1: फिर और भी जो
0: जैसे
1: भोजन है?
0: पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ब्रेड बटर खा रहे हैं, या मिठाई है, या कुछ ऐसे फल भी हैं जैसे आम खा रहे हैं वो भी मीठा है, तो कुछ भी खाने के बाद ब्रश जो है आप विदाउट पेस्ट कर सकते हैं आफ्टर मील्स, और या फिर आप गार्गलिंग ज़रूर करिए। वॉट एवर यू ईट उसके बाद गार्गलिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे जो भी आपके माउथ में सब्सटेंस स्टिकी है वो रिमूव हो सके, जिससे बैक्टीरिया उस पर वर्क ना करे।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कोई भी फूड जो हमारे दांतों में फंसता हो,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: हमें यह ध्यान रखना है कि
0: कि वो
1: दांतों में
0: फंसना नहीं
1: कोई
0: चाहिए,
1: खाना कोई फंसा न रहे,
0: फंसना नहीं
1: उसकी
0: चाहिए।
1: वजह से ये कैविटी की समस्या होती है। हम कैसे पहचाने कि हमें कैविटी की समस्या शुरू हो रही है ये?
0: सबसे पहली बात होती है कि पेशेंट को रियलाइज़ होता है कि उसका खाना फंस रहा है, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देता है, उसको टूथपिक से रिमूव करता है। अगर नहीं निकलता है तो सेफ्टी पिन भी यूज़ करते हैं लोग, दोनों दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, या दांत के बीच में ही कोई पिट है जिसमें कंटिन्यूस खाना फंस रहा है। धीरे धीरे करके सबसे पहले उसको रियलाइज़ होगा कि उसको ठंडे से सेंसिटिविटी हो गई। जहाँ उसको ये पता चलेगा ठंडे से सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसको जाना ही चाहिए डेंटिस्ट के पास, जिससे फिलिंग से काम चल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं जाता और धीरे धीरे करके क्या होगा, फिर उसको गर्म से सेंसिटिविटी होने लग जाएगी, दैट मीन्स उन इनर लेयर्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं, अब उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्टेजेस होती हैं कि जिसमें उसको रियलाइज़ होगा, उसको पता होगा, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से लोग नहीं जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, और उनकी समस्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक बढ़ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पहले हमें
0: हाँ,
1: ठंडे
0: सबसे
1: से
0: पहले
1: सेंसिटिविटी होती
0: बिल्कुल
1: है,
0: ठंडे से
1: और
0: सेंसिटिविटी
1: उसके
0: होगी,
1: बाद जब हमारे इनर लेयर में पहुंचता
0: पल्प
1: है
0: में जाता है,
1: तो गर्म से भी
0: गरम से
1: सेंसिटिविटी
0: सेंसिटिविटी
1: शुरू हो
0: होगी,
1: जाती है।
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, आजकल कई विज्ञापन हम देखते हैं कि जब सेंसिटिविटी हो दांतों में तो हम एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज़
0: टूथपेस्ट यूज़
1: करें,
0: करते हैं।
1: तो वो किस हद तक सही है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या वो क्या हमारी जो समस्या है उसको समाप्त करता है, या सिर्फ लक्षणों को कुछ
0: हाँ
1: देर के लिए शांत कर देता है?
0: बिल्कुल, देखिए कुछ हद तक आपके जो लक्षण हैं वो सबसाइड हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं होंगे। डिपेंड्स, अगर केरीज है, अगर उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो रही है तो वो नहीं जाएगा केवल पेस्ट करने से। इट्स बिकॉज अगर मान लीजिए केवल डेंटिन, जैसे कई बार क्या होता है इनेमल चिप ऑफ हो गया है और डेंटिन है, सेंसिटिविटी हमें होती क्यों, क्योंकि डेंटिन की जो लेयर होती है उसमें डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वो जब ओपन हो जाते हैं उसकी वजह से हमें सेंसिटिविटी होती है। वॉट एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट डस कि उसकी जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको क्लोज करता है, लेकिन अगर वो कैविटी बहुत बड़ी है तो ट्यूब्यूल्स सील नहीं होंगी, तो एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट नहीं वर्क करेगा। लेकिन अगर हाँ चिप ऑफ हुआ है, बहुत कम अमाउंट इनेमल का रिमूव हुआ है, तो कुछ हद तक एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट काम करेंगे
1: तो
0: उसमें।
1: डॉक्टर साहब, खासकर छोटे बच्चों के साथ ये समस्या आजकल ज़्यादा देखने को आती है, क्योंकि छोटे बच्चे टॉफ़ी वगैरह, चॉकलेट
0: बिल्कुल
1: वगैरह
0: बिल्कुल,
1: ज़्यादा
0: हाँ
1: खाते
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: और वो ब्रशिंग पे भी इतना ध्यान नहीं
0: ध्यान
1: दे
0: नहीं
1: पाते
0: देते
1: हैं।
0: हैं।
1: अगर छोटे बच्चों के साथ ये समस्या हो रही है, तो क्या हमें उनके लिए भी RCT ट्रीटमेंट कराना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए, या फिर हम कुछ और ऑप्शंस हो
0: हाँ
1: सकते हैं उसके लिए?
0: देखिए, अगर आपने कई बार छोटे बच्चों को देखा होगा तो 1.5 साल की उम्र से ही उनके सारे दांत एंटीरियर्स के कई बार देखिएगा सारे शेड ऑफ हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग बॉटल केरीज। कई बार बच्चे फीड लेते हुए सो जाते हैं और वो जो मिल्क होता है वो मुंह में भरा रह जाता है एंड वो पूरे ही दांत को डीमिनरलाइज कर देता है। उस केस में नर्सिंग बॉटल केरीज में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे की एज बहुत कम है। उस केस में आपको या तो एक्सट्रैक्शन करके आर्टिफिशियल टीथ आपको देने पड़ेंगे। एक समस्या छोटे बच्चों के साथ ये होती है, इस चीज़ में मदर्स को केयर करना बहुत ज़रूरी है कि फीड लेके बच्चा सोए नहीं, क्योंकि क्योंकि अगर वो मिल्क उसके अंदर मुंह में रहेगा वो धीरे धीरे डिमिनरलाइज करता रहेगा टूथ को। दूसरी बात आती है, छोटे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि वो खा रहे हैं, खाने के बाद में उन्होंने गार्गलिंग नहीं किया, ब्रशिंग नहीं किया, दैट टू मदर ऑल्सो हैव टू केयर फॉर देम। तो उनको सुबह और शाम दोनों टाइम, मतलब रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में ब्रशिंग कराना बहुत जरूरी।

0: तीसरी बात होती है कि बच्चों में रूट कैनाल होना कब चाहिए। अगर 6 साल का बच्चा है और जो दांत उसका खराब हो रहा है उसको परमानेंट आने में 12 साल की उम्र में आना है, तो उस केस में हमें रूट कैनाल और कैपिंग करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, क्या ये कैविटी की समस्या अपने आप ठीक भी हो सकती है कि हमें कुछ सेंसिटिविटी की समस्या आई, फिर मैंने ओरल हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, तो क्या ये अपने आप ठीक भी हो सकती है?
0: नहीं, अपने आप तो ठीक नहीं होगी। अगर कैविटी बन गई है तो वो फिलिंग से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर इनेमल और डेंटिन तक है तब तक तो फिलिंग हो जाएगी, लेकिन अगर उससे इनर लेयर, दैट मीन्स अगर पल्प इन्वॉल्व हो गया है, तब रूट केनाल ट्रीटमेंट पर इंसान को जाना पड़ेगा। और जब रूट केनाल ट्रीटमेंट होगा तब इन्फ्लेम्ड पल्प को रिमूव किया जाता है और उसके बाद कैपिंग करना पड़ेगा, तो वो ठीक तरह से काम करेगा दांत।
1: डॉक्टर साहब,
0: बिल्कुल।
1: उपचार और प्रिवेंशन दो चीज़ें हैं हमारे पास, तो अगर हम पहले उपचार के बारे में जान लें, तो आखिर ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, दांतों की कौन सी लेयर में जब ये समस्या पहुंचे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसके क्या क्या
0: जैसे
1: पहलू हैं?
0: दांत का अगर हम स्ट्रक्चर जानेंगे तो इसमें 3 लेयर होती है मेनली, इनेमल, डेंटिन और पल्प। तो इनेमल में जब तक कैविटी होती है तो पेशेंट को किसी भी तरह के सिम्टम नहीं आते हैं, केवल खाना फंसता है। डेंटिन तक पहुंचता है तब उसको ठंडा लगता है, और जैसे पल्प में जाता है तो उसको गर्म फीलिंग आती है। तो कैविटी ने क्या किया, पल्प को इन्फ्लेम्ड कर दिया, जिसकी वजह से पेन होने लगता है। कई पेशेंट्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्वेलिंग, गम्स पर स्वेलिंग आने लगती है, दांत के नीचे में फोड़ा जैसा बन जाता है। उसको भी अगर इग्नोर कर दिया जाता है तो बहुत बड़ी स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। तो इन सब केसेस में क्या किया जाता है कि रूट केनाल ट्रीटमेंट करके हम उसको ट्रीट करते हैं। इसमें हम धीरे धीरे करके सबसे पहले केनाल ओपन करेंगे, केनाल ओपन के बाद उसको इनलार्ज किया जाता है। जब इनलार्जमेंट पूरा हो जाता है, इन्फ्लेम्ड पल्प पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, देन वी हैव टू फिल दीज केनाल्स जो कि ओपन की गई है, उनको गट्टा परचा मटीरियल से सील किया जाता है और क्राउन में फिलिंग करके उसके बाद कैपिंग दिया जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है, कितनी सिटिंग्स देनी पड़ती हैं?
0: ये डिपेंड करता है कि दांत आपका कितना खराब है। अगर दांत में पेरिएपिकल एब्सेस है, पेरिएपिकल एब्सेस का मतलब है अगर उसकी जड़ पर फोड़ा बना हुआ है, तो उसमें टाइम टेकिंग रहेगा। और अगर केवल दांत के ही अंदर पल्प इन्फ्लेम्ड है जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सिंगल सिटिंग प्रोसीजर भी हो जाता है, सिंगल सिटिंग RCT भी हो जाता है। तो उस RCT को करने के बाद उससे 5 से 6 दिन बाद उसको कैप दिया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, कई लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट से डरते हैं, ये प्रक्रिया कितनी दर्दनाक होती है या कितनी असुविधाजनक होती है?
0: डरने की इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रोसीजर पूरा लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, तो उस केस में पेशेंट को नहीं पता चलता, उसका उतना हिस्सा सुन्न रहता है। जो भी प्रोसीजर किया जाता है वो सब पेनलेस रहता है, तो इसमें डरने की कोई भी तरह की बात नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, क्या उसके बाद हमारे दांत पूरी तरह स्वस्थ दांत की तरह कार्य करते हैं कि हमें कुछ सावधानी रखनी पड़ती है?
0: हाँ, सावधानी तो रखनी पड़ेगी क्योंकि आर्टिफिशियल है, आपका जो नेचुरल दांत था वो तो अब नहीं रहा है, लेकिन हाँ, हमने उस पर आर्टिफिशियल कैप दिया है। बहुत कड़ी चीज ना खाएं, नॉर्मली जो वेजिटेरियन फूड है आप सब खाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी लंबे समय तक चलता है।
1: कैप लगवाना डॉक्टर साहब आवश्यक है या
0: बिल्कुल
1: ये ऑप्शनल है?
0: बिल्कुल नहीं, आवश्यक है, क्योंकि टूथ स्ट्रक्चर आपका काफी लॉस हो चुका होता है, जिसमें आप फिलिंग करेंगे तो उस फिलिंग पर मेस्टिकेटरी फोर्सेस नहीं वर्क करेंगे, तो वो फिलिंग टूट जाएगी, अल्टीमेटली दांत टूटने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, कितने समय तक के लिए
0: डिपेंड
1: उपयोग?
0: करता है कि टूथ स्ट्रक्चर कितना लॉस हुआ था। 5 से 10 साल तक नॉर्मली चलता है, उसके आगे चलने के लिए कह सकते हैं कुछ क्वेश्चनेबल रहता है। डिपेंड करता है वही कि कितना टूथ स्ट्रक्चर लॉस हुआ था। जैसे कि मान लीजिए अगर टूथ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लॉस है, उस पर कैपिंग की गई है, 5 साल 6 साल के बाद में हो सकता है उस दांत में या अंदर कैप में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ लाइफ लॉन्ग चलेगा। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हमने कैपिंग भी किया है तो 10 से 12 साल के बाद में गम रिसीड होने लगता है, कैप भी चेंज करना पड़ता है उस
1: तो
0: केस
1: हमें
0: में।
1: कितने अंतराल के बाद ये कैप चेंज कराने होते हैं?
0: एक बार 5 साल बाद दिखा लीजिए डेंटिस्ट को, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, अगर उसमें जरूरत है कैप चेंज करनी तो करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, क्या ऐसी भी कोई स्थिति आती है जब RCT ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं होता, फिर दांत उखाड़ने के लिए
0: पड़ता
1: मजबूर
0: है।
1: होना पड़ता है,
0: हाँ।
1: तो ऐसी स्थिति कब आती है?
0: जब पेरिएपिकल एब्सेस बहुत ज्यादा है, टूथ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, जब उसमें क्राउन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, केवल रूट्स हैं, तब उसमें कोई ऑप्शन नहीं, एक्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। अगर पेरिएपिकल एब्सेस बहुत ज्यादा है जिसको रूट केनाल ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक नहीं किया जा सकता, उस केस में भी हमको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है।
1: डॉक्टर साहब, अगर प्रिवेंशन की बात करें कि हम इस समस्या से बच सकें, तो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को, वयस्कों को, दोनों को ही कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए कि हम इस समस्या से बचे रहें?
0: सबसे पहला ओरल हाइजीन मेंटेन करना। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए दोनों टाइम ब्रशिंग विद ब्रश। बहुत लोग केवल नीम की दतून यूज करते हैं, नीम की दतून यूज करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इंटरडेंटल स्पेसेस में नहीं काम करेगा, उसके लिए आपको ब्रश ही करना पड़ेगा। अगर आपका इंटरडेंटल एरिया ऐसा है कि जिसमें आप ब्रशिंग नहीं कर

0: पा रहे हैं, तो फ्लॉसिंग यूज़ करिए। ब्रश और पेस्ट जो होना चाहिए वो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट होना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि एंटी केरियस रहता है। रात में सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। वॉर्म सलाइन गार्गल ज़रूर करें, गुनगुना पानी नमक डाल के गार्गलिंग। इससे क्या होता है, जो भी इन्फ्लेमेशन होती है मुँह में सबसाइड करती है और मुँह और थ्रोट को भी क्लीन करती है। दूसरी बात आती है फूड की, बच्चे हैं या बड़े भी हैं, किसी भी तरह का अगर सॉफ्ट फूड ले रहे हैं, पहले तो सॉफ्ट फूड से अपनी अपनी धीरे डाइट को फाइब्रस फूड पर अगर लेकर के आएंगे तो उनके मुंह के लिए भी, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी फायदा रहेगा। उससे जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक बना रहेगा और दांतों में भी केरीज की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि स्टिकी सब्सटेंस नहीं रहेगा तो उसकी वजह से बैक्टीरिया नहीं वर्क कर पाएंगे, तो कीड़े काफ़ी कम लगेंगे उनके दांतों में।
1: डॉक्टर साहब, अंत में आप खासकर पेरेंट्स को, छोटे बच्चों को ओरल समस्या से बचाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं तो सभी माताओं से, बहनों से यही कहना चाहूंगी, बच्चों के जैसे ही उनके दांत इरप्ट होते हैं, टीदर आता है फिंगर में, उसको यूज करके टीदर से उनके दांत क्लीन करिए। फीड कराते समय या मिल्क फीडिंग भी अगर देते हैं तो दूध दे करके उसको सोने नहीं दीजिए, उसकी गार्गलिंग जरूर कराइए, अगर नहीं करा सकते तो पानी ही पिला दीजिए, जिससे जो मिल्क का जो स्टिकी सब्सटेंस है वो रिमूव हो जाए। सुबह और रात दोनों टाइम ब्रशिंग करनी है, इंटरडेंटल फ्लॉसिंग करनी है और डाइट का ध्यान रखना है। तो यही मैं तो संदेश दूंगी, जितना ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे उतनी कम से कम समस्या होगी। और 6-6 महीने पर डेंटिस्ट से विजिट ज़रूर कर लें, जिससे कहीं भी मान लीजिए आपका प्लाक डिपॉजिट है, कैलकुलस है, दैट मींस माने आपकी गम्स की अगर कोई प्रॉब्लम है, दांत के अलावा गम्स की भी प्रॉब्लम होती है। दांत अगर आपका ठीक भी है लेकिन धीरे धीरे करके देखिए दांत हिल के गिर गया, कोई दांत में कीड़ा नहीं लगा था, इसलिए क्योंकि दांत के साथ जो जुड़ा हुआ गम्स है वो कमज़ोर हो गया था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि ब्रशिंग नहीं हुई और दांत का अटैचमेंट बोन से धीरे धीरे करके लूज हो गया।
1: डॉक्टर साहब, आपने बात की कि 6-6 महीने में हमें दांत की नियमित जांच जरूर करानी चाहिए, तो किस उम्र से बच्चों को नियमित जांच के लिए, रूटीन चेकअप के लिए ले जाना जरूरी है?
0: देखिए 2 साल तक बच्चों के सभी दांत आ जाते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं, तो उसके बाद से आप ले जा सकते हैं जस्ट टू चेक के सारे दांत, एक तो सही एज पर इरप्ट हो रहे हैं या नहीं, या उनमें कोई समस्या है, या लेटर ऑन जो आने वाले दांत हैं, कई बच्चों के हमने देखा है कि परमानेंट मिसिंग होते हैं, मिल्क टीथ टूटते नहीं हैं और परमानेंट कभी आते नहीं हैं, तो ऐसे केसेस में अगर उनकी गैपिंग ज़्यादा है या उसमें क्या हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उनकी सुंदरता भी बनी रहे और खाने पीने में उनको कोई दिक्कत ना हो, मतलब 6-6 महीने पर 2 साल की उम्र के बाद से दिखा लेना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, हमें आशा है कि हमारे श्रोतागण जरूर लाभान्वित होंगे और उनकी मुस्कान यूं ही बनी रहेगी। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नलिनी गुप्ता से अभय कांत तिवारी की बातचीत, दांतों में कीड़े लगने की समस्या और आरसीटी उपचार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दोस्तों, कुछ आवाजें केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। कुछ सुर केवल कानों तक नहीं पहुंचते, सीधे दिल में उतर आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं उस महान कलाकार को जिनकी गहरी मखमली और सम्मोहक आवाज ने लाखों दिलों पर राज किया। वो गायक भी थे, संगीतकार भी थे और भावनाओं के अद्भुत शिल्पकार भी। 16 जून 1920 को वाराणसी में जन्मे हेमंत कुमार ने हिंदी और बंगाली संगीत जगत को ऐसी धरोहर दी जो आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है जितनी दर्शकों को पहले लगती थी।

दोस्तों, हेमंत कुमार को सभी लोग प्यार से हेमंत दा बुलाते थे। जब वे गाते थे तो लगता था जैसे कोई शांत नदी बह रही हो। उनकी आवाज़ में गहराई थी, सादगी थी और एक अनोखा सा अपनापन था। उनके गाए ये रातें ये चांदनी फिर कहाँ, न तुम हमें जानो, जाने वो कैसे लोग थे, आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। दोस्तों, हेमंत कुमार केवल गायक ही नहीं थे, वे एक असाधारण संगीतकार भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में ऐसा संगीत दिया जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया, जैसे नागिन का बीन संगीत हो या 20 साल बाद की रहस्यमयी धुनें। हर जगह उनकी प्रतिभा चमकती सी दिखाई देती है। कहा जाता है कि नागिन की बीन की धुन ने उस दौर में पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया था।

दोस्तों, आज के इस दौड़भाग के दौर में संगीत के कई रंग देखने को तो मिलते हैं, लेकिन हेमंत कुमार का संगीत हमें ठहरना सिखाता है, महसूस करना सिखाता है और सुरों की असली मिठास का एहसास कराता है। जब वे प्रेम गीत गाते थे तो प्रेम महसूस होता था, दर्द का गाना गाते थे तो दिल भर आता था, और जब भक्ति रचनाएं गाते थे तो मन श्रद्धा से भर जाता था। यही कारण है कि उनकी गायकी समय की सीमाओं से परे जाकर अमर हो गई। उनकी आवाज़ में शोर नहीं था, लेकिन असर इतना था कि पीढ़ियां गुजर गईं और जादू आज भी कायम है, तो हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं।

0: श्रोताओं, आज हमने आपको जिन फिल्मों के गीत सुनवाए उनके नाम हैं कोहरा, बात एक रात की और बादशाह। गीतकार थे कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी और शैलेंद्र, और संगीतकार हेमंत कुमार, एसडी बर्मन और शंकर जय किशन। चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज की आवाज में ये रचना।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, आपस में भाईचारा बनाकर रखें। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर

0: और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: सरकारी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन

0: तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है। उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक ये स्पष्ट

0: नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
2: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major

0: 36th Senior Asian Fencing Championships 2026, which will be held in Delhi from 19th June to 24th of June. Marking a historic milestone, India will host the prestigious continental event for the first time. Over 30 countries and more than 400 top athletes will participate in this high-stakes competition. India's 24-member squad comprises 12 women and 12 men and will be led by CA Bhavani Devi, India's first and only fencing Olympian. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in a Group 1 clash at New Jersey in United States tonight. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group 1 encounter at Boston Stadium. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi participates in G7 summit in Evian, France. Also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gurkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह इजलास में शिरकत की। वो आज रात कनाडा और बरतानिया के वज़राए आज़म नीज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा खरीफ सीज़न के लिए तैयारियों का जायज़ा लेने की गरज से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफ़ल्स को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1,000 से ज़्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। भारत और जापान ने जहरीली गैस के अखराज में कमी करने और पायदार तरक्याती इकदाम से मुतालिक तआवुन को फ़रोग देने की गरज से पेरिस माहदे के तहत मुश्तरक क्रेडिटिंग मेकानिज़म के लिए नफाज के जब्ते को अपनाया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जंग ख़त्म करने के माहदे में इसराइल को लबनान से अपनी फ़ौजें भी वापस बुलानी होंगी। IMD ने शुमाली भारत में कल के लिए बिजली चमकने और तुंद हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। और फेंसिंग यानी शमशेर जनी की सीनियर एशियाई चैम्पियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के शहर एवियां में जारी G7 समिट में एक आला सतह के वर्किंग इजलास में हिस्सा लिया। इस इजलास का मौजू था नई शराकत दारियाँ और बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम की तामीर नौ का फ़रोग। इस इजलास में G7 मुल्कों के लीडर, शराकत दार ममालिक और आलमी बैंक और अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक के सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। फ़्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी और शरीक होने वाले दीगर लीडरों के बाकायदा खैर मकदम के फ़ौरन बाद ये मीटिंग शुरू हुई। एक ग्रुप फोटोग्राफ के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी की और लिखा कि भारत और G7 ममालिक आलमी खुशहाली, पायदारियत और इंसानों की फलाह को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे नुमाइंदे अंकित कुमार, जो वज़ीर आज़म के G7 के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके हमराह गए हुए हैं, ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ कराने की गरज से एविया से ये रिपोर्ट भेजी है।
2: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, समाचार और मजबूत सप्लाई चेन

0: गहरे सहयोग पर है और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। उर्दू खबरों के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
1: इससे कबल आज दिन में वजीर आजम कल शुरू हुए समिट में शिरकत के लिए दो रोजा दौरे पर एविया पहुंचे। अपनी आमद के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा कि वो अहम आलमी मामलात पर दुनिया के लीडरों के साथ बातचीत और तबादला ख्याल के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत एक ज़्यादा पायदार और खुशहाल कुर्राए अर्ज़ की जानिब इज्तिमाई कोशिशों में पेशरफ के तईं पुरअज़्म रहेगा। समिट से अलग वजीर आजम कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, इंग्लैंड के वजीर आजम केयर स्टामर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। आज शाम देर गए वो सदर मैखां की जानिब से मुनक्किदा एक शानदार इशाइये में शिरकत करेंगे। समिट के दौरान एक और अहम बात वजीर आजम मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल होने वाली मुलाकात है। दोनों लीडरों के मुतालिक तवक्को है कि वो कई शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल करेंगे, साथ ही बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाले अहम वाक़ियात पर तबादला ख्याल करेंगे। फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम मोदी कल शाम पेरिस पहुँचेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज फ्रांस के नीस मैसेना में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का आगाज़ किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि फ्रांस के बावकार खुर्दा कारोबारी मकामात में से एक में भारत के आलमी दर्जे के डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म को लाना UPI की आलमी पैमाने पर तौसी में एक और नुमाया कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि यह पहल बड़े पैमाने पर भरोसे, बिला रुकावट और इंटर ऑपरेबल डिजिटल हल फराहम करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। वजीर मौसूफ़ ने मजीद कहा कि यह आगाज़ भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तसादी और तकनीकी ताल्लुकात को मुस्तहकम करता है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जामे शराकत दारी की बढ़ती हुई गहराई और उमंगों की अक्कासी होती है। बड़े सनती मुल्कों के ग्रुप ऑफ सेवन समिट के मौके पर अमरीकी इत्तेहादियों ने आज रूस यूक्रेन तनाज़े के 4 साल से ज़्यादा अरसे के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन की हिमायत के एजेंडे के आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मेज़बान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखां ने कहा कि वो ये ख्वाहिश करते हैं कि ट्रंप को तरगीब दी जाती रहे कि वो यूक्रेन की हिमायत और रूस पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रखें ताकि किसी अमन माहदे तक रसाई में मदद मिले। ट्रंप के तहत अमरीका ने यूक्रेन के लिए इमदाद में कटौती की है। फ्रांस और उसके यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक अब कीफ को फौजी और माली इमदाद फराहम करने वाले बड़े ममालिक बन गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी आज सुबह वर्किंग इजलास में G7 लीडरों के साथ शिरकत की, लेकिन मुज़ाकरात जल्द ही ख़त्म हो गए क्योंकि लीडरान सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट के लिए जमा हुए थे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आला सतह की ज़राअत से मुतालिक एक मीटिंग में शिरकत की और 2026 की खरीफ की फसल के लिए मुल्क भर में तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ारत ज़राअत ने एक बयान में कहा कि एलनिनो की मुमकिन सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर मौसूफ़ ने कपास की पैदावार में इजाफे, दालों में खुद किफालत को हासिल करने और कम बारिश वाले ज़िलों में हंगामी नौइयत के मनसूबे तैयार रखने पर खसूसी ज़ोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज़राअत के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने वाज़े तौर पर कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मीटिंग में सीज़न के दौरान नामवाफिक मौसमी सूरत हाल से ज़राअत और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी तौर पर तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाने को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। जनाब चौहान ने हिदायत दी है कि उनाज़ला में जहां कम बारिश या गैर मुसावी बारिश होने का इम्कान है, पेशगी तौर पर तमाम इकदामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अज़ला की शनाख्त की जानी चाहिए और रियासतों के साथ मिलकर फसल के हिसाब से हंगामी मंसूबे तैयार किए जाने चाहिए ताकि मौसमी चैलेंज की सूरत में फौरी तौर पर किसानों को मुतबादिल आलात और ताउन फराहम की जा सके। नई दिल्ली से सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज ऐलान किया है कि तारीखी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने मुल्क के दिफा में गोरखा फौजियों के जोश व जज्बे और कुर्बानियों के तई खराज अकीदत पेश किया। जनाब अधिकारी ने मजीद

ऐलान किया कि रियासती पुलिस फोर्स में जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी, जिससे गोरखा जवानों को बड़ी तादाद में रोज़गार के मौके मिलेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती भर्तियों में कम से कम 30% सीटें ख्वातीन के लिए रिज़र्व होंगी। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। आकाशवाणी के ख़बरों का शोभा एक खसूसी फ़ीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नरेंद्र मोदी हुकूमत की कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले बरस 6 और 7 मई की दरमियानी शब को ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, लेकिन दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सुर्ख लाइन खींच दी कि अगर दहशतगर्दी किसी की स्टेट पॉलिसी है तो उसे एक बराह रास्त और कुव्वत से

दोस्तों, गज़ल उर्दू शायरी की वो खूबसूरत विधा है जो इंसानी जज्बातों की सबसे नाजुक और गहरी अभिव्यक्ति मानी जाती है। मोहब्बत, वफा, इंतज़ार, दर्द, खुशी, उम्मीद और ज़िंदगी के तमाम रंग गज़ल के अशार में बड़ी नफासत के साथ ढल जाते हैं। गज़ल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल विचार होता है, लेकिन जब सारे शेर एक साथ आते हैं तो भावनाओं की एक सुंदर तस्वीर बन जाती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गज़ल वो आईना है जिसमें दिल की सूरत दिखती है। गज़ल वो आईना है जिसमें दिल की सूरत दिखती है, हर एक मिसरे में कोई अधूरी हसरत दिखती है।

दोस्तों, गज़ल का रिश्ता सीधे दिल से होता है। ये कभी मुस्कान बनकर आती है तो कभी आँखों में नमी छोड़ जाती है। गज़ल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर श्रोता को अपनी कहानी लगती है। दर्द किसी का हो, एहसास सब अपने लगने लगते हैं। किसी ने कहा है कि दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं।

दोस्तों, वक्त की रफ्तार चाहे कितनी तेज़ हो जाए, गसल की मिठास कभी कम नहीं होती। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। यादों के इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगली गसल।

दोस्तों, हर खूबसूरत सफ़र की तरह ये कार्यक्रम भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। गज़लें हमें सिखाती हैं कि भावनाएं जितनी गहरी हो ना, अभिव्यक्ति उतनी ही सलीकेदार होनी चाहिए। शाम यूं ही गुजर जाएगी सोचा न था, जिंदगी मुस्कुरा जाएगी सोचा न था। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम गज़ल फिल्म आखिरी दांव से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

और इसी गज़ल के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण।
2: नमस्कार श्रोताओं, खेल दर्पण का आज का अंक लेकर मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम दो भागों में है। पहले भाग में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और दूसरे भाग में भारत के लोकप्रिय खेल कुश्ती पर भेंटवार्ता को लिया गया है।

मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह, और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दीवानी हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की।

हवा में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के तीन खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बाबे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि उस इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे जिसने इस खेल को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया।

दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ तीन देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप दो टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

लेकिन दोस्तों आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और न ही रंगीन टेलीविजन। सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया। उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है, डियोगो माराडोना। साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया। लियोनेल मेसी, और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में। इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, वहां पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था वो दिग्गज टीमों की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं, जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनिशिया को 5-1 से हराकर एक तरफा अंदाज में अपनी

ताकत दिखाई है, लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा।

0: This time for Africa.
1: अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह बनिए।

भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के पब्स तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा।

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं, दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो गो गो गोल का शोर सुनाई देने वाला है।

0: आइए कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं कुश्ती पर भेंटवार्ता, जिसमें हमारे मेहमान हैं ऋषि श्वेत सिंह, जो कुश्ती कोच एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के सदस्य हैं, और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव के वो अखाड़े याद आ जाते हैं।

0: जिनमें पहलवान अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर अपने दांव को सामने वाले पहलवान पर आजमाते थे और आज भी आजमाते हैं। तो किस तरह से जब हम इतिहास को देखते हैं तो मल्ल युद्ध नाम से इसे जाना जाता था, तो मल्ल युद्ध से कुश्ती और कुश्ती से मैट वाली कुश्ती का एक लंबा सफर तय किया है इस खेल ने, इस विधा ने। तो कुश्ती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक ऋषि श्वेत सिंह जी। ऋषि श्वेत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कैसे की, किस बात ने आपको एक रेसलर से कोच बनने के लिए प्रेरित किया?
1: पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे कुश्ती करते हुए। मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने कुश्ती शुरू की थी,
0: जी
1: और कुश्ती का रुझान मेरा इसलिए उसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक रहे,
0: जी जी
1: तो मेरा अखाड़े से बचपन से मेरा और मैट की कुश्ती से मेरा नाता रहा।
0: जी
1: और मैंने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में अपना कुश्ती प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम से भी मैं बतौर खिलाड़ी और कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में।
0: जी जी
1: और मैं लगभग 15-16 साल से कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल निदेशालय के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है, और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनारस में अखाड़े पे मेरी पोस्टिंग रही है,
0: जी जी
1: और इस वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रशिक्षक के रूप में।
0: ऋषि जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताजी भी कुश्ती प्रशिक्षक थे, तो आपने बहुत बड़ा समय, एक बड़ा लंबा समय आपने देखा हुआ है और इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं आप। तो बचपन में पिताजी को भी आप देखते रहे होंगे और आज खुद एक कोच के तौर पर हैं, तो तब से लेके अब तक आप इस खेल में क्या अंतर पाते हैं, खिलाड़ियों के मनोदशा में या परिस्थितियों में क्या अंतर पाते हैं आप?
1: देखिए, मैंने जब बचपन में कुश्ती देखी थी और कुश्ती खेलता था पिताजी के साथ अखाड़े में जाना, मैट पर जाना, तो वर्तमान समय में और उस समय के बीच में अंतर है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज का बहुत फ़र्क आया हुआ है।
0: जी
1: पहले जो कुश्तियाँ थी हमारे पास मैट तो थे, मगर हमारे पास जैसे आज के समय में वीडियो एनालिसिस है या ऑनलाइन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उस समय ये चीज़ें नहीं थी, उस समय आपके पास सीमित संसाधन थे और खेल की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत सीमित थी।
0: जी
1: हर जगह मैट नहीं होते थे, ज़्यादातर हमारे पहलवान मिट्टी के अखाड़ों में ही प्रैक्टिस किया करते
0: जी
1: थे,
0: जी
1: मगर आज वर्तमान के समय में हमें लगता है कि मिट्टी के अखाड़े के साथ साथ हमारे पास हर अखाड़े के पास लगभग मैट भी हैं। और जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक कुश्ती की मानसिकता थी, लोगों ने अब उससे बाहर आकर आधुनिक ओलंपिक कुश्ती की तरफ भी रुझान किया है, जिससे हमारी देश की कुश्ती दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती जा रही है।
0: ऋषि जी, आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या है? आप एक अच्छे पहलवान में किन बुनियादी गुणों को देखते हैं?
1: देखिए, कोच के लिए फिलॉसफी का मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनुशासन।
0: जी
1: किसी भी खेल में आपको अनुशासन बहुत ज़रूरी है,
0: जी
1: और ये चीज़ सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर नहीं लागू होती। इस चीज़ का सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो प्रशिक्षक के रूप में ही शुरू होता है। अगर प्रशिक्षक अनुशासित है, नियमित है और अपने काम के प्रति समर्पित है, तो उसका खिलाड़ी उस चीज़ को देख के मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है और उसमें अपने अच्छा योगदान देने की कोशिश करता है।
0: कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में हार जाता है तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर टूट जाता है,
1: जी
0: तो जब कोई अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप अपने खिलाड़ी को, जो आपका शिष्य है, उसे किस तरह समझाते हैं या आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: देखिए, हम खेल के अंदर हार और जीत खिलाड़ी को हम हमेशा पहले जब प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं तभी ये बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप हमेशा इससे जीतेंगे। तो आप अपने आप को पहले भी ये तैयार करके रखिए कि हो सकता है कि हम हारेंगे, तो हम इस चीज़ की तैयारी पहले से भी करके रखते हैं जिससे कि उसके हारने पर
0: जी
1: उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और खिलाड़ी को हम एक प्रशिक्षक के रूप में एक चीज़ हमेशा तैयार रखते हैं कि बेटा ये आखिरी नहीं है,
0: जी
1: ये आपकी हो सकता है शुरुआत हो, क्योंकि हर जीत का आनंद आपको हार से ही मिलेगा।
0: जी
1: तो
0: जी
1: आपने अगर कुछ हारा है तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई उसको। आजकल आधुनिकता की जैसे मैंने बात की तो हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो रही है तो हम काउंसलर रखते हैं और उनसे काउंसलिंग करवाते हैं
0: जी
1: साइकोलॉजिकल। और बाकी बतौर कोच हम एक गार्जियन के रूप में या उसके बेस्ट जो होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी नहीं है,
0: जी जी
1: इससे आगे भी मिलेगा। और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने देखिए ओलंपिक दर ओलंपिक पिछले में कुछ रहा उससे आगे अच्छा किया और आगे अच्छे करते गए
0: जी
1: हैं।
0: अब जो वर्तमान कुश्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें भार वर्ग का बड़ा महत्व होता
1: जी
0: है, तो ऐसे में वेट मैनेजमेंट भी एक समस्या बन जाती है खिलाड़ियों के लिए। इसके लिए

0: आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?
1: हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर वेट में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ आपको इस वेट में करना है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग
0: जी
1: जब हम लोग उसका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें उसी समय हम उसके वेट के ऊपर बहुत नज़र रखते हैं। डाइट प्रोग्राम क्या है,
0: जी
1: उसको किस वेट में लड़ना है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सुबह शुरू होती हैं, ड्यूरिंग सेम डे वेट होता है और सेम डे ही पूरा टूर्नामेंट लगभग खत्म होता है। एक्सेप्शनल कुछ जो गेम्स हैं उसमें नेक्स्ट डे मेडल बाउट्स होती हैं, जैसा कि भी लास्ट ओलंपिक में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें हम
0: जी
1: लोगों ने
0: जी
1: अच्छा अपना मेडल खो दिया,
0: जी जी जी
1: तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और हमेशा वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर ये, और उनके साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि बच्चे की आखिर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस वेट कैटेगरी के लिए फिट है।
0: जी
1: अब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा वेट जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो 60-70 किलो तक कर सकता है, अब उसको हम माइनस करके 55 में नहीं लाने की कोशिश करते, और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वेट बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होती है, न्यूट्रिशंस की टीम होती है, वो उसको एनालिसिस करती रहती
0: जी
1: है।
0: आजकल कुश्ती में वीडियो एनालिसिस और विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। आप अपनी ट्रेनिंग में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं?
1: आज अपनी गेम को सुधारने के लिए ये कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में है कि वीडियो एनालिसिस, कौन खिलाड़ी आया हुआ है प्रतियोगिता में, उसके पिछली बाउट्स परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी वीकनेस कहाँ है, अपने खिलाड़ी की वीकनेस क्या है,
0: जी
1: अपना खिलाड़ी कहाँ पे स्ट्रांग है,
0: जी
1: इसको हम बहुत अच्छे से उसको यूज़ करते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब वीडियो एनालिसिस का बकायदा एक सेशन रखते हैं कि
0: जी
1: हम
0: जी
1: अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन हमारा वीडियो एनालिसिस का है, जिसमें हम सेशन वाइज या वीकली वाइज बच्चे की पूरी ट्रेनिंग रूटीन और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं और बच्चों को भी बैठाते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलती की है,
0: जी
1: आपकी ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, अपोनेंट आपके कंपटीशन में ये आएगा तो इसका लड़ने का तरीका ये है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें सेशन करना है, तो हमें उसमें ट्रेनिंग करानी है,
0: जी
1: तो क्या गलतियाँ हो रही हैं, बार बार गलतियाँ हो रही हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज़ हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, अदर टाइम में उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, फिर उस पे जाके हम नेक्स्ट सेशन में फिर काम करते हैं।
0: रेसलिंग में चोटों का जोखिम बहुत अधिक बना रहता है, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना पड़ता है, तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह के सुरक्षा उपाय और वार्म अप रूटीन शामिल किए जाते हैं?
1: प्रॉपर यह है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप,
0: जी।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप हो और उससे पहले उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि आज ट्रेनिंग के लिए वो कितना रेडी है। हो सकता है कि लास्ट सेशन उसके ऊपर बहुत ओवरलोडिंग हो गई हो या मेंटली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है कि ये मेंटली वो कितना फिट है। उसके बाद अगर उसको कोई मेंटली दिक्कत है या कुछ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड कम कर सकते हैं या अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि ट्रेनिंग से बचाना है तो प्रॉपर वार्म अप किया, एरर्स कम करें उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अगर स्किल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर एरर नहीं है उसमें तो वो इंजरी कम से कम लगने के चांसेस हैं। जब गलतियां करेगा और उसका सबसे बड़ा जो चीज़ होती है, मैंने जो बोला लोड, ट्रेनिंग लोड क्या है, मेन ये होता है, अगर ओवरलोड होके आया हुआ है प्लेयर तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं, अगर ओवरलोड है तो नहीं कर
0: बिल्कुल
1: पाएंगे उस चीज़
0: बिल्कुल
1: को,
0: बिल्कुल
1: और गलतियां होती हैं, तो
0: जी
1: हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में गलतियों का मतलब फिर चोट होता है।
0: अच्छा, अब जब कोई गेम चल रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और सिर्फ 1-2 पॉइंट्स का ही अंतर है, तो ऐसे में आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, तो ऐसा अगर जब कोई मौका आता है, तो चूंकि ये आम बात है खेल में आना, तो उसके लिए खिलाड़ियों को आप किस तरह से तैयार करते हैं?
1: देखिए कंपटीशन में तो हम प्लेयर्स को बहुत मेंटली स्ट्रांग करके भेजते हैं, हाँ मैच चल रहा है, कभी हो सकता है कि आप 1-2 पॉइंट से आगे हैं, 1-2 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, लास्ट है, जैसा कि हमारे उस समय पे खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, छोड़ना नहीं है। हमारे वर्ल्ड में 2 मेडल आए, एक ओलंपिक में और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जो कंडीशन आप बता रहे हैं मेन कंडीशन वही थी। हमारे रेसलर्स साक्षी मलिक 2016 लास्ट मिनट मेडल बाउट एकदम लूज कर रहे, मेंटली स्ट्रांग थी, उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश, तो एज ए कोच हम ये कहते हैं बेटा आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो जितनी आपके पास वो आप वहां पर लगाओ। साक्षी मलिक ने लगाया था, मेडल आया। नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 12-4 से हार रहे थे लास्ट में बाई फॉल करके, 30 सेकेंड अंदर उन्होंने कुश्ती जीती, तो उस समय मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर प्लेयर डिपेंड करता है, और एज ए कोच जो भी साथ में होता है, हमें अदर कोच है जो भी टीम कोच गया, वो फिर उस कंडीशन में ये कहता है बेटा आप अपना ऑल आउट करो, जितना है आप अपना पोटेंशियल या जो भी आपने सीखा है आप वो लगा दो वहां पे।
0: ऋषि जी, अभी आपने साक्षी मलिक जैसे बड़े महिला रेसलर की बात की,
1: जी
0: तो भारत में महिला कुश्ती का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। आपके अनुसार महिला पहलवानों को जमीनी स्तर पर आगे लाने में क्या मुख्य

0: चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है?
1: मुख्य चुनौतियां तो देखिए हमारे पास सबसे यही थी कि लोग महिलाओं को कुश्ती में भेजना नहीं चाहते थे,
0: जी
1: मगर आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, लोग डोमिनेट हैं कि हाँ हमारी बच्चियाँ जाएँ,
0: जी
1: और जिसका परिणाम आप अगर हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें तो विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि पहले था कि हरियाणा की गर्ल्स ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, और जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहाँ महिलाओं के लिए बहुत पाबंदी हुआ करती थी,
0: जी
1: मगर
0: जी
1: महिला और उत्तर प्रदेश, आज के डेट में महाराष्ट्र भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है,
0: जी
1: बिहार है, झारखंड जैसे प्रदेशों से भी हमारे यहाँ महिला कुश्ती बहुत
0: जी
1: ज़्यादा डोमिनेट कर रही है उसके ऊपर।
0: जी जी जी
1: और हम चाहेंगे कि ये गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों को लाएं,
0: जी जी
1: कुश्ती बहुत अच्छा गेम है, महिलाओं के जहाँ तक लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है, आप ना लाइए मेडल के लिए, मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से मानसिक
0: जी
1: रूप से मजबूत करने के लिए लेकर
0: जी
1: आइए।
0: अच्छा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना चाहिए?
1: देखिए एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है,
0: जी
1: स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, मगर स्किल भी है, तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है।

0: ना लाइए मेडल के लिए, मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से मानसिक
1: जी
0: रूप से मजबूत करने के लिए लेकर
1: जी
0: आइए।
1: अच्छा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना
0: देखिए,
1: चाहिए?
0: एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है,
1: जी
0: स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, मगर स्किल भी है। तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है।
1: जी
0: 10 साल तक बच्चा हर चीज़ को समझने लगता है, उसको सोचने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमारा कहना कि 10-11 साल की उम्र से आप
1: जी
0: बच्चे को, बाकी बचपन से बच्चे अखाड़े आते हैं जाते हैं, तो वो है 10-11 साल की एज से प्रॉपर उसको, यहाँ अब ये प्रोफेशनली इस तरफ जाना चाहता है
1: जी जी
0: तो उस तरफ आप उसको डाइवर्ट करें।
1: इस वर्ष आप एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती का भविष्य किस प्रकार देख रहे हैं?
0: एशियन स्तर पे देखिए हमारी कुश्ती बहुत अच्छी है, ओलंपिक में हमारे पास मेडल कम रहते हैं, मगर विगत कुछ वर्षों से हमारे पास एशियन गेम में काफ़ी अच्छे मेडल्स आए हैं, गोल्ड मेडल्स लेके, और हम अच्छी कंपटीशन में रहे हैं। इस बार भी टीम का सिलेक्शन हो चुका है और हमें लगता है कि इस बार भी हमारे 5 से 6 गोल्ड मेडल और बाकी और सिल्वर ब्रॉन्ज में हम रहेंगे।
1: जी ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रदेश के स्तर पर भी
0: जी
1: जिनके बारे में कहना चाहेंगे कि नहीं, वो कुछ बेहतर ही करेंगे इस एशियन गेम्स में?
0: एशियन गेम में से अभी तो जो सिलेक्शन हुआ, जो टीम हमारी बनी है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद अपने अमन सहरावत, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं,
1: जी
0: उनसे उम्मीद है। अभी एक 65 kg में सुजीत कलकल, अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मुकुल दहिया है, दीपक पुनिया ओलंपियन है जो लास्ट ओलंपिक में
1: जी जी
0: एक
1: जी
0: दो अंकों के अंतर से
1: आ रहे
0: मेडल से रह गए थे,
1: जी
0: उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और लड़कियों में बात करें तो निशा दहिया है,
1: जी
0: अंतिम पंगाल
1: जी
0: और मानसी, ये कुछ महिला पहलवान है हमारी, जो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मेडल और गोल्ड मेडल तक के लिए हमारी दावेदारी ये लोग
1: जी
0: करती
1: जी
0: हैं।
1: उत्तर प्रदेश में आप कुश्ती या रेसलिंग का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में अपने आप को निखार सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
0: हमारे उत्तर प्रदेश से अभी तो एक सीनियर वर्ग में जॉन्टी है, बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है अभी एशियन गेम्स ट्रायल में, वो दीपक पुनिया से ही हारा।
1: जी
0: और बाकी जूनियर स्तर पे भी हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, अभी एक जयवीर लड़का है जिसने एशियंस बहरीन में हुए थे, उसमें गोल्ड जीता था देश के लिए,
1: जी जी
0: यूपी का है, सौरभ है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,
1: जी जी
0: चंचल सिरोही है उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी की टीम से खेलती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीमें हैं हमारे पास, बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पुलिस टूर्नामेंट में जिन्होंने देश के लिए भी मेडल जीता था, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भारतीय टीम में भी आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: जी ऋषि जी, कुश्ती विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेल दर्पण का आज का अंक। चलते चलते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि खेल चाहे कोई भी हो, वह हमें जोड़ता है, दीवारें तोड़ता है और सिखाता है कि आखिरी सीटी बजने तक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है श्रोताओं को कार्यक्रम के दोनों ही भाग पसंद आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर दीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा कुछ और कड़क खबरों और खेल के रोमांच के साथ, कार्यक्रम खेल जगत में। तब तक देखते रहिए फुटबॉल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और मुस्कुराते रहिए और जोश से कहिए लेट्स फुटबॉल। शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार।
3: खेल दर्पण,
4: खेल दर्पण,
3: खेल दर्पण।
5: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया और प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए विदुषी मुनीर खातून बेगम की गाई राग मिश्र खमाज में ठुमरी और दादरा। तो सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए राग मिश्र खमाज में ठुमरी, इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे राग मिश्र खमाज में दादरा।

अभी आप सुन रहे थे सुश्री मुनीर खातून बेगम की गाई राग मिश्र खमाज में ठुमरी। अब लीजिए सुनिए राग मिश्र खमाज में दादरा, सुश्री मुनीर खातून बेगम का गाया हुआ।

अभी आप सुन रहे थे सुश्री मुनीर खातून बेगम का गाया राग मिश्र खमाज में दादरा। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

एहसास की धूप छाओं में, हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाश

0: मणि प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास थे।

0: Greenhouse Gas Emission Reduction and Sustainable Development Act initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the Memorandum of Understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11:10 हुए हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।